आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। आज शनिवार है, शक संबत 1948 के आश्विन मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 3 अक्टूबर ईस्वी सन 2026। अभी हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आज का दिन मंगलमय हो, इसी कामनाओं के साथ आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं। शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा हिंदी में।

0: में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5 लाख शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। FM 103 MHz पर आकाशवाणी का यह डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हुसैन जैसी नाम बातें करेंगे मूंगफली की।

खेती कैसे की जाएगी। झारखंड के लिए खरीफ तिलहनी फसल के रूप में इसकी संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। इस क्षेत्र की मिट्टी एवं जलवायु मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त है। किसान भी मूंगफली की खेती के महत्व एवं लाभों को समझ चुके हैं, इसलिए इसकी लोकप्रियता इस क्षेत्र में और अधिक बढ़ने की संभावना है। जैसा कि मूंगफली की खेती के अंतर्गत लगातार बढ़ रहे क्षेत्र को देखने से पता चलता है, पठारी क्षेत्रों में ऊपरी भूमि जिसमें धान, रागी एवं अन्य लघु मोटे अनाजों की खेती की जाती है, यह मूंगफली की खेती वर्षा पर आधारित स्थिति से अधिक लाभ के साथ की जा सकती है। इसकी खेती शुद्ध फसल के रूप में की जा सकती है या इसे अरहर के साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी लिया जा सकता है। 90 सेंटीमीटर की दूरी पर अरहर की दो कतारों को लगातार इसकी अंतर्वर्ती फसल लेना किसानों में प्रचलित है और किसानों के लिए लाभप्रद भी होता है। उत्पादन की तकनीक और भूमि का चुनाव, हल्की बलुही दोमट मिट्टी, अच्छी जल निकास सुविधा एवं कार्बनिक पदार्थों से युक्त 6.5 सेंटीमीटर से 7.0 सेंटीमीटर पीएच वाली मिट्टियां मूंगफली की खेती के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसकी तैयारी कैसे करें? 3 से 4 जुताई जो 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर हल चलाई गई हो, जहां तक संभव हो सके खरपतवार के नियंत्रण हेतु गर्मी के मौसम में जुताई करनी चाहिए। अंतिम जुताई के बाद पाटा चलाना चाहिए। इसके जो है प्रभेद हैं बिरसा मूंगफली, बिरसा बोल्ड जीपी बीडी 5 जीजेजी 18, उपज क्षमता है 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। बुआई का जो समय होता है 15 जून से 10 जुलाई तक बुआई का उपयुक्त समय माना जाता है। बिरसा मूंगफली प्रभेदों की बुआई 25 जून तक अवश्य कर देना चाहिए, जिससे कि हर हालत में फसल हथिया नक्षत्र में होने वाली वर्षा के तुरंत बाद कटने के लिए तैयार हो जाती है। बीज दर एवं बुआई 75 से 80 किलो दाने प्रति हेक्टेयर, आगत एवं फैलने वाले किस्मों के लिए 80 से 90 किलो दाने प्रति हेक्टेयर, मध्य आगात एवं गुच्छे वाले किस्मों के लिए है। कतार में कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर, पौधों से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, गुच्छे वाले किस्म 45 गुने 15 सेंटीमीटर फैलने वाली किस्म मानी जाती है। इसके लिए चाहिए कि 25-50-26 किलो NOPK तथा 10 किलो बोरेक्स प्रति हेक्टेयर बुआई से 10 से 15 दिन पूर्व कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। बुआई के समय 12 किलोग्राम यूरिया, DAP 120 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम म्यूटिएट ऑफ पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। अम्लीय मिट्टी में 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से चूना का व्यवहार 4-5 वर्षों में एक बार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर साल 4-5 वर्षों में अपने खेतों में ये आप कर सकते हैं। दीमक से बचाव के लिए एंडिया क्लोराइड 17.8 इसी का व्यवहार करना चाहिए। PSD व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। बादाम की खेती अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारी जानकारी है। बादाम की खेती हमारे झारखंड प्रदेश में अच्छी हो रही है और इसका उत्पादन जो है किसान भाई ले रहे हैं। किसान भाई भी आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मूंगफली का खेती कर सकते हैं और विशेष जानकारी के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र पलामू से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हो गई खेती की बातें।

युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं।

आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा आज का चिंतन, शीर्षक है विद्या है सच्ची संपत्ति। सच्चा मनुष्य वही है जिसके पास विद्या रूपी धन है। बिना ज्ञान के व्यक्ति अन्य जानवरों के समान निरा पशु ही है। विद्या ही मनुष्य जीवन सार्थक होता है, विद्या से ही मनुष्य का जीवन सार्थक होता है, क्योंकि वही मनुष्य के

आत्मिक विकास का साधक है। संसार में विद्या से बढ़कर कोई मित्र और अविद्या से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। विद्या के कारण ही मनुष्य समाज, परिवार और जीवन के आनंद, उल्लास, सम्मान आदि का सुख लूटता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। अविद्या या अज्ञान ही सब असफलताओं की जड़ है। जन्म से जब मनुष्य थोड़े बहुत अंतर के साथ बराबर से होते हैं, पर किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान, शिक्षण और विशेष अध्ययन ही उन्हें दूसरों से आगे बढ़ाता है। एक बेचारे के शब्दों में, विद्या नौ युवक का सहारा, धनवान का यश और पौढ़ व्यक्ति का सुख साधन होती है। विद्या मिलने से मनुष्य विचारशील, एकाग्रचित और प्रसन्नी बनता है। मनुष्यों के परखने की कसौटी उनके पूर्वजों द्वारा कमाया गया धन, संपत्ति या जमीन जायदाद नहीं है और न रूप सौंदर्य ही है। विद्या बुद्धि, सद्भाव, सद्बुद्धि और विवेक के मापदंड से ही मनुष्य के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता की परख की जा सकती है। सच पूछा जाए तो आदमी की योग्यता, विद्वता और प्रतिभाएं ही उसके बड़प्पन की कसौटी है। अध्यापन कार्य इसलिए सबसे कठिन कार्य है। प्राचीन काल में कोई हर प्रकार से उन्नत चरित्र वाला विद्वान ही शिक्षक बनने का साहस कर सकता था। ऐसे व्यक्ति को शिक्षण का कार्य सौंपा जाता था जो अक्षर ज्ञान के साथ मनुष्य की प्रतिभा विकसित करने में समर्थवान हो। यह तत्व विद्या ही है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती है और ऊंचे स्तर पर पहुंचाती है। महाराजा धृतराष्ट्र को कौरव द्वारा पांडवों को शस्त्र प्रशिक्षण देने के लिए सुयोग्य आचार की आवश्यकता थी, किंतु कोई विद्वान राजगुरु उन्हें दिखाई नहीं दिया। अकेले शस्त्र प्रशिक्षण की बात रही होती तो वह कोई भी कर सकता था, लेकिन नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए

अकेले शस्त्र प्रशिक्षण की बात रही होती तो इसका कोई भी ये काम कर सकता था, लेकिन नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए चरित्र, सद्भाव, विद्वता और प्रतिभा सभी एक साथ एक ही व्यक्ति में मिलना जरूरी था। एक दिन द्रोणाचार्य भी उनकी सभा में आए। धनुर्विद्या में इतने प्रवीण आचार्य पंडित को देखकर महाराजा मुक्त हो गए और उन्होंने समझ लिया कि उनके पास रहकर बालकों के चरित्र का विकास हो सकेगा। आधुनिक विद्या का स्वरूप कुछ बदल गया है, उसमें नैतिक शिक्षण और चरित्र निर्माण के लिए कोई स्थान नहीं है। कोरी बौद्धिक उन्नति की ओर ही प्रयत्न है। विद्यार्थियों का चरित्र बल, कर्म शक्ति, आशा, विश्वास, उत्साह, पौरुष, संयम और सात्विकता जागृत करने की शक्ति उनमें नहीं है। जिस विद्या में कर्तव्य शक्ति की प्रेरणा न मिलती हो, स्वतंत्र रूप से विचार करने की बुद्धि न आती हो, परिस्थितियों से टकराने की सामर्थ्य जो न दे सके, वह विद्या निस्तेज है, बिल्कुल निष्प्राण है। आज का युग ऐसी दिखावटी विद्या ही दे रहा है। हमारे असंख्य विद्यार्थी कला, विज्ञान और वाणिज्य की डिग्रियां प्राप्त करके निकलते हैं तो उनमें छल, कपट, धुरता, दुष्चरित्रता, फैशन परस्ती, विलासिता, द्वेष और अहंकार के अतिरिक्त तो कुछ भी कम ही दिखाई देता है। आज के कलयुगी विद्यार्थियों की करतूतें किसे छिपी हुई है? तनिक तनिक सी बातों पर हड़तालें, मारपीट, लूट खसोट, झगड़ेबाजी, परीक्षा में नकल, लड़कियों से गंदा मजाक, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग, भारी खर्च करने की आदत, सिनेमा, सिगरेट और गुटखा इत्यादि व्यवसन हर कोई देख सकता है। स्वतंत्र चिंतन का उसमें बिल्कुल अभाव होता है। विचारों की पराधीनता का नाम अविद्या है। जिस पाठ्यक्रम में ऊपर बताई गई त्रुटियां हैं वह अविद्या ही कही जाएगी। इसलिए जो ज्ञान मनुष्य के अच्छे संस्कारों को जागृत करे, मनुष्य के चरित्र के सर्वोत्तम तत्वों को विकसित करे और उसकी उत्तम वृत्तियों को बढ़ाकर उठा दे, वही विद्या माननी चाहिए। जो ज्ञान मनुष्य के स्वाधीन बनाए, साहसी बनाए, विद्या कहलाने का गौरव उन्हें ही मिल सकता है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का चिंतन अब

0: एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में डॉक्टर सिबगतुल्ला से ली गई पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता। विषय है दांतों की देखभाल कैसे करें। बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। हर व्यक्ति अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहता है और यदि आपके दांत चमकीले हों, मोती जैसे चमक रहे हों, तो यही दांत आपके खूबसूरती को बहुत बढ़ा देता है। यदि आपके दांत चमकीले और स्वस्थ हैं तो हर व्यक्ति अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपके दांत कैसे स्वस्थ रहें, कैसे चमकीले रहें और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए और खान पान में किन चीज़ों का सेवन किया जाए ताकि आपके दांत स्वस्थ रहें और आप भी स्वस्थ रहें। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिबगतुल्ला। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, दांत मोतियों जैसे हमेशा चमकता रहे, किन किन बातों का ख्याल रखा जाए?
2: सबसे पहले दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खान पान या देखभाल सही से नहीं किए तो सबसे पहले हमारे दांतों में कैविटी सड़न शुरू होता है और उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। जैसे आज 100 में 90% लोगों के साथ जब ब्रश करेंगे तो ब्रश के साथ ब्लीडिंग होता है, तो लोग अनदेखा कर देते हैं। तो इस अनदेखे में अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपकी समस्या धीरे धीरे बढ़ते चले जाएगी। अगर छोड़ देंगे बढ़ते बढ़ते, जो आज हम अपने लैंग्वेज में पारिया जो बोलते हैं, तो उससे ग्रसित हो जाएंगे, जहाँ पे पूरे दांत हिलने लगेंगे, फिर दांत निकालना पड़ेगा, वक्त से पहले दांत ख़त्म हो जाता है। तो खान पान पर ध्यान देना है, ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ नहीं जाना है। अगर कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो अच्छे से खाने के बाद कुल्ला कर लेना है। रात में अगर दूध वगैरह या फिर चॉकलेट या किसी तरह का मीठा सेवन कर रहे हैं तो खाने के बाद अच्छे से ब्रश कर लेना है कि उसका मीठापन दांत के अंदर या जो हम स्वीट्स लिए हैं को लगा ना रहे। अगर वो लगा रहता है तो आपके दांत वक्त से पहले कैविटी सड़न शुरू हो जाएगा। सड़न शुरू हो गया तो धीरे धीरे आप निगलेक्ट करते चले गए, डॉक्टर से नहीं मिले, तो वो धीरे धीरे एडवांस स्टेज में चला जाएगा। तो फिर RCT की नौबत आ जाएगी, रूट कैनल करना होगा या तो फिर दांत निकालना होगा। अगर अर्ली स्टेज में आप डॉक्टर से सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं, दिखाते हैं, तो रेस्टोरेशन करके भर के बचाया जा सकता है। तो इससे सबसे पहले हुआ कि ब्रश अच्छे से करें, सुबह में भी ब्रश करें, रात में भी ब्रश करें, कुछ मीठा चीज़ खाएं तो अच्छे से कुल्ला करें। अगर आपके दांतों के अंदर को खाना फंसता है तो उसको आप फ्लॉश करके दांत को क्लीन रखें। जब ये सब चीज़ें आप नियमित रूप से करेंगे तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, मोती जैसे चमकीले रहेंगे। अपने चेहरे को आईने में निहारते हैं, हर चीज़ को आईने में देखते हैं कि खूबसूरती कैसा है, मेरे चेहरे में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहा। इसी तरह आज हमारे मुँह के अंदर भी निहारने की ज़रूरत है, जो अंदर गाल है उसमें भी चेंजेस देखना। अगर कुछ चेंजेस दिखता है तो डॉक्टर से इमीडिएट परामर्श लेना है। और अगर आपके दांतों में सड़न दिख रहा है, ब्लैकनेस दिख रहा है या फिर पीलापन दिख रहा है दांतों में, टाटर जमा हुआ दिख रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपको एडवाइस करें आप उनसे ट्रीटमेंट लें। तो इससे हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे और सुंदर भी रहेंगे।
1: हम लोग दो टाइम ब्रश नहीं करते हैं, सुबह का ब्रश तो करते हैं लेकिन सोने के पहले बहुत लोग ब्रश नहीं करते हैं। खाया, मुंह धो लिया, कुल्ला कर लिया और सो गए, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर ही रह जाती है।
2: अगर खाना का कोई पार्टिकल्स दांत में फंसे रह गए या फिर हम मीठा चीज़ कुछ लिए और मीठा खाकर डायरेक्ट कुल्ला नहीं किए या ब्रश नहीं किया और डायरेक्ट सो गए, तो इससे भी दांतों को नुकसान है, क्योंकि कैविटी जो लगता है मीठापन से ज़्यादा होता है। बच्चों में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे बोतल से दूध पी रहे हैं, पीते पीते सो गए, तो उनके दांत में कैविटी अर्ली स्टेज में आ जाता है, उसको हम लोग नर्सिंग बोतल कैरीज बोलते हैं। इसी तरह बड़ों में भी आदत है, बहुत से दूध पिए, दूध पीने के बाद सो गए, कुल्ला नहीं किए, बहुत से ऐसा मिथ भी है कि दूध पीने के बाद पानी नहीं पीना है, ऐसा है। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमारे दांत वक्त से पहले ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। और अगर ब्रश नहीं किए, खाने का पार्टिकल फंसा रहा, तो फिर दांतों से मसूड़ों से, मसूड़े जो अटैच है वो फिर धीरे धीरे लूज़ होता चला जाएगा, जिससे ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होगा तो फिर पारिया का रूप लेगा। दोनों वक्त ब्रश करना बहुत ज़रूरी है।
1: कुछ चीज़ें खाते हैं तो झंझनाहट होती है, जलन होने लगता है, और कभी ठंडी चीज़ें खा लिया तो उसमें यह परेशानी आने लग जाती है, ऐसा क्यों होता है?
2: जो झंझनाहट और सिलसिलाहट की जहाँ तक बात होती है, या तो हम रॉन्ग टेक्निक से ब्रश करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रश करते हैं, हार्ड ब्रिसल वाले ब्रश करते हैं, यूज़ करते हैं, तो उससे हमारे दांतों के साइड में कटना शुरू हो जाता है। जैसे पहले हम लोग देखते थे कि कुआं से लोग पानी भरते थे, कुआं के ऊपर लकड़ी का रखा रहता था और रस्सी से खींचते थे तो लकड़ी के ऊपर दाग आ जाते थे रस्सी, उसी तरह दांतों के साइड में दाग आ जाते हैं, जिससे इनामिल के लेयर हट गया, डेंटिन आ गया, तो डेंटिन सेंसिटिव होता है जिससे ठंडे गर्म का महसूस होता है। एक ऑप्शन तो ये हुआ। दूसरा वजह यह होता है कि अगर हम कोई वैसा पेस्ट यूज़ कर रहे हैं या फिर दांत का पाउडर जो मंजन हम लोग बोलते हैं वो यूज़ कर रहे हैं जिसमें एब्रेसिव ज़्यादा हो, तो वो रगड़पन ज़्यादा होता है जिससे इनामिल वहाँ भी वेयर ऑफ हो जाता है, तो वो जहाँ से इनामिल वेयर ऑफ हुआ, इनामिल हटा, सेंसिटिव हो जाता है। तो आप अगर ये चीज़ है तो आप इमिडिएटली डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आपके इनामिल हट गए हैं तो उसके लिए टूथपेस्ट वगैरह आते हैं जो आपको रिपेयर अनप्रोटेक्ट करेंगे कि आगे हटे नहीं। अगर आप रॉन्ग टेक्निक ब्रश यूज़ कर रहे हैं या रॉन्ग टेक्निक

0: यूज़ कर रहे हैं या हार्ड ब्रेसल यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उसको चेंज करना है। आपको जो डायरेक्शन में यूज़ करना है, ऊपर वाले दांत के लिए ऊपर से नीचे और नीचे वाले दांत के लिए नीचे से ऊपर, इस डायरेक्शन में आपको यूज़ करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इससे क्या होगा कि आपके दांतों को जो साइड में कटता है वो कटेगा नहीं। और सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश यूज़ करना है जिससे वो साइड में ख़राब ना हो। अगर एब्रेसिव ज़्यादा है तो उससे भी वेयर ऑफ होगा इनामेल, तो उससे भी बचना है।
1: तो किन किन चीज़ों का सेवन हम करें और कौन कौन सी बुरी आदतों से हम दूरियाँ बनाएं?
0: खान पान में जहाँ तक की बात है, जिससे बाहर की चीज़ें, आज हमारे
1: यहाँ फास्ट फूड का बहुत,
0: हमारे यहाँ एक फैशन हो गया फास्ट फूड। फास्ट फूड से बचना है। दांत तो हमारे ख़राब होंगे, दांत के साथ साथ बॉडी भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे क्षतिग्रस्त होंगे, आप पीड़ित हो जाएंगे, बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे, तो वो फास्ट फूड से अवॉइड करना है। और हाइजीन खाना लेना है, जो भी हो घर का खाना लें। घर का खाना लेने से आपको पूरा प्रॉपर हाइजीन मिलेगा।
1: और कौन कौन चीज़ों से हम दूरियाँ बनाएं?
0: सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि गुटखा नहीं लेना है, पान नहीं लेना है। अगर स्मोकिंग की आदत है तो स्मोकिंग छोड़ना है, क्योंकि इससे दांत तो आपके पीले होंगे, दांत ख़राब होंगे, साथ साथ आपके गाल में जो मुकोसा है वो भी ख़राब होंगे, तो उससे लाइकेन प्लेनस होगा, लीकोप्लेकिया होगा, गाल में जलन शुरू हो जाएंगे, गर्म चीज़ नहीं खा सकते, वो धीरे धीरे फिर कन्वर्ट कैंसर की तरफ जा सकता है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। ज़्यादा मिर्च नहीं लेना है, मिर्च लेंगे उससे भी नुकसान है, तो ये सब चीज़ों से बचना है और दूसरों को भी बचाना है।
1: हमारे माता पिताओं को क्या कहेंगे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन होने लग गया है, लापरवाही ज़्यादा हमारे बच्चों में दिखाई पड़ने लग गया है, तो दांतों का वो ख्याल कैसे रखें, माता पिताओं को क्या संदेश देंगे?
0: बच्चे छोटे हैं तो वो ब्रश अगर नहीं कर पाते हैं, जैसे एक साल के बच्चे हैं, दो साल के बच्चे हैं, जनरली वो ब्रश नहीं करते, तो वो कॉटन के कपड़े से लेकर उनके दांतों को साफ़ करना है। सुबह में भी वही चीज़ करना है, रात में भी वही चीज़ करना है। और कोशिश करें जब भी बच्चा दूध पिए तो अच्छे से कॉटन के कपड़े साफ़ कर लें, कि दूध का अंश जो हम शुगर ऐड कर रहे हैं उसका अंश मुंह में ना रहे। इससे क्या है कि लॉन्ग रन चलेंगे। और अगर बड़े बच्चे हो गए हैं तो सुबह में भी उसको प्रैक्टिस कराना है, अपने उसके साथ लगे रहना है ब्रश के लिए, सुबह में भी ब्रश कराना है, रात में भी ब्रश कराना है। नहीं तो बच्चे ब्रश के साथ खेलेंगे, मुंह में डालेंगे, दो सेकंड में मम्मी ब्रश हो गया, तो वो चीज़ देखना है। और जहाँ तक खान पान की बात आई, फास्ट फूड तो ऐसे भी हानिकारक है हेल्थ के लिए। दूसरी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, चॉकलेट से दूर रखना बच्चों को। अगर आप चॉकलेट दे रहे हैं तो अच्छे से कुल्ला कराना है और ब्रश कराना है, इससे बचना है। और जब बचेंगे तो बच्चों के दांत भी सुरक्षित रहेंगे, डॉक्टर के पास विजिट भी कम होगा।
1: जी, तो बड़ी अच्छी बातचीत हुई कि अपने दांतों का ख्याल कैसे रखें। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप बुरी आदतें रखते हैं, तंबाकू का यदि आप सेवन करते हैं, तो तत्काल प्रभाव से इसे आप छोड़ दीजिए। आप छोड़ेंगे तो दांत आपके स्वस्थ रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिबगतुल्ला, दंत रोग विशेषज्ञ, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: श्रोताओ, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सिबगतुल्ला से ली गई पूर्व प्रसाद भेंट वार्ता, विषय था दांतों की देखभाल कैसे करें। बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनेंगे क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: कथितम्। प्रधानमंत्री तस्य साहसं प्रशंसितवान्, तस्य शीघ्र स्वास्थ्यलाभाय शुभकामनाः च अयच्छत्। श्रीमोदी अवदत् यत् संपूर्ण राष्ट्रं तस्य स्वास्थ्यलाभाय प्रार्थनां करोति। प्रधानमंत्री अवोचत् यत् कैप्टन स्मितः साहसेन यथा समयं उचित निर्णयेन क्षमताया धैर्येण च जनानां प्राणान् अरक्षत्। प्रधानमंत्री स्मितस्य साहसस्य प्रशंसां कुर्वन् अवदत् यत् देशः गर्वेण वक्तुं शक्नोति यत् भारतीयाः प्राणान् रक्षितुं स्वजीवनं संकटे स्थापयितुं सज्जाः भवन्ति। वार्तालापस्य समये भावुकः स्मितः अवदत् यत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तस्य सर्वाधिकः आदर्शः अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः दूरभाष संवादं प्रति गौरवानुभूतिः प्रकटिता।
1: आपकी हिम्मत ने, आपके धैर्य ने और आपकी सूझबूझ ने, यानी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में इतने निर्णय कर लिए आपने और इतने लोगों की जान बचाई और आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हम हिंदुस्तानी जान लेने वाले लोग नहीं है, जान बचाने वाले लोग। और आपने अपने शरीर पे इतना बड़ा घाव हुआ, आप स्वयं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहे, उस समय भी आपने अपनी जीवन की परवाह नहीं की, सभी यात्रियों के जीवन की परवाह की। और सबसे बड़ी बात, 140 करोड़ देशवासियों का आपने मान बढ़ाया और इसलिए मैं हृदय से गर्व अनुभव करता हूँ। मित्र, अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: मेरे लिए मैं सर से भी बोल रहा था, आप मेरे सबसे बड़े एक्टर से और मेरे को ऐसे कॉल करके मेरी मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है।
0: वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अमेरिका देशस्य मिल्वोकी नगरे G20 वाणिज्य मंत्रीणां सम्मेलनस्य समापन दिने वैश्विक व्यापार विकृतिभ्यः निवारणार्थं WTO इत्यस्यानुरूपं कार्याचरणाय आह्वानम् अकरोत्। संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमतायाः उत्पादनस्य च विषये प्रवदन् श्री गोयलः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य द्रुतगत्या वर्धमाना बृहत् अर्थव्यवस्था अस्ति, यत्र देशीय याचनाधारित अर्थव्यवस्था 4.1 अरब जनानां सेवां करोति। सः अवदत् यत् भारतस्य विनिर्माण क्षमतया तस्य देशीय वैश्विक आवश्यकतां पूरयति, तथा च भारतस्य G20 अध्यक्षेन अभिधीयमानेषु क्षेत्रेषु संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता नास्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
3: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले HAIR न्यूज अलर्ट्स् इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयुज्यन्ताम्।
0: केन्द्रीय पत्तन नौवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानन्द सोनोवालः ह्यः भारतीय नौवहन निगमं भारतं स्वावलम्बी कर्तुं नौकायान निर्माणस्य समुद्रीय क्षमतायाः च वैश्विक स्पर्धात्मकतायां च प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुम् आह्वयत्। पंजाब राज्य सीमा सुरक्षा बलेन ह्यः तरनतारन क्षेत्रे द्वौ पाकिस्तानी अवैधजनौ मारितम्। BSF इत्यस्यानुसारं ते अवैधरूपेण सीमायां प्रति आगतवन्तः। एशियन गेम्स क्रीडा महाकुंभे ह्यः भारतीय मुष्टामुष्टि क्रीडकैः मल्लस्पर्धिभिः धनुर्धरैः च स्वर्ण पदकानि 6 पदकानि विजितानि इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्वसनीय रूप से डिजाइन और विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन समारोह में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने रोबोटिक सर्जरी समिति के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक तथा जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं का नया तंत्र विकसित होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारतीय नौवहन निगम से देश को जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। श्री सोनोवाल कल निगम के 65 वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा और व्यापार सुरक्षा में भारतीय नौवहन निगम की महत्वपूर्ण भूमिका है। नौसेना कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। सम्मेलन में नौसेना की तैयारियों, रसद, रखरखाव, प्रशिक्षण और मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग पर भी विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्वायत्त और चालक रहित प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने तकनीक को तेजी से अपनाते हुए सेमीकंडक्टर, AI और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की क्षमताएं मजबूत करने की आवश्यकता बताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हाल में नौसेना में शामिल युद्ध पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 500,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। आयोग ने कहा कि 90% से अधिक महिला श्रमिकों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाले 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया है कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू हो गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला कुश्ती, हॉकी और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, U.S. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. We have a report.
2: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Saikia, Akashvani News, Delhi.
1: Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh has said that robotics is set to become an important tool across medical specialities covering diagnostics, treatment and therapy. Addressing the International Conference of the Society of Robotic Surgery, he said that robotics, artificial intelligence and nanoscience will create an ecosystem for precision and personalized healthcare. Dr. Singh said that the future could see the emergence of robotic medicine, robotic endocrinology and robotic cardiology, just as AI is finding applications across different medical specialties. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal has called on the Shipping Corporation of India to play a leading role in making India self-reliant and globally competitive in shipbuilding and maritime capacity. Addressing a ceremony to mark SCI's 65 years of operations yesterday, Mr. Sonowal highlighted SCI's role in safeguarding India's energy and trade security, particularly during the recent Strait of Hormuz crisis. He said a stronger national fleet is central to India's ambition of becoming a leading shipbuilding and ship-owning nation by 2047 under Maritime Amrit Kal Vision 2047. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the Global Horticulture Hub will strengthen the horticulture sector and create better opportunities for farmers in the Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Ms. Sitharaman laid the foundation stone for the Rayalaseema Global Horticulture Hub project and the Indian School of Agriculture at Mandanapalle in Annamaya district yesterday. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu and Deputy Chief Minister Pawan Kalyan were present on the occasion. Speaking at the event, the Finance Minister said the centre and the state are working together to develop Andhra Pradesh as a major horticulture centre. The second edition of the biannual Naval Commanders Conference 2026 concluded in New Delhi after 3 days of deliberations on operational preparedness, logistics, maintenance, training and human resource management. The conference, held from 29th of September to 1st October, also focused on the evolving global security environment and the growing role of artificial intelligence and autonomous and uncrewed systems. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan held bilateral talks with his Netherlands counterpart Silvio Erkens in New Delhi on the 28th of September and discussed bilateral cooperation. The meeting focused on reviewing ongoing cooperation in agriculture sector and strengthening agricultural cooperation by exploring new areas of cooperation. Both sides reiterated their resolve to enhance productivity through modern technology, innovation and knowledge exchange. Agriculture and Farmers Welfare Ministry said in a statement that both sides discussed progress on establishment of 25 centers of excellence in the agriculture and horticulture sectors. The gold rush continued for India at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, as Indian athletes delivered a stellar performance on day 13, clinching 6 gold medals in hockey, boxing, wrestling and archery in a spectacular display of skill, determination and sporting excellence. Indian women's hockey team clinched the gold medal, defeating China 1-0 in the closely fought final. And that is the end of this news bulletin.
3: आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से क्रमशः संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। एक नज़र डालते हैं सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

अब से थोड़ी देर में यानी 7:15 पर हम आपको सुनाएंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम रागरंग। सात बजकर 45 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा कार्यक्रम कानून की बात। समाचार प्रभा सुबह के 8 और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और प्रादेशिक समाचार आप सुनते हैं हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से 8:30 से। पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम को हम लेकर आएंगे 8:45 पर कार्यक्रम का गीत गुंजन, और सुबह के 8 आप सुनिएगा खेल विज्ञान स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम जोहार पलामू। प्रस्तुति होगा संजय कुमार सिन्हा का।

जोहार पलामू कार्यक्रम के संयोजन करता हूँ प्रशांत गौरव। नौ बजकर 30 मिनट पर हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत। दिन के ठीक 10 बजे आप सुनिएगा हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार 10:05 पर।

10:10 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। लौटेंगे स्टूडियो 5:30 पर कार्यक्रम विवरण के साथ। पांच बजकर 35 मिनट पर आप सुनिएगा युवा साथियों को संबोधित कार्यक्रम युवाणी। प्रादेशिक मुख्य समाचार 6:00 6:02 पर आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनिएगा 6:30 से। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के राज्य केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से ठीक 7:00 आप सुनिएगा प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 से 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे गीत गजलों का प्रोग्राम स्वरांजलि। कलाकार होंगे मेहंदी हसन। विज्ञान जगत कार्यक्रम का समय रहेगा 7:45। चित्रपट से ये कार्यक्रम आप सुनिएगा रात्रि 8:00 और विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम हम आपको सुनेंगे इंद्रधनुष 8:30 से। समाचार संध्या 8:45 पर न्यूज 8:09 रात्रि 9:00 और उर्दू में खबरें 9:15 से, जिसे हम रिले करते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और 9:30 पर हम आपको लिए चलेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों में। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे स्पेशल प्रोग्राम एडिशन ऑफ एशियन गेम 2026। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और रोज की तरह हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर।

बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम रागरंग। इस प्रोग्राम में हम आपको सुना रहे हैं पंडित भजन सपोरी से संतूर वादन।

स्वर श्रद्धा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई हुई गजलें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के ही डाल्टनगंज केंद्र से, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनिएगा कार्यक्रम कानून की बात। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आइए सुनते हैं कानून की बात। सुनते हैं एक क्लिक में बड़ा नुकसान, यूपीआई धोखाधड़ी और ऑनलाइन बैंकिंग में ठगी के शिकार लोगों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय। भेंट वार्ताकार हैं श्री अभिनव गुप्ता, उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु शरण।
1: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी रांची के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आज लगभग हर भारतीय को छूता है, एक क्लिक बड़ा नुकसान, यूपीआई फ्रॉड और ऑनलाइन बैंकिंग ठगी। इस विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अभिनव गुप्ता। सर, सर स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये जो समस्या जिस पर अभी हमने कहा एक क्लिक बड़ा नुकसान, ये समस्या कितनी बड़ी है?
2: गौरव जी, ये समस्या काफी बड़ी है। हमें ये भी जानना पड़ेगा कि भारत में आजकल लेन देन के बहुत आसान हो गया है और ये आसानी हमें यूपीआई की वजह से हुआ है। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगस्त 2026 में अब तक का सबसे ज्यादा लेन देन का ट्रांजैक्शन यूपीआई के द्वारा हुआ है। एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2026 में यूपीआई से करीब 25 अरब लेन देन के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनमें कुल लगभग 300 खरब पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ था। पर जितने ज्यादा लोग ऑनलाइन आए हैं, ठग भी उतने

0: ही नए नए तरीके निकाल रहे हैं।
1: ये जो जिस ठगी की हम बात कर रहे हैं, ये किस प्रकार से ये जो ऑनलाइन ठग हैं इसको करते हैं?
0: मैं आपको करीबन 4 से 5 उदाहरण दूंगा। पहला, गलती से पैसे भेज देने वाला फ्रॉड। आपको एकदम से एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में लिखा होगा कि आपके खाते में 5,000 रुपए आए हैं। थोड़ी देर में एक व्यक्ति आपको फोन करेंगे और वो आपको कहेंगे कि भैया, गलती से आपके अकाउंट में हमने 5,000 रुपए भेज दिए हैं और मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि वो हमारे पैसे आप लौटा दें, और मैं आपको UPI लिंक भी भेज रहा हूँ। आपको लगेगा किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा नहीं रखना चाहिए, आप उनको वो पैसा लौटा देंगे। परंतु जब आप बाद में ध्यान देंगे तो आपके खाते में कभी पैसा आया ही नहीं था, वो फेक मैसेज था, नकली मैसेज था, और उस व्यक्ति ने आपके साथ ठगी करके आपके 5,000 रुपए आपसे ले लिए। दूसरा, QR कोड फ्रॉड। कई बार हम लोग ऑनलाइन चीजों को खरीद बिक्री करते हैं। खरीद बिक्री करते हुए कोई ठग आपको ऑनलाइन बोलेगा, मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ, आपका बिस्तर खरीदना चाहता हूँ, और वो कहेगा मैं आपको QR कोड भेज रहा हूँ, कृपया करके उसको स्कैन कर ले। जैसे ही आप उसे स्कैन करेंगे, आपके खाते में एडवांस के 2,000, 3,000, 10,000 रुपए आ जाएंगे। आप उसको जैसे ही QR को स्कैन करेंगे और अपना UPI पिन डालेंगे, पैसा आना तो दूर, आपके खाते से उतने पैसे निकल जाएंगे। तीसरा, फर्जी KYC और नकली कस्टमर केयर। क्या होता है कि आपको एक फोन कॉल आएगा, और आप ध्यान दीजिएगा, ये फोन कॉल आपको नॉर्मल मोबाइल नंबर से आएगा। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर बैंक से आपको कोई फोन कॉल आ रहा है तो वो 1600 से ही शुरू होगा। तो कई बार आपको मोबाइल नंबर से फोन कॉल आएगा, सामने वाला व्यक्ति आपको ये कहेगा कि आपके बैंक अकाउंट का या खाते का KYC पूरा नहीं हुआ है या अधूरा है, या आपका जो डेबिट कार्ड है या जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसमें आज रात को 3,000, 5,000 का चार्जेस लगने वाला है। बट उससे बचने के लिए आप जल्द से जल्द एक प्रोसीजर जो हम बता रहे हैं उसको करिए। इस लिंक पे क्लिक करिए, ये OTP आ रहा है उसको दीजिए, आप जान लें ये ठगी है। कभी भी कोई बैंक अधिकारी, कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी इंश्योरेंस अधिकारी आपसे कभी भी OTP, आपका पिन, CVV नहीं मांगता है। चौथा एग्जाम्पल, APK फाइल फ्रॉड। कई बार सरकारी योजनाओं का मैसेज आता है और उसमें कहा जाता है कि एक फाइल है जिस फाइल के अंत में लिखा होता है .pk। नाउ उस फाइल को आपको कहा जाता है इसको आप क्लिक करें और डाउनलोड करें। ऐसा करने पे एकदम तुरंत में आपका एक खतरनाक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है। ये वैसा एप्लीकेशन है जो पूरी तरीके से ये देख सकता है कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भी अनजान लिंक और एप्लीकेशन को ना डाउनलोड करें। अगर किसी भी बैंक का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर से करें, या बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से करें। पांचवा, डिजिटल अरेस्ट। ये जान लें कि कभी भी पुलिस, CBI या कोई और अधिकारी या फिर कोई और एजेंसी कभी भी ऑनलाइन वीडियो कॉल करके आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है, हम डर जाते हैं। हमें बताया जाता है आपका आधार नंबर ये है, आपका पैन नंबर ये है, आपका एड्रेस ये है, आपको ये पार्सल आने वाला था और उस पार्सल में ड्रग्स है या कोई और इल्लीगल चीज है, और आपको कहा जाता है उस वीडियो पे कि आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया है। और इस डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आपको कुछ चालान या कुछ पेनल्टी पे करना पड़ेगा। बट जान लें, ये डिजिटल अरेस्ट नामक कोई चीज नहीं होती है।
1: सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि कई बार इंसान डर में या लालच में या जल्दबाजी में गलती कर जाता है। एक जरूरी चीज ये है सर कि अभी के डिजिटल युग में ट्रांजैक्शंस तो होंगी, तो इसके लिए हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे बचें हम इस ठगी के विभिन्न तरीकों से?
0: इन ठगी के विभिन्न तरीकों से बचने के लिए कुछ आसान नियम है। पहला नियम, आप ये जान लें कि कभी भी किसी व्यक्ति से पैसे लेने के लिए आपको UPI पिन नहीं डालना होता है। दूसरी चीज, कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति या अनजान व्यक्ति को अपना OTP, अपना UPI पिन, अपना CVV, अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पिन कभी ना दें। तीसरी चीज, किसी भी अनजान लिंक और फाइलों को ना खोलें। चौथी चीज, आजकल स्क्रीन शेयरिंग ऐप से सावधान रहना हमें बहुत जरूरी है। आजकल कुछ ऐसे नए ऐप आ गए हैं जो कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा आपके मोबाइल को रिमोट कंट्रोल में कंट्रोल कर सकता है और ये एप्लीकेशन वो परमिशन देती हैं। तो आप ये ध्यान दें कि आप कोई भी ऐसी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करें जिससे आपके मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल किया जा सके या आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको देखा जा सके। पांचवा, कई बार हम दुविधा में होते हैं तो हम कस्टमर केयर नंबर खोजते हैं। अब ये कस्टमर केयर नंबर हमारी आदत है, हम गूगल पे सर्च करते हैं और खोजते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन पे वो नंबर मिलते हैं। बट ये ध्यान दें, जरूरी नहीं है कि ये जो अनऑफिशियल वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे जो आप नंबर ले रहे हो वो जेन्युइन नंबर हो। तो इसलिए आप ध्यान दें कि कभी भी आपको अगर ये नंबर चाहिए हो या तो ऑफिशियल वेबसाइट से लें, पासबुक से लें, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को पीछे पलट के देखें, उसके नीचे अंत में भी कस्टमर केयर का नंबर होता है, केवल उन्हीं नंबर को ओरिजिनल और ऑथेंटिक नंबर माने।
1: सर, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। एक प्रश्न हम अपने श्रोताओं के लिए ये पूछना चाहेंगे कि मोबाइल आज लगभग सबके हाथों में है, तो क्या बेसिक टेक्निकल सावधानियां सबको रखनी चाहिए, इसके विषय में कुछ बताएं।
0: चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो, आपके प्रियजन या जानकार की आवाज से भी आपको फोन किया जा सकता है। तो सबसे पहला, अगर आपसे कभी भी कोई फोन पे पैसे मांगे, सोशल मीडिया पे पैसे मांगे, उसको इमीडिएटली कभी भी पैसे ना भेजे। आप उनसे डायरेक्टली आमने सामने मिल के बात करके और फिर ही पैसे भेजे। कोई भी व्यक्ति फोन पे अगर आपको कह रहा है कि आपके किसी पार्सल में कोई ऐसी चीज मिली है जो इल्लीगल है, तो आप घबराएं ना, आप उसको समझें, उसको ठीक तरीके से जाने, आसपास के लोगों से उसके बारे में विचार विमर्श करें और बिना घबराए उसका रिस्पांस दें और बोलें कृपया आप मुझे आधा घंटा दें, और उसके बाद उस फोन को काट के परिवारजन से बात करके उसके बाद ही कुछ करें। तीसरा, आजकल हम मेजरली पेमेंट करने के लिए UPI QR कोड यूज़ करते हैं, या कई बार आपको मोबाइल नंबर या ऐसे UPI लिंक्स आते हैं, तो इन UPI लिंक पे पैसे भेजने से पहले ये जान लें, समझ लें कि जिस व्यक्ति को आप पैसा देना चाह रहे हैं, क्या पैसा उसी व्यक्ति को जा रहा है या किसी अनजान व्यक्ति को जा रहा है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम सावधानी रखेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा।
1: एक बड़ी महत्वपूर्ण बात सर आपने अभी कही कि AI का इस्तेमाल करके और आपके रिश्तेदारों या आपके इष्ट मित्रों की आवाज़ भी क्लोन की जा सकती है। तो इस संदर्भ में एक मेरा प्रश्न है कि क्या ये जो स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट TVs हो गए, वॉइस कमांड बेस्ड रिमोट्स हो गए, क्या इनका भी इस्तेमाल किसी प्रकार से हो सकता है जिससे आप साइबर सुरक्षा और साइबर फ्रॉड के दायरे में आ सकें?
0: आप मान के चलें ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपका मोबाइल 2400 घंटा आपको सुन रहा है, उसमें जो AI, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आपका मोबाइल आपको सुन रहा है, और अगर आपके मोबाइल से आपका डेटा, चाहे वो पर्सनल डेटा हो इंक्लूडिंग जो मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं तो अगर इंटरनेट पर रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई उसको सुन भी सकता है, आपकी आवाज़ कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होती है। तो ये हमेशा जान लें, इंटरनेट पे अगर आपने कभी भी कोई चीज़ डाली है तो वो इंटरनेट से कभी भी गायब नहीं हो सकती पूरी तरीके से। इसलिए ये हमारी सावधानी है कि किस तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन, हम अपने डेटा, जो हमारे परिवारजन, हमारे फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है, उन चीज़ों को हम कैसे बचाते हैं। इसके लिए हम एक और चीज़ बोलना चाहेंगे कि जैसे आपका टैबलेट है, जैसे आपका लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें कैमरा होता है, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं, हम उसको रेगुलरली यूज़ नहीं करते हैं, बट ये जो साइबर अपराधी होते हैं वो आपके इन कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को हैक करके और आपको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आपको भी कर सकते हैं, आपके परिवारजन को भी कर सकते हैं। तो अगर इन कैमराज को आप यूज़ ना कर रहे हो तो कृपया करके ढाक के रखें।
1: ये तो बात बचाव की हुई, अब बात करते हैं समाधान की। सर, यदि कोई साइबर अपराध का शिकार हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी साइबर अपराध का शिकार हो जाता है तो सबसे पहला, घबराए ना, समय बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी भी शिकार होने के बाद शुरुआत के 72 घंटे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। उस दौरान जल्द से जल्द उस व्यक्ति को शिकार होने के बाद 1930, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 1930 जो साइबर क्राइम कंप्लेंट नंबर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है, उस पर जल्द से जल्द कॉल करें। अगर आपका कॉल ना लग रहा हो तो आप जल्द से जल्द अपने करीबी पुलिस थाने जाएं और वहां पे जाके FIR फाइल करें। पुलिस वाले अगर कहें हम FIR नहीं कर सकते तो उनसे अनुग्रह करें कि आप कृपया करके 0 FIR फाइल करके केस को साइबर पुलिस थाने ट्रांसफर करें। एक और उपाय है, आप घर बैठे नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है एक जो केंद्र सरकार ने निकाला है, आप कभी भी अगर किसी भी साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो उस पोर्टल पे भी जाके स्वयं को रजिस्टर करके आप अपना साइबर कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। जैसे ही आप अपना साइबर कंप्लेन दर्ज कराते हैं आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, कृपया करके उसको संभाल के रखें और उस एक्नॉलेज नंबर को लेके आप पुलिस थाने जाएं और FIR दर्ज कराएं और रेगुलरली जाके पुलिस से मिलें और पुश करें कि आपका पैसा सुरक्षित रह सके या आपके जो निजी फोटोग्राफ्स हैं जो पब्लिक में चले गए वो जल्द से जल्द इंटरनेट से हटा दिए जाएं।
1: तो 1930 पर श्रोताओं आप फोन कर सकते हैं, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का प्रयोग करके आप उस पर अपनी शिकायत दर्ज करें और घबराएं नहीं। इसमें बड़ा आवश्यक है कि आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग लें। सर, क्या साइबर अपराध से पूर्णतः बचाव संभव है?
0: साइबर अपराध से पूर्णतः बचाव संभव है, हमें बस छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कभी भी कोई भी व्यक्ति के कहने पे इंटरनेट मोबाइल पे कुछ नहीं करना है, कोई भी अपना निजी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है। दूसरा, आप हमेशा किसी भी चीज़ को समझें, उसको समय दें, परिवारजनों से आसपास के लोगों से बात करके समझ के उसके बाद ही उस पर निष्कर्ष निकालें। और हमेशा ध्यान रखें, कुछ भी करने से पहले सोचिए, जानिए और उसके बाद ही भरोसा करिए।
1: सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमें सुरक्षित रहने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल किसी दूसरे व्यक्ति के बात में नहीं आना है। जो भी कदम उठाना है सोच समझ के और अपनी इच्छा अनुसार उठाना है, समय लेके उठाना है, कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हम सतर्क रहना पड़ेगा।
1: श्रोताओं, कानून की बात कार्यक्रम में हमारा प्रयास ये होता है कि आप तक सरल और सुगम तरीके से हम लोग वो जानकारियां पहुंचाएं जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। श्री अभिनव गुप्ता सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: एक क्लिक में बड़ा नुकसान, UPI धोखाधड़ी और ऑनलाइन बैंकिंग में ठगी के शिकार लोगों के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय की जानकारी अभी आप सुन रहे थे कानून की बात में। भेंटवार्ताकार थे श्री अभिनव गुप्ता, उनसे बातचीत कर रहे थे प्रभु शरण। अब हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार।
4: भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया, कहा इससे सौर ऊर्जा क्षेत्र में भारत की वैश्विक नेतृत्व की स्थिति मजबूत होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से।
3: भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
6: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from the heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
3: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
7: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
9: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुँचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं है, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
10: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
11: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर मैंने अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है। उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उसके मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
12: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
13: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
14: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3

0: महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में एक एक स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रहे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास। सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहित ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. India calls for WTO compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kumkum Mohor clinches gold in recurve event. Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And now the news in detail. India has called for WTO-compliant approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers' meeting in Milwaukee, U.S. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade-distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. He said such concerns

0: The victory, Kum Kum became the first Indian woman to win an Asian Games medal in the individual recurve event. Earlier, Kum Kum defeated China's Jing Yi Zhu 6-2 in the semi-final, securing a quota place for India at the 2028 Los Angeles Olympics. With this victory, India's medal tally rose to 77, including 17 gold, 25 silver and 35 bronze medals. In hockey, defending champions India will take on against Malaysia, with the two teams meeting at the Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold medal and an LA 2028 Olympics quota. And now for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
1: Thank you, Anuja. The front page news of all the dailies today is on the historic hockey and archery wins in the Asian Games in Japan, with Indian hockey team celebrating the win to qualify for the Los Angeles Olympics. The Times of India headline says, "Poor gold, India equals its best day at any Asiad with haul of six." Recounting the mid-air incident, PM Modi shares unforgettable conversation filled with pride and emotion with hero pilot who saved lives on social media platform X, cites the Statesman.
2: Hindustan Times refers to the Russian President Putin hailing Prime Minister Modi having very good ideas aimed at mutually acceptable solution for ending Ukraine war. In a move to standardize official cartography and enhance public awareness of the sensitive border region, India adds 28 sites in Ladakh to official map, states the Asian Age. And finally, the Pioneer writes, Vande Bharat Express sets 100 km per hour record over the highest and first cable stayed Chenab Railway Bridge. And with that, it's back to you, Anuja.
3: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India calls for WTO-compliant measures to address trade distortions, dumping and predatory pricing. G7 countries agree to release 100 million barrels of diesel and crude oil as prices climb record high in United States. United Nations welcomes India's Green Energy Corridor Phase 3, says it will strengthen India's position as global leader in solar energy. Union Cooperation Minister Amit Shah to lay foundation stone for 255 crore rupees dairy plant in Ujjain today, with processing capacity of 3 lakh litres of milk per day. And in Asian Games, Indian archer Kum Kum Mahor clinches gold in recurve event, Indian men's hockey team to clash for gold against Malaysia. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
5: दीदी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है बच्चे के जन्म को लेकर।
6: चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना, सब बहुत अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई।
7: पर खर्चा?
6: बच्चे का जन्म और दो रात अस्पताल में, माँ और बच्चे दोनों की देखभाल।
7: वो तो ठीक है, पर खर्चा?
6: अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना?
8: चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना?
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: डॉक्टर दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू का प्रसव अच्छे से हो गया, क्या आप जच्चा बच्चा को घर ले जाएं?
11: अभी माँ बहुत कमजोर है, उसे दो दिन यहीं रहने दें। प्रसव के तुरंत बाद जच्चा बच्चा को संक्रमण और रोग का खतरा ज्यादा रहता है। सही देखभाल और संक्रमण से बचने के लिए माँ और बच्चे को प्रसव के बाद दो दिन अस्पताल में ही रहने दें। यह सुविधा सभी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
12: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर 44 साल बाद जीता स्वर्ण पदक। झारखंड की बेटी और कप्तान सलीमा टेटे सहित राज्य की चार खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान। JSSC CGL जांच में बड़ी सफलता। परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी के करीबी को किया गिरफ्तार। केस में अब तक 20 आरोपी पकड़े गए। रांची DC और SSP ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर प्रमुख पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। सुरक्षा और CCTV को लेकर दिए सख्त निर्देश। धनबाद के निरसा

0: में पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकद और एटीएम कार्ड बरामद। और साहिबगंज बरहड़वा सेक्शन पर गंगा नदी का तटबंध कटने से डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद। मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और अब समाचार विस्तार से। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर कुल 76 पदक जीते हैं। महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीता और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाई, अंकुश और परवीन हुड्डा ने, जबकि पहलवान सुजीत कलकल ने देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किए। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम के 44 साल बाद ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने पर हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कौनबेगी ने टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए गर्व की बात है कि टीम की कमान सिमडेगा की सलीमा टेटे के हाथों में थी और विजेता टीम में राज्य की 4 बेटियां शामिल रहीं।
1: आज भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स में चीन को पराजित कर 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिर्फ ऐतिहासिक जीत हासिल करने के साथ 2028 में ओलंपिक खेला जाना है उसके लिए भी सीधे क्वालिफाई कर लिए है।
0: प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त संगठन महामंत्री पवन साय के रांची पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव की सराहना की। इस दौरान निवर्तमान महामंत्री कर्मवीर सिंह को विदाई दी गई। मौके पर श्री साय ने कहा कि हमें संगठन को और मजबूत बनाते हुए वर्ष 2029 के चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना है।
2: आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में इतना व्याप्त हुआ है, उसके पीछे का कारण यही है कि हम सब कार्यकर्ता और अपने आने वाला कदम किस दिशा में लेकर जाएंगे तो अच्छा होगा। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक नंबर का, पहले नंबर का पार्टी बना है।
0: जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी के संचालक के करीबी मिथिलेश पांडे को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 20 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। रांची में दुर्गा पूजा के दौरान सुरक्षा और सुगम यातायात को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुरक्षा गाइडलाइंस जारी करते हुए एसएसपी राकेश रंजन और अधिकारियों की टीम के साथ बकरी बाजार सहित शहर के प्रमुख पूजा पंडालों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन, सीसीटीवी, भीड़ नियंत्रण और इमरजेंसी एग्जिट को लेकर पूजा समितियों को सख्त दिशा निर्देश दिए।
3: पूजा का त्योहार का आयोजन के संबंध में जिला प्रशासन आज सभी महत्वपूर्ण जितने भी दुर्गा पंडाल है वहाँ सभी टीम के साथ इंस्पेक्शन के लिए आई हुई है और यहाँ पंडाल समिति के लोगों को और शांति समिति के लोगों को हम लोगों ने बहुत सारे दिशा निर्देश पहले से दिए हैं, विशेषकर महिला पुरुष का अलग अलग एंट्री एग्जिट प्वाइंट के लिए, फिर उसके बाद सुरक्षा के लिए बिजली, फायर और भवन का जो प्रमाण पत्र जो लेना है उसके संबंध में।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ रांची के बहु बाजार स्थित योगदा सत्संग आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने स्वामी ईश्वरानंद से मुलाकात की और श्री श्री परमहंस योगानंद के कक्ष सहित ध्यान मंदिर का परिभ्रमण किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ के मुक्तिधाम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं और लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाई गई। यहां स्थापित गांधी जी के अस्थि कलश पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल, उपायुक्त ऋतुराज और अन्य अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर सांसद ने कहा कि हम सभी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के आदर्शों का अनुसरण करने की आवश्यकता है।
4: कि हर आदमी को अपने जीवन में ये घूटी पीना पड़ेगा कि हमको अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने अगल बगल को स्वच्छ रखना है। जिस दिन ये प्रेरणा सबके अंदर घुसी, विश्वास जानिएगा हमारा देश बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को हम लोग जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं।
0: धनबाद के निरसा में पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत पीठा कियारी गांव में छापेमारी कर 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से करीब 3.25 लाख रुपए नकद, 19 मोबाइल और 7 एटीएम बरामद हुए हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मोहम्मद याकूब ने बताया कि पुलिस बरामद दस्तावेजों के आधार पर इस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है।
5: टोटली 11 लोगों को अरेस्ट किए हैं और उन लोगों से हम लोगों को मोबाइल्स भी मिला है, बैंक डॉक्यूमेंट्स दैट इज डेबिट कार्ड्स, सिम कार्ड्स और कुछ रिकॉर्ड्स भी मिला है जिसमें वो मेंटेन करके रखे हैं ये साइबर क्रिमिनल ट्रांजैक्शंस के बारे में, वो भी डिटेल हमको मिला है। तो सारे लोगों को हम कस्टडी में लाए हैं, पूछताछ किए हैं, अपना जो भी अपराध है उसका कन्फेस किए हैं, तो सारा डिटेल रिकॉर्ड हुआ है।
0: साहिबगंज बरहड़वा सेक्शन में गंगा नदी का तटबंध कटने से डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया है, जबकि अप लाइन से सीमित गति से ट्रेनें चल रही हैं। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष गुप्ता ने प्रभावित स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी सेवा बहाली के लिए युद्ध स्तर पर जुटे हैं।
6: कि पिछले 3 दिनों से मालदा डिवीजन के पूरे अधिकारी, कर्मचारी, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, जिला प्रशासन ने भी अपनी टीम भेजी है, गोता टीम भेजे है, स्पीड बोट है, तो 3 दिन से प्रशासन पूरा लगा हुआ है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और काफी कोशिश की जा रही है।
0: राज्यभर में आज संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि का महापर्व ज्योतिया मनाया जा रहा है। माताएं 24 घंटे का कठिन निर्जला उपवास रखकर शाम को भगवान जीमूत वाहन की पूजा और कथा श्रवण करेंगी। कल सुबह पारण के साथ व्रत संपन्न होगा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची सहित अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि स्थानीय बदलावों के कारण कुछ हिस्सों में हल्के बादल और छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने एशियन गेम्स में भारत द्वारा एक दिन में 6 स्वर्ण पदक जीतने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है गोल्ड का सिक्सर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं बीमारी बांट रहा दूषित पानी, रांची सहित 6 जिलों में डायरिया का खतरा। हिंदुस्तान लिखता है बेड़ों में ट्रेलर ने कार को 500 मीटर घसीटा, एक की मौत। दैनिक जागरण के अनुसार लोहरदगा के अवरा झरिया झरने में डूबने से रांची के कार्यरत इंजीनियर समेत 2 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर 44 साल बाद जीता स्वर्ण पदक। झारखंड की बेटी और कप्तान सलीमा टेटे सहित राज्य की 4 खिलाड़ियों ने बढ़ाया देश का मान। जेएसएससी सीजीएल जांच में बड़ी सफलता। परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने प्रश्न पत्र छापने वाली एजेंसी के करीबी को किया गिरफ्तार। केस में अब तक 20 आरोपी पकड़े गए। रांची डीसी और एसएसपी ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर प्रमुख पूजा पंडालों का किया निरीक्षण। सुरक्षा और सीसीटीवी को लेकर दिए सख्त निर्देश। धनबाद के निरसा में पुलिस ने साइबर शील्ड अभियान के तहत 11 अपराधियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में नकद और एटीएम कार्ड बरामद। और साहिबगंज बरहड़वा सेक्शन पर गंगा नदी का तटबंध कटने से डाउन लाइन पर ट्रेनों का परिचालन बंद। मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: बहन, मेरी बिटिया की आंखों की रोशनी छोटी सी उम्र में ही कमजोर हो गई है, रात में उसे ठीक से दिखाई ही नहीं देता।
8: कहीं तुम्हारी बेटी में विटामिन ए की कमी तो नहीं हो गई है?
7: विटामिन ए वो क्या होता है बहन?
8: विटामिन ए शरीर के विकास और खासकर आंखों की रोशनी के लिए बहुत जरूरी होता है। तुम्हारी बिटिया की आयु क्या है?
7: 4 वर्ष।
8: अपनी बिटिया को विटामिन ए की खुराक पिलाओ। ये 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 6 माह के अंतर पर दी जानी चाहिए।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। तुम्हारी माता जी का स्वास्थ्य अब कैसा है?
10: क्या बताऊं भाई, कल माता जी के स्वास्थ्य की जांच के लिए उन्हें गांव के सरकारी अस्पताल में ले गया था, पर वहां तो डॉक्टरों ने उनकी ठीक से जांच ही नहीं की। अब आम आदमी कहां फरियाद करे?
9: अरे डायल करो 104 नंबर।
10: वो क्या है भाई?
9: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन, जहां सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों से संबंधित शिकायत, जैसे अस्पताल में डॉक्टर का न होना, दवाई का

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र का प्रसारण। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से, प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन। ये प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय सिन्हा का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों से। फिल्म का नाम है मन है।

0: मन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अलग अलग फिल्म का ये गाना।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको।
2: हाँ।

अलग अलग। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से और इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का प्रोग्राम गीत गुंजन एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं दैनिक प्रोग्राम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

ज्वार पलाम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजय सिन्हा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और जोहार। सबसे पहले आज का विचार, मस्तिष्क में सांसारिक गतिविधियों को ग्रहण करने की क्षमता सीमित है, अतः उसे स्मृति और विस्मृति का व्यापार निरंतर चलता रहता है। ध्वनि सिद्धांत के अनुसार जीवन में घटित होने वाली सभी घटनाएँ मस्तिष्क में अवस्थित स्फोट केंद्र को ध्वनित करती है, किंतु अपनी संवेदनशीलता एवं उपादेयता के कारण कुछ हमेशा के लिए अविस्मरणीय बन जाती है तथा कुछ अगले ही पल विस्मृत हो जाती है। अपवाद स्वरूप कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो मन मस्तिष्क पर गहरा आघात तो करती है किंतु जीवन के लिए संकट का कारण होने से वे यथाशीघ्र स्मृति पटल से विस्मृत हो जाती है। भले ही लोक में विस्मृति को सांसारिक या शारीरिक विकार के रूप में देखा जाता है, किंतु इसके बिना जीवन का बोझ ढोया जाना संभव नहीं है, अतः दोनों में संतुलन जरूरी है। इसलिए स्वस्थ जीवन संचेतना के लिए स्मृति और विस्मृति विधाता का विलक्षण वरदान है। आत्मविस्मृति विस्मृति का ही एक रूप है जो आध्यात्मिक संदर्भ में जगत के

दुखों का कारण है, किंतु सांसारिक विरक्ति की दशा में देहाभिमान शून्य होने का लक्षण भी है। वस्तुतः प्रेमातिरेक में तादात्म्य की पराकाष्ठा आत्मविस्मृति को जन्म देती है, इसलिए अतिशय प्रेम के वशीभूत छिलकों का भोग विलास करने वाली बिंदुराणी और लक्षण भक्ति के अधीन भोग स्वीकार करने वाले भगवान श्री कृष्ण आत्मविस्मृति के उत्कृष्ट उदाहरण है। आराध्य ही ताजीवन प्रतीक्षारत भक्ति प्रतिमूर्ति शबरी को आत्मविस्मृति भी ऐसी ही थी। अवध क्षेत्र में विवाह के समय नारियों द्वारा वर पक्ष को गीतों के माध्यम से गाली देने की प्रथा है। इसी मंगल बेला पर मंडप में श्री राम का रूप निहारने की जनकपुरी की नारियां आत्मविस्मृति के को प्राप्त हो गई और अवधेश का नाम भूलकर मिथिलेश को ही गालियां देने लगी। वास्तव में आत्मविस्मृति जगत के प्रपंचों से मुक्ति का साधन होने से भगवत भक्ति की मजबूत आधारशिला मानी जाती है। तो श्रोताओं, ये तो हो गई आज की बात, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा फिल्मी गीत।

नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार प्रणाम। बातें करेंगे अब खेलों की दुनिया की, यानी खेल की बात पर हम फोकस करना चाहेंगे। तो बात करते हैं एशियाई खेल पर जो जापान में खेले जा रहे हैं, और जो भारत की स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति मानी जा रही है। लोलिना बोरहेगेन ने 2024 ओलंपिक के बाद मुक्केबाजी से संन्यास लेने की योजना बनाई थी, लेकिन पेरिस खेलों में पदक से चूकने

उन्होंने अपना इरादा बदल लिया, जो उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि भारतीय स्टार ने शुक्रवार को एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता ने अपने जन्मदिन पर 75 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में चीन की जियो बाओ को 5-0 से हरा कर एशियाई खेलों की महिला मुक्केबाजी में भारत के 12 साल से चले आ रहे स्वर्ण पदक का इंतजार जो था वो खत्म हुआ और प्राप्त किया। उन्होंने पिछले एशियाई खेल में रजत पदक जीता था। लवलीना ने अपने मुकाबले के बाद कहा कि मेरे लिए वर्ष काफ़ी मुश्किल रहा है, पहले मैं मुक्केबाजी छोड़ना चाहती थी लेकिन मैंने जारी रखा। मैं एशियाई खेलों में अपने पदक का रंग बदलना चाहती थी, पर बहुत महत्वपूर्ण था, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैंने खेलना जारी रखा। असम की रहने वाली इस मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था लेकिन पेरिस ओलंपिक में उन्होंने खाली हाथ लौटना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने एक साल के लिए ब्रेक लिया और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वापसी की। वह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई थी। लवलीना ने कहा कि उस परिणाम से मैं खुश नहीं थी और अब जब इन्हें स्वर्ण पदक मिला तो ये भारत के लिए गौरव की बात है। और कबड्डी में अंकुश लगाकर चैंपियन बने हरियाणा के पंगाल। भेरिया गांव की मिट्टी से निकले अंकुश पांचाल की एशियाई स्वर्ण पदक तक पहुंचने की कहानी मुक्केबाजी के रिंग से नहीं कबड्डी के मैदान से शुरू हुई थी। पांचवी कक्षा में राज्य स्तरीय स्कूली कबड्डी प्रतियोगिता का स्वर्ण जीतने वाले अंकुश को करीब 11-12 वर्ष की उम्र में पिता सुरेश पंघाल ने मुक्केबाजी की ओर मोड़ा। इसके बाद कोच राजेश से शुरुआती प्रशिक्षण मिला और प्रदीप सामंत के मार्गदर्शन में उनकी मुक्केबाजी को धार मिली। शुक्रवार को आईसी नगोया एशियाई खेलों की 80 किलोग्राम वर्ग फाइनल में दक्षिण कोरिया के किम विन सियोंग को 4-0 से हरा कर अंकुश ने स्वर्ण पदक जीत लिया। अंकुश के शुरुआती प्रशिक्षण में आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, इसके बावजूद भी इन्होंने एशियाई गेम में स्वर्ण पदक हासिल किया। और बातें करेंगे हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने फाइनल में गत विजेता चीन को 1-0 से शिकस्त दी और 44 साल के बाद जीता स्वर्ण पदक। भारत ने शुक्रवार को चीन को 1-0 से हराकर एशियाई खेलों की महिला हॉकी में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 लॉस एलिजेंस ओलंपिक के लिए भी सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारत की जीत एक शानदार गोल और उसके बाद किए गए जबरदस्त रक्षात्मक प्रदर्शन की बदौलत हुई। मौजूदा चैंपियन और पेरिस ओलंपिया की रजत पदक विजेता चीन ने भारत पर लगातार दबाव बनाया लेकिन भारतीय टीम ने शानदार जुझारूपन दिखाते हुए बढ़त कायम रखी। भारत ने इससे पहले एशियाई खेलों में महिला हॉकी का स्वर्ण पदक केवल 1982 में जीता था। इसके बाद 1998 और 2018 में फाइनल तक पहुंची लेकिन क्रमशः दक्षिण कोरिया और जापान से हारकर उसे रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। अब तालिकाओं पर नज़र डालते हैं। एशियाई गेमों पर क्या जो तालिका है, चीन जो है स्वर्ण पदक अभी तक 162 जीता है और रजत पदक जो है 81, कांस्य 73 और कुल इसके पदक हो गए 316। जापान जो है वो 71 स्वर्ण जीता है, रजत जो है 83 और कांस्य 85, कुल पद हो गए इसके 239। दक्षिण कोरिया स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने 33 और कांस्य पदक जीत क्षमा करेंगे रजत पदक है 39 और कांस्य पदक 62, कुल पद हुआ है 134। उज्बेकिस्तान 20 स्वर्ण, रजत 23, कांस्य 22 और कुल पद हुए इसके 65 और भारत 16।

से और 25 जो है रजत है, और कुल पद इसके जो हो गया 76, यानी भारत जो है पदक तालिका में 5वें स्थान पर है। विश्व चैंपियन भारत शनिवार को एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के स्वर्ण पदक मुकाबले में पाकिस्तान की युवा टीम के विरुद्ध अपने अनुभवी सितारों के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद करेगा। दोनों देशों के बीच यह मुकाबला एशियाई खेलों में पुरुष का अब तक का सबसे अधिक राजनीतिक तनाव वाला फाइनल होगा। पिछले साल एशिया कप के दौरान शुरू हुई हाथ न मिलाने के परंपरा के कारण इस मुकाबले से पहले या बाद में

खिलाड़ियों के एक दूसरे से हाथ मिलाने की संभावना बेहद कम है। हालांकि वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी में भारत पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने मुकाबले के बाद हाथ मिलाते और गले मिलते नजर आए। भारत पाकिस्तान मुकाबले और स्वर्ण पदक की अहमियत दोनों देशों के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। आज का जो मैच है, तीरंदाजी जो है खेला जा रहा है और कुश्ती 7:30 बजे से खेला जा रहा है। हॉकी जो मैच है खेला जाएगा 3:30 से। पुरुषों का फाइनल भारत और मलेशिया के बीच होगा। श्रोताओं, ये तो हो गई खेलों की बात, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा फिल्मी गीत।

अब डालते हैं एक नज़र स्थानीय खबरें बाद में, लेकिन पहले कुछ राष्ट्रीय खबर। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मिच्छर पर कुल्हाड़ी से हमला करने और विमान पर कब्जा करने की कोशिश के मामले में जांच तेज हो गई है। इजरायली अधिकारियों के अनुसार ओमानी को पायलट के इंटरनेट मीडिया खातों पर यहूदियों के खिलाफ हिंसक बातें मिलने का दावा किया जा रहा है। उसके सामान से फ्री फलस्तीन समूहों के पर्चे और फलस्तीन समर्थक सामग्री मिलने की बात भी सामने आई है। उसने पहले भी फलस्तीनियों के समर्थन और इसराइल के विरोध में विचार व्यक्त किए थे। हालांकि जांच अभी जारी और हमले के मकसद पर अंतिम

निकल पाया है। द टाइम्स ऑफ इसराइल के अनुसार एक इसराइली अधिकारी ने दावा किया है कि को पायलट इंटरनेट मीडिया पर यहूदियों की हत्या की बात करता था और उसके पोस्ट से जिहादी विचारधारा से प्रभावित होने के संकेत मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक उनसे अमीराती क्रू सदस्यों से उसे मार डालने के लिए भी कहा गया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ही कहा है कि शुरुआती जांच में हमलावर के इस्लामी कट्टरपंथ से प्रभावित होने के संकेत मिले हैं। उन्होंने आशंका जताई है कि उनका इरादा विमान को गिराने का हो सकता था। यूएई की सरकार समाचार एजेंसी के अनुसार इस बात की जाँच शुरू की गई है कि घटना किसी आतंकवादी गतिविधि या मकसद से जुड़ी थी या नहीं। इसराइल भी अपनी अलग जांच कर रहा है। राइडर के अनुसार इजरायली अधिकारी भी को पायलट से इस घटना के पीछे के मकसद की बाबत पूछताछ करेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इसराइल की कौन सी एजेंसी ये काम करेगी। कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी की खबर मिलने पर उनके माता पिता की पहली प्रतिक्रिया गर्म नहीं है बल्कि डर थी। पिता भूपेंद्र मच्छर ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही परिवार मंदिर पहुंचा और बेटे की सलामती के लिए प्रार्थना की। पायलट के पिता ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल कुछ घंटों की बात करते हुए कहा, हमने प्रार्थना की है भगवान, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बुरी खबर ना आए उससे बचा लेना। एक समाचार चैनल से बातचीत में भूपेंद्र मच्छर ने कहा कि स्मिथ को विमान उड़ाने का जुनून है। करीब 17 वर्षों से विमानन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। स्मिथ ने कई पायलटों का मार्गदर्शन भी किया है। पिता ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि उड़ान उनका पहला प्यार है, उड़ान उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि परिवार के लिए बेटे की बहादुरी से ज़्यादा उनकी सेहत भी महत्वपूर्ण है। और विमान का नया वीडियो जो है सामने आ गया है। दुबई के तेल अबीब जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान में कॉकपिट में हुई घटना का एक नया फुटेज सामने आया है। इसराइल के चैनल 12 ने गुरुवार को इसे प्रसारित किया था। इसमें विमान में मची अफरा तफरी के पल दिखाए गए हैं। इसमें घायल कैप्टन स्मिथ मच्छर और हमलावर ओमानी को पायलट घुटनों पर बैठा दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। यह वीडियो कॉकपिट के पास की सीट से शूट किया गया था। इसमें लोग अंग्रेजी और हिब्रू में चिल्लाते सुनाई दे रहे थे। एक व्यक्ति कहता है कि उसने ओमानी को पायलट फ्लैश क्रैश करने की कोशिश की। दूसरे लोग चिल्लाते हैं, उसे बाहर निकालो, और केबिन में मौजूद लोगों को बैठने के लिए भी कहते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जोहार पलामू और मैं हूं संजय सिन्हा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बदलाव करते हुए सुनते हैं।

श्रोताओं, मैं हूं संजय सिन्हा और आप सुन रहे कार्यक्रम ज्वार पलामू। डालते हैं नजर स्थानीय खबरों पर। स्वच्छता का संदेश लेकर शुक्रवार की सुबह पलामू की सड़कों पर कदमों की रफ्तार दिखाई दी। स्वच्छता ही सेवा है 2026 के तहत आयोजित स्वच्छता मैराथन में पदाधिकारियों, युवाओं, खिलाड़ियों, स्वयंसेवकों और जिलावासियों ने दौड़ लगाई। मैराथन का समापन सिंगरा स्थित अमानत नदी के तट पर हुआ, जहां दौड़ के बाद प्रतिभागियों ने सफाई अभियान चलाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सुबह करीब 6:30 बजे समारोह परिसर से जिला दंडाधिकारी DC दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। DC स्वयं भी दौड़े और प्रतिभागियों के साथ दौड़ते हुए अमरत नदी तट पहुंचे। मैराथन का मार्ग छमुहान साहित्य समाज पिच लाइन और बिस्पुट्टा चौक होते हुए सिंगरा तक रहा। अमरत नदी तट पर दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतियोगिताओं को DC ने मेमेंटो देकर सम्मानित किया। इसके बाद नदी तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्रतिभागियों ने नदी किनारे बिखरे प्लास्टिक, टूटी बोतल और अन्य कचरे को एकत्र कर कचरा उठाव वाहन में डाला। इसके बाद नदी तट पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का संदेश भी दिया। पलामू पिछड़ा विकास मंच की ओर से पलामू समाज छात्रावास में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 197वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। वहीं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। अनेक स्वयंसेवी संगठन और राजनीतिक से जुड़े लोग भी शास्त्री जी का जन्म दिवस बड़े ही धूमधाम

अब श्रोताओं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं क्या कहता है 3 अक्टूबर का इतिहास। 3 अक्टूबर 1735 में फ्रांस और छठे कैल सम्राट ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1831 की बातें करें तो मैसूर, जो अब ब्रिटेन ने कब्जा किया था, आज के दिन 1831 में 1880 पहले मराठी संगीत नाटक संगीत शाकुंतलताल का पुणे में मंचन किया गया था। 1915 में नेवादा के प्रेजेंट वैली में 7.8 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया था आज के दिन। 1932 में आज के दिन इराक यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्र हुआ था। 1977 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था आज के दिन 3 अक्टूबर 1977 को। 1978 को कलकत्ता, जो कोलकाता के नाम से जानी जाती है, पहला और दुनिया के दूसरे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था कोलकाता में। 1984 में भारत की सबसे लंबी दूरी की ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए रवाना की गई थी 1984 में। 1992 की बात करें तो गीत शेट्टी ने विश्व पेशेवर विलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता था। 1994 में भारत ने सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया था। 1995 में चीन एवं इंग्लैंड के बीच हांगकांग के सुगम हस्तांतरण पर सहमति बनी थी। 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर को संयुक्त रूप से देने की सिफारिश की गई थी। 2003 में पाकिस्तान

फोर मिसाइल का परीक्षण किया था। 2004 में लश्कर ए तैयबा का राजनीतिक संगठन दो हिस्सों में बट गया। 2006 में आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ के नए महासचिव दक्षिण कोरिया के वान की मून होंगे।

जन्म 1967 में हुआ था। सुखबीर गोकर्ण भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, इनका जन्म 1959 में हुआ था। दीपक मिश्रा भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका जन्म हुआ था 1953 में। 1949 में जेपी दत्ता भारतीय फिल्म निर्देशक, इनका जन्म 1949 में आज के दिन 3 अक्टूबर को हुआ था। और उन्हें नमन कर लें जो आज के दिन हम सबों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहा था। 2021 की बात करें, आज के दिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता घनश्याम नायक का निधन हुआ था। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन, इनका निधन 1923 में हुआ था। अद्दाली कृष्णा स्वामी अय्यर प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे, इनका निधन आज के दिन हुआ था। MN विजयन भारतीय लेखक, इनका भी निधन आज के दिन 2007

0: श्रोताओं, इसी गाने के साथ ही हमारा आज का जोहार प्रणाम कार्यक्रम समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: जोहार पलामू।

जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और भाई सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज़ फिल्म है सोलहवां साल।

गाइड फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़। फिल्म है का

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: और हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो ये।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से। सुबह का 10 बजने वाले हैं, शामिल होते हैं अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण सेवा में, जहां से आप सुनिएगा क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भारती के

भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत

0: रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: जापान के आईची नायोगोया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। India has called for WTO complaint approach to correcting global trade distortions at the concluding day of G20 trade ministers meeting in Milwaukee, US. Speaking on structural excess capacity and production, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said, India shares the concerns of many members that trade distorting support in some economies can lead to dumping and predatory pricing. We have a report.
3: Commerce Minister Piyush Goyal highlighted that India's trade with G20 members depends on a transparent, non-discriminatory and rules-based trading system. He said most favored nation treatment is a key guarantee of this system, ensuring that the same terms apply to the smallest trader and the largest trader. Speaking on ending forced labor in global supply chains, Mr. Goyal said India's commitment to the elimination of forced labor is absolute and unconditional. The minister reaffirmed India's commitment to a rules-based, fair, equitable, non-discriminatory, transparent, open, inclusive and multilateral trading system with the WTO at its core. Suparna Sekia, Akashwani News, Delhi.
2: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today met Chair of the Board and CEO of Archer Daniels Midland, ADM, Juan Ricardo Luciano in Chicago. In a social media post, Mr. Goyal said that the discussed avenues to expand ADM's presence and investment opportunities in India. The minister highlighted India's rapidly expanding food processing sector, modernizing agricultural value chains and large consumer base as key areas offering significant potential for growth and collaboration. United Nations has welcomed India's approval of the 1.86 lakh crore rupees Green Energy Corridor Phase 3, describing the grid strengthening and battery storage system as a major step that will deliver big dividends for the country's people and economy. In a statement to a news agency, UN Climate Change Security Executive Secretary Simon Steel said the initiative would help India harness its growing renewable energy capacity, meet rising electricity needs and further strengthen its position as a global leader in solar energy. He said the scheme would help integrate renewable energy into India's power system while supporting economic growth. Madhya Pradesh is holding a major event today to promote milk production and the dairy sector. Union Home and Corporation Minister Amit Shah and Chief Minister Dr. Mohan Yadav

0: chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick
1: chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick chick चुनौती बड़ी थी। शूटिंग के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के सुपरिंटेंडेंट जब आते तो वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि कुछ ऐसा हो कि शूटिंग कैंसिल हो जाए, जबकि इस मुश्किल डॉक्यूमेंट्री को पूरा करने का उसने प्रण खुद ही किया था। सचमुच उसकी प्रार्थना सुन ली जाती, शूटिंग कैंसिल भी हो जाती। एसपी की शूटिंग के दौरान कुछ अलग तरह की समस्याएं होती, जैसे कि सवालों का चुनाव भी वो स्वयं ही करते थे। शुरुआती दिनों में तो मारे घबराहट और डर के रातों को नींद नहीं आती थी। मदद के लिए 5 टीचर्स का पैनल बना था, उसमें आपस में ही पॉलिटिक्स होती थी। हर टीचर खुद क्रेडिट लेना चाहता था। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती।

0: बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन।
1: बीते हुए दिन कुछ

वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठकर कमरे में बंद हो गई थी। वॉल साइज विंडो पर लगे पर्दे झटके से खींचकर कमरे में अंधेरा कर एसी चलाकर चादर तान कर लेट गई थी। 7 बजे यहाँ सूर्यास्त होता है, 8 बजे लोग दफ्तर से घर लौटकर शाम की चाय पीते हैं। ये कोई सोने का वक्त है। उठो दिव्या, दिव्या उठो, कहते हुए पारो ने चादर खींचकर परे सरका दिया। वो सिराने बैठकर दिव्या को दुलराती हुई बोली, भूख हड़ताल से तुम अपने मन की करवा लोगी। दिव्या तमक कर उठ बैठी। तो फिर तो क्या करूं मम्मी, क्या करूं कि मेरी डिमांड पूरी होगी? आखिर इस घर में जरा भी अपनी मर्जी के करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कॉलेज की 10 लड़कियां हिस्सा ले रही हैं उस कैटवॉक शो में। मम्मा मैं अकेली नहीं हूं, उस शो में सिर्फ 1000 रुपए ही तो फीस है, आखिर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग? सवाल रुपए का नहीं है, ड्रेस का है, ड्रेस का। फैशन टीवी की नेकेड लड़कियों की तरह तुम भी पूरा बदन हिलाकर बिल्ली चाल चलोगी हैं? मम्मी बिल्ली चाल नहीं, कैटवॉक। अरे तो कैटवॉक कर मिस वर्ल्ड मिस इंडिया बन जाओगी। क्या कहेंगे हम लोग अपनी सोसाइटी वालों से? सोसाइटी वाले अब दूर हो गए हैं ना, अब तो चौल की दुनिया से हम टावर में रहने आ गए हैं। अब भी सोसाइटी वालों का आखिर कैसा डर, कैसा खौफ? मम्मी ये सिर्फ फैशन शो है, स्टेज पर कैटवॉक करना है। अरे इस पर हमें प्राइज मिलेगा। आजकल स्कूल कॉलेज में इस तरह के कॉम्पिटिशन होते रहते हैं। पता है लास्ट ईयर रीना ने जीता था ये अवार्ड, उसे तो आप जानती है ना कितनी अच्छी है रीना। अरे बिटिया हमने हामी भर दी तो तेरे पापा नहीं मानेंगे। जैसे तैसे तेरे पापा को भी मना लिया ना, तो तेरे चाचा को खबर लग गई ना, तो वो पढ़ाई छुड़वा कर तेरी शादी करवा कर ही दम लेंगे। हाँ अपने पापा को तो तू अच्छी तरह से जानती है ना, चाचा के खिलाफ एक को लफ्ज नहीं सुनते वो। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। ये ड्रेस मत पहनो, स्लीवलेस नहीं चलेगा, शॉर्ट्स मिनी स्कर्ट पहनना तो अलाउड ही नहीं था, सिर्फ कॉलेज जाते वक्त जीन्स और टॉप पहनने की बड़ी मुश्किल से इजाजत मिल सकी थी, लेकिन साथ में स्टॉल या दुपट्टा डालना जरूरी था। कॉलेज के शुरुआती दिनों में दिव्या घर से सलवार सूट पहनकर निकलती और रायमा के घर चेंज कर जीन्स टॉप पहनती और उसके बाद कॉलेज जाती। एक दिन चाची ने देख लिया तो खूब हंगामा हुआ। पापा की हर बात मानने वाली मम्मी ने इस बार मर्म को समझा और उन्होंने वेस्टर्न पोशाक पर मुहर लगा दी थी, पर शर्त ये कि गला डीप नहीं होना चाहिए। कॉलेज जाते वक्त किसी लड़के से मेल जोल नहीं करना, हाथ नहीं मिलाना, किसी की बाइक पर लिफ्ट नहीं लेना जैसी नसीहतों की घुट्टी मम्मी रोज पिलाती थी। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना, एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। कभी कभी रायमा की बिंदास बातें उसे सही लगती थीं। सब कुछ अपनी मर्जी से।

करो। घर वाले कन्विंस्ड ना हो तो उनसे बहाने बनाओ। वो तो अक्सर लड़के लड़कियों के ग्रुप के साथ ट्रैकिंग पर चली जाती थी। उसके घर वाले राजी भी हो जाते थे। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं कि अभी भी गांव वाली मानसिकता उनके भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। अरे, समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। वक्त पर खाना खाना, पैसे कमाना, साल में एकाध बार कहीं परिवार के साथ घूमने जाना, यही शानो शौकत की जिंदगी है इनके लिए। उनके मुताबिक दिव्या को ये सब तो मिल रहा है। पारो दिव्या को समझाकर परेशान हो गई। दुखी होकर वो कमरे से चली गई। उनके जाते ही दिव्या उठी, अपने कटे बालों में बैकपिन लगाते हुए आईने के सामने खड़ी हो गई। आगे पीछे मुड़कर गर्दन टेढ़ी करके हर तरफ से अपने को निहारती हुई अपने ही रूप पर मुग्ध होती रही। रंग सांवला है तो क्या हुआ, रूप और फिगर तो है ना खूबसूरत और चार्मिंग। दिव्या ने वार्डरोब से अपनी टाइट फिट साइड कट मैक्सी निकालकर पहनी, हल्का मेकअप किया और इस तरह मटक कर हाथ हिलाकर बोलती रही जैसे टीवी की कोई वीजे हो। अगर मम्मी पापा राजी हो गए तो पक्का कॉलेज क्वीन का खिताब उसे ही मिलेगा। सोचते हुए आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए दिव्या अपनी बिल्डिंग की 12वीं मंजिल की कायद से बाहर निकलकर फैशन शो के भव्य स्टेज पर पहुंच गई थी, जहां सामने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स बैठे थे। दर्शकों का हुजूम था, तालियों की गड़गड़ाहट थी। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी, जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी।

कंग्रेचुलेशंस। अरे किन ख्यालों में खोई हो बार्बी डॉल। इरफान दिव्या से हाई फाई करते हुए बोला। दिव्या अपने कॉलेज के दिनों से छम से कूदकर वापस आ गई हॉस्टल के लॉन में, जहां सर्दी की नरम धूप का एक टुकड़ा दिव्या के नीले स्वेटर पर अटक गया था। क्यारियों में दुपहरिया खिलकर मुस्कुरा रही थी। हॉस्टल की दीवारों पर लटके बोगनविलिया रानी गुलाबी रंग से नहाकर और ताजा हो गए। दिव्या, यू आर वेरी लकी, तुम्हारा प्रोजेक्ट खूब खूब लाइक किया गया है। और पता है, रावत सर लास्ट मीटिंग में तुम्हारी और तुम्हारी बनाई डॉक्यूमेंट्री की चर्चा कर रहे थे और तारीफ भी कर रहे थे। दिव्या बुत बनी बैठी रही, कोई जवाब नहीं दिया उसने। दिव्या के मन में इस समय यादों का भूचाल सा आया हुआ है। हॉस्टल में आए 3 साल हो गए हैं, घर वालों को लेकर वो कभी भी इतनी व्यग्र नहीं हुई, पर आज मम्मी जैसे सामने हैं। सौम्या दी की नसीहतें सामने हैं। दिव्या स्मृतियों की रेतीली आंधी और तपिश से झुलस गई है। उड़ती हुई रेत से दिव्या अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन रेत की किरकिरी मुंह में भी भरी जा रही है, और जैसे उसका पूरा बदन और मन रूखा हुआ जा रहा है। तपिश और दंश को छोड़ आई है घर पर वो, लेकिन हॉस्टल की जद्दोजहद भी कहां कम है। आर्थिक तंगी, पढ़ाई का प्रेशर, प्रोजेक्ट पूरा करने का तनाव और दबाव, रिश्तों के समीकरण, इस सब में निपट अकेले तालमेल बिठाना कितना कठिन हो गया है। एक समय था जब अपनी सारी जिम्मेदारी घर वालों पर थी, सारा दोष घर वालों पर मड़क देती थी, पर अब अपनी गलतियों की सजा खुद को ही देनी है, खुद को अपनी पीड़ा से भी निकालना है।

0: दिव्या खुद को तपते रेगिस्तान में पाती है, जहां दूर तक वीराना है। मालूम है नियत दूरी तय करने पर उसे लोग मिलेंगे, शहर मिलेगा, पर उस दूरी तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और बहुत लंबा संघर्ष है। हॉस्टल के कलीग्स, दोस्तों और टीचर्स के साथ के बावजूद वो खुद को मरुस्थल में जैसे अकेला पाती है। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। कामयाबी कई बार अपनों से भी दूर कर देती है।
1: व्हाट हैपेंड दिव्या, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? अरे अब तो डॉक्यूमेंट्री से भी पैसे आ जाएंगे ना, तुम्हारी कड़की के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। रिलैक्स, अब सिर्फ स्कॉलरशिप के भरोसे नहीं जीना होगा तुम्हें।
0: नहीं यार, खुश हूं, खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। आज पता है, आज मुझे घर वालों की बहुत तलब लगी है, मम्मी की बहुत याद आ रही है।
1: खैर छोड़ो, अरे तो तू उन्हें फोन करके बता दे कि तू बहुत खुश है, तुझे कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, वो लोग भी खुश होंगे ना।
0: नहीं नहीं इरफान, उनकी नाराजगी और बढ़ जाएगी, उन्हें पता नहीं है कि हम यहां रात रात भर बॉयज और गर्ल्स साथ साथ काम करते हैं, एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे से हाई फाई करते हैं, लेकिन हम सब सिर्फ एक दोस्त हैं, रियल फ्रेंड्स। वे कभी नहीं समझेंगे मेरी प्रॉब्लम, कभी नहीं समझेंगे। पता है फाइनल एडिटिंग वाले दिन मैं, रायमा और प्रणव सर ने एक ही रूम शेयर किया था, बस थोड़ी देर के लिए झपकी ली थी बारी बारी से, उन्हें इन सब की भनक भी लग जाए ना तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मैं कौन सा उनके लिए जिंदा हूं, कहां जिंदा हूं मैं उनके लिए। उस दिन मम्मी ने मुझे कह दिया था, तू हम सब के लिए मर चुकी है, मर चुकी है तू हम सब के लिए।
1: छोड़ ना यार, अब आगे की सोच। 2 महीने बाद फंक्शन है, ड्रामा का थीम तैयार हो गया है। इस बार एक ड्रामा और साथ में एक कोरस सॉन्ग भी तैयार कर लेते हैं, ठीक है?
0: हाँ यार, इट्स गुड आइडिया। पिछले साल का फंक्शन

अप टू द मार्क नहीं था। इस बार हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं तो बस 2 साल और बिताकर यहां से सीधा मुंबई वापस लौटूंगी। मम्मी पापा से दूर आई हूं उन्हें नाराज करके, तो कुछ बनकर ही उनके पास जाऊंगी। मुझे तो टेलीविजन चैनल में काम करना है, बस इतना सा ख्वाब है। हां, पर तुझे प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो सुना है तेरी बनाई वो साइबर क्राइम वाली डॉक्यूमेंट्री चैनल के लिए अप्रूव हो गई है, वो भी एंटरटेनमेंट चैनल के लिए। हाँ यार, अभी तो सिर्फ अप्रूव हुई है ना, टेलीकास्ट नहीं हुई है। मेरी सीरियल्स जब कई चैनल पर टेलीकास्ट होंगे तब वो मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। वैसे एक चैनल ने हम सब की डॉक्यूमेंट्री का एक मोन्टाज दिखाया था, रायमा बता रही थी मुझे।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं, क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है, तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में। दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है, जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी, मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

0: बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था।
1: कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना?
2: लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती। हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना।
0: समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है। मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना।
1: समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो।
0: चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी।
1: चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची?
0: जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जरूरत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी।
1: बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना।
0: हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी।
1: बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता।
0: दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली,
1: आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती, क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना।
0: बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को माल्शेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगनछूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूपती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थीं। टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का पहला भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। मैटिनी शो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज का दिन है जश्न का। जश्न उस आवाज का जो बरसों से हमारे घरों में गूंजती रही है। जश्न उस साथी का जिसने हमारी खुशियों में हमें मुस्कुराना सिखाया, हमारी तन्हाइयों में हमारा साथ दिया और हमारी जिंदगी के हर रंग को संगीत से सजाया। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। हम सभी VBS के स्थापना दिवस के 70वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं। उस विविध भारती की सालगिरह जो सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं था आपके लिए, बल्कि करोड़ों श्रोताओं की जिंदगी का हिस्सा है, उनकी यादों का हिस्सा है, उनकी जिंदगी का जीवन संगीत है ये विविध भारती। तो आज दोस्तों हम और आप मिलकर मना रहे हैं विविध भारती के इस खूबसूरत सफर का जश्न। और इस जश्न में हमारे लिए एक बेहद खास तोहफा है, एक ऐसी आवाज जो अपनी पहचान के साथ साथ बरसों से श्रोताओं के दिलों में राज कर रही है, श्रोताओं के दिलों में बसी हुई है। हमारे साथ हैं जानी मानी गायिका, अभिनेत्री और लेखिका इला अरुण। इला जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत नमस्कार। और आप सभी को विविध भारती के जितने भी अनाउंसर्स हैं, स्टेशन डायरेक्टर और श्रोता
0: जी,
1: 70 साल की ये जो वर्षगांठ आप इतने जोश से मना रहे हैं
0: जी,
1: मतलब इतनी सजी धजी इतनी महिलाएं, तो मैंने मुझे लगा दिवाली है और मेरे लिए एक यादों का दरिया बह गया
0: जी।
1: क्योंकि विविध भारती का जब आपने कहा 70 साल मना रहे हैं, तो हमारी और विविध भारती की उम्र तकरीबन आसपास ही है और बहुत यादें हैं। और आपने, विविध भारती ने मुझे मेरी जवानी के दिन भी याद दिलाए, फौजियों से प्यार करना भी सिखाया, किसानों से बात करनी भी सिखाई, और विविधता जो भारत की एक धरोहर है उसके सारे रंग आपकी विविध भारती पे मुझे मिले, तो बहुत मुबारक।
0: तो आप समझ आया, आपने कहा कि फौजियों से प्यार करना सिखाया
1: जी,
0: तो आपका इशारा कहाँ था? कहीं ना कहीं प्यार आपको भी हुआ किसी से?
1: कहीं ना कहीं नहीं, मैं ऐसी लड़की, मुझे कई बार हुआ और जो जवानी के दिन थे ना
0: जी,
1: उसके प्यार का तो सारा मतलब जिम्मेदारी विविध भारती की है। गाने ऐसे थे
0: जी बिल्कुल,
1: प्यार जिससे हो रहा है उसकी शक्ल दिमाग में, मतलब विविध भारती देखी रे, टीवी तो था नहीं
0: जी बिल्कुल,
1: तो उस समय की बात कर रही हूँ कि वो जो मोहब्बत थी ना इतनी पाक साफ
0: जी,
1: और आप अपना दिल लुटा देते थे। ऐसे कई गाने जो मैं चाहूंगी कि आप बजाएं, अगर वो लोग जिंदा हैं तो याद करेंगे नहीं है तो उनकी याद में मैं गाने पेश करूंगी।
0: बिल्कुल, तो हम एक कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत सुन लेते हैं और उसके बाद श्रोता समझ जाएंगे कि आज हम क्या क्या बातें आपसे करने वाले।
1: जी जी, आपका जो मन में है
0: जी।

0: तो देखिए यहाँ बैठी सभी महिलाओं की चूड़ियाँ भी खनक गई हैं आपके इस गीत से।
1: मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये गाना मेरी जिंदगी का, मतलब मैं क्या कहूँ, एक ऐतिहासिक गाना है
0: जी।
1: जब पहली बार मुझे भारत की कोकिला लता जी के साथ लाइव,
0: बिल्कुल
1: देखिए उस जमाने में ये था कि ऐसा नहीं था कि 100 साजिंदे आके पहले बजा के चले गए, आज तो सब कुछ वैसे भी कीबोर्ड पे हो रहा है
0: जी।
1: पर तब इतने म्यूजिशियंस और ये लाइव, एक तरफ लता जी और एक तरफ मैं, और जिसने कभी कुछ ज्यादा गाया ना हो, सीखा ना हो। और मैं शिव जी को भी याद करती हूँ, पंडित शिव जी को भी, और अपने हरिप्रसाद चौरसिया जी को भी याद करती हूँ, और सबसे पहले यश जी को और श्रीदेवी जी को और सरोज खान जी को। देखिए मेरे लिए बड़ा इमोशनल मामला है, इनमें से आधे लोग रहे नहीं है, पर गाना कैसे बनता है, कैसे पकता है। और इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट है कि जब सरोज जी ने देखा कि मैं डांस भी कर रही थी, सर्दी का मौसम था और दोहरों पे, मतलब रेगिस्तान के टीलों पे, तो उन्होंने कहा ये तो ज्यादती है कि गाना इन्होंने गाया है और ज्यादा हिस्सा श्रीदेवी जी के पास है
0: जी।
1: तो उन्होंने एक लता जी की लाइन पे मुझे डांस करवा दिया। अब मुश्किल ये थी कि इसको डब करना था, तो कैसे ये गाना बाद में हरि जी ने, और उनका सुर बहुत हाई है
0: जी
1: और मेरा ऑक्टेव नीचे है, कैसे ये हुआ, वो है सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी
0: जी।
1: और ऐसे गाना बनता है जो कि टीम वर्क है। तो आज मैं समर्पित उन हमदम परिंदों को जिनके दम से जिंदगी के लम्हे महक गए, मगर उन परिंदों की याद बहुत आएगी जो मेरे गुलशन में दो पल को चहक गए।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो लता जी के साथ बिताए पल के बारे में आप बताना भी चाहती थी, जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा मैं जरूर बताना चाहूंगी, तो बताइए ना कि इस गाने को गाते वक्त लता जी के साथ क्या माहौल रहा आपका।
1: पहले तो मैं ऐसे कांप रही थी, मैं क्या बताऊं आपको कि जिनको जिंदगी भर आपने, आपके लिए तो मतलब ऐसा है कि
0: भगवान
1: भगवान
0: जी,
1: उनके दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे
0: जी, जी।
1: और वो सादगी का एक ऐसा सरस्वती रूप, तो वो आई और शिव जी हरि जी ने मुझे कंफर्टेबल कर दिया क्योंकि मैं जानती थी। अब जब मैंने उनका सुना तो मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, वैसे भी थी नहीं और भी गड्ढे में गई। फिर जब रिकॉर्डिंग करने गए तो बाद में उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आपके गुरु जी कौन है। बस इस बात से मैं

0: मैं मतलब सोच रही थी या तो गुरुजी की मार पड़ेगी गुरुजी को, और या फिर ये उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्योंकि मैंने सीखा नहीं था कहीं उनके साथ गाने में। बहुत अच्छा लगा, मैं जो कुछ मैंने सीखा मजदूरों से बंजारों से सुन सुन के, मेरे पास कान है आवाज का पता नहीं तो
1: अरे आपकी आवाज में पूरे राजस्थान की मिट्टी है।
0: तो लता जी के साथ दो गाने हो गए, ये भी था और रैना बावरी भाई, अनु मलिक जी मैंने सुना आपके साथ आने वाले हैं,
1: आने वाले हैं,
0: तो उनके साथ जाल फिल्म का एक गाना था वो भी मैंने लता जी के साथ गाया था। पर ये सिर्फ एक बहुत ही इमोशनल यादगार है, बहुत सुरीली गायिकाओं को भी मौका नहीं मिलता है कि लता जी के साथ गाएं, और मुझे मौका मिला इसके लिए मैं यश जी की और हरि जी और अपने शिव जी की बहुत बहुत मैं उनके आभारी हूँ, शुक्रगुजार।
1: और हम भी ईश्वर के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आपसे हमें आज मिला दिया, हम उनके आपकी आंखों से या आपके मन से उन तक पहुंच रहे हैं आज। बहुत बड़ा पल है हमारे लिए, विविध भारती के लिए, सभी विविध भारती के परिवार के सदस्यों के लिए, कि आज एला जी दोस्तों हमारे स्टूडियो में पधारी हैं, अपना कीमती वक्त हमारे साथ बिता रही हैं। तो एला जी आप गायिका हैं जैसा कि हम बात कर रहे हैं, अभिनेत्री हैं और आप लेखक हैं। आपकी अभी अभी एक किताब आई पर्दे के पीछे,
0: जी जी
1: है ना,
0: मलाई की लोग देख तो नहीं सकते हैं,
1: हाँ,
0: पर मेरी किताब ये है
1: क्या
0: पर्दे के पीछे,
1: बहुत सुंदर पर्दे के पीछे। और आप भी कितनी खूबसूरत लग रही है पर्दे के पीछे, देखिए। तो इसमें आपने अपने जीवन को खोल कर रख दिया है
0: जी,
1: क्या कहना चाहती हैं आप, मतलब ये आपका आत्म कथात्मक एक
0: बिल्कुल जिंदगी पूरी है। क्या हुआ देखिए, ये गाना मैंने गाया था,
1: हाँ,
0: तो लोग बाग जो होते हैं ना कलाकार को कलाकार नहीं समझते हैं, और गायन को भी, क्योंकि फिल्मों में सिचुएशंस होती हैं। एक गाना मैंने गाया था, मैं तो कह सकती हूँ चोली के पीछे, तो उससे लोगों ने मतलब उसको जैसे ऐसे मान लिया जैसे कोई बहुत बुरा गाना गाया हो, जबकि इसमें लड़की की तो कोई बुराई नहीं है, ये लड़के हरकतें करते हैं जो ऐसी बातें पूछते हैं, बट एनीवे वो मेरा एक मेरे लिए झंडा हो गया कि मतलब ये तो यही गाना गाती है, पर मेरी जिंदगी पर्दे के पीछे। मैंने रंगमंच किया अपने बचपन से, जिसके आगे आपको याद हो बचपन में मखमल का पर्दा हुआ करता था
1: जी बिल्कुल,
0: फिर छोटा स्क्रीन, फिर बड़ा स्क्रीन, तो पर्दे, और फिर जहाँ राजस्थान से हूँ वहाँ लाज का भी पर्दा है, घूंघट का भी पर्दा है। तो पर्दे के पीछे जो मेरी ये ऑटोबायोग्राफी है उसमें ना केवल मैं हूँ, वो भी तमाम औरतें हैं जो मेरी इर्द गिर्द मुझे मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा देती रही। इसमें बहुत कहानियां हैं और खास तौर से औरतों, क्योंकि औरत की नफ्स को मैं समझती हूँ, उसके दर्द को समझती हूँ, उसकी अंदर के जोश को मैं अपने गानों में सेलिब्रेट करती हूँ, पर उसके दर्द को मैं अपने नाटकों में निकालती हूँ। तो पर्दे के पीछे मैं एक माँ भी है, एक जवान लड़की भी है, उसकी मोहब्बतों का भी, स्कूल की शैतानियों का भी जिक्र है, फिर एक नानी का भी जिक्र है, बहुत सारी चीजें, एक मदर भी हूँ। तो औरत तो बहुत दौर से गुजरती है,
1: और आपने औरतों पर बहुत काम किया, इस पर भी हम आपसे एक सवाल करेंगे, लेकिन क्या पर्दे के पीछे ये जो किताब आपने लिखी है, इसे लिखना अपनी जिंदगी को दोबारा जीने जैसा था आपके लिए, कि कलम हाथ में लेने की जरूरत आपको कब महसूस हुई?
0: देखिए वैसे तो मैं काफ़ी लिखती रही, लोगों को पता नहीं है, कभी कभी कविताएं लिखती थी, कभी मैं नाटकों का अनुवाद मैंने बहुत किया है, नाटक लिखे
1: जी, जी।
0: पर जहाँ तक पर्दे के पीछे के लिए मुझे जो पब्लिशर थे वो पीछे पड़े थे, आप तो जानते हैं आजकल वो स्टार से उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, पर मुझे तो ऐसा था कि कलम जैसे हाथ में आई ना तो मेरे लिए एक संवेदात्मक जर्नी हो गई, बचपन को पुनः जीना,
1: बिल्कुल
0: अपने आप में एक एक हिंडोला जैसे कहते हैं ना, झूले पे गए और झूले से वापस आप आए, तो वो उस दौर से दोबारा गुजरना मेरे लिए एक उपलब्धि थी। भावनाओं को मैं ऐसे समेट पाऊंगी, जिंदगी तो बहुत बड़ी है
1: जी।
0: तो मैंने एक जगह किसी और का ही था कि जिंदगी गुजर गई है किरदार निभाते निभाते, मैं कौन हूँ ये सवाल आज भी है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपने इस किताब में उन महिलाओं का भी जिक्र किया है जो आपके अनुभव में रही, आपके साथ रही,
0: बिल्कुल, जो मेरे साथ काम करती थी, जैसे पूरी की एक अधूरी कहानी, पूरी उसका नाम था, पर उसकी जिंदगी में वो जिस जाति से आती थी, बंजारन थी, उसका क्या था, उसके पीछे क्या कहानियां थी, या फिर मेरी दोस्त मानू ने सुसाइड क्यों किया, पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे मैंने अभी नाटक किया है, पर तब औरतों को आधा हिंदुस्तान नहीं समझता है कि जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके लिए एक जीवन को पुनः पाना है और जीना है, उसमें हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं, तो ये सब चीजें, मानो का मरना या पुष्पलता का कैसे भगना, ये सब ये किरदार मेरी मस्तिष्क में समाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो है मेरी माँ, जो जिनका एक चीज है मेरी किताब में लिखी हुई है, आवेश में कभी विवेक मत खोना। ये क्लैपर बोर्ड था, यानी आवेश तो जवान होंगे तो आएगा ही आएगा, पर जब भी ऐसी बात आती थी तो क्लैपर बोर्ड गिर जाता था। आवेश में कभी विवेक, सो मदर, उनकी लोकोक्तियां बहुत कुछ है, मतलब मैं सोचती हूँ पढ़ना चाहिए लोगों को, मेरे लिए नहीं पढ़ना चाहिए, औरत को समझने
1: के लिए पढ़ना चाहिए। तो हमारी जो श्रोता इस वक्त आपसे आपको देख रहे हैं, आपको जान रहे हैं, समझ रहे हैं,
0: और सुंदर महिलाएं बैठी हैं
1: सामने, जो खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं, उन सबसे हम अनुरोध करते हैं कि और मैं भी ये किताब जरूर पढ़ूंगी और इसका इसके बारे में आपसे विचार विमर्श भी करूंगी कि इस किताब को पढ़ने के बाद क्या महसूस हुआ। अब एक गाना जो आप सुनना चाहती थी, आपने कहा कि मैं पुराने दौर में लौटना चाहती हूँ क्योंकि विविध भारती में लोग पुराने गानों को पसंद करते हैं, तो आपकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा दें, फिल्म ताजमहल से।
0: अरे बिल्कुल, ये तो मेरा पहला रोमांस था। करिए करिए
1: जी, सुनते हैं।

0: तो बताइए।
1: तो ऐसा हुआ
0: जी
1: कि देखिए उस जमाने में आप तो कह नहीं सकते थे ना माँ बाप से कि हमें कुछ हो रहा है। तो गर्मियों की छुट्टियों में
0: जी
1: एक हमारे दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदार भी ना कहें कम्युनिटी के कुछ, तो बड़े हैंडसम से थे, सफेद चिकन का कुर्ता पजामा पहन के आए और बहुत अच्छा गाते थे
0: जी जी
1: और मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए गाया हो।
0: अच्छा
1: अच्छा जो कुछ भी था उसके बाद सारी दोस्ती विविध भारती ने निभाई, यानी कि जब कोई खतों किताबत ना हो सके और ये गाना आपकी भावनाओं को मतलब कहीं ना कहीं आपको सहारा दे, तो क्या होता है उसी वक्त आप चिट्ठी लिखने बैठ जाते हैं और आपके आंसू टपक रहे हैं और आप चाहते हैं टपके।

0: ताकि अगले वाले को पता पड़े कि हम कितने रो रहे हैं। पर ये गाना वाकई में मुझे पता नहीं भगवान वो जिंदा हो जहाँ भी है, पर वो एक वो जो जवानी मैं जो म्यूजिक जो काम करता था वो भी विविध भारती का, क्योंकि आकाशवाणी में तो क्लासिकल और ये सब कुछ चलते थे, तो आप लोगों का बहुत सहयोग है कि आपने हमें उस आयु को जीने का एक मौका दिया और हमारी भावनाओं को समझा।
1: बिल्कुल,
0: हर गाना लगता था जैसे आप हमारे लिए बजा
1: रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इला जी, हमारे श्रोता भी लगातार सुबह से लेकर रात तक विविध भारती सुनते हैं और इस वक्त भी आपको देख रहे हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज इला अरुण जी का हार्दिक स्वागत है, साथ ही विविध भारती परिवार के साथ विविध भारती की स्थापना दिवस की भी हम हार्दिक शुभकामनाएं और विशेष बधाई दे रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज इला जी भी ओल्ड इज गोल्ड है, जियो हजारों साल, हम श्रोताओं की लख लख दुआएं हैं इला जी के नाम भी और विविध भारती को भी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि इला अरुण जी इज ऑफ माई फेवरेट गायिका, बेस्ट ऑफ इंडिया रेडियो चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, जहां पर आज इला जी पधारी हैं और इला मैडम का हम स्वागत करते हैं। और लिख रही है कि आज मंदाकिनी जी और इला जी को विविध भारती के स्टूडियो में साथ देखकर बहुत ही आनंद की जो हमें प्राप्ति हो रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है।
0: मुझे भी आनंद आ रहा है आपको देख के। आप तो मुझे साधना किया दिला दी, साधना कट।
1: अरे
0: और 70s में जो आप लोग तैयार हुए ना वो कमाल है। किसी ने, दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी ने पोलका डॉट पहना है, किसी ने सीक्वेंस पहना है, किसी ने, सब चमकीले बढ़िया भड़कीले लग रहे हैं और पुरानी तारीखों की याद दिला रहे हैं
1: जी। और ये सब आपके लिए है, हम सब आपके लिए तैयार हुए हैं और विविध भारती
0: हमारा काम है। ये काम, ये महिलाओं का काम क्या है, हर उत्सव को मनाना
1: जी। तो इला जी आज हम उत्सव मना रहे हैं विविध भारती की स्थापना दिवस के रूप में। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आपके गले में जो राजस्थान की मिट्टी है, आपके गाय गीतों में जो आपकी आवाज में एक अलग ही धमाल है, जैसे कि रेशम का हा, ये जो आप करती हैं, ये है क्या? हुल्लड़, एक ठसक, एक देसी अंदाज, ये क्या है? मतलब आपने इस अंदाज को कैसे बनाए, कुदरती था आपके अंदर या आपने इस अदा को कहीं से संवारा? क्योंकि हमारे श्रोता आपकी इस अदा के कायल हैं और हम भी कायल हैं।
0: मैं इसमें राजस्थान की शुक्रगुजार हूँ। वो जो बेझिझक बना है, जो उनमें, जो उनका फड़त का लहंगा और उनके चूड़े और उनके उनकी आवाजें और उनका निसंकोच होकर के गाना, ये शायद कहीं कानों में पड़ता रहा। हमारी माँ तो हमेशा ये कहती थी, तुम हर वक्त मत गाया करो, अगर उनका बस चलता तो मैं आज यहाँ होती नहीं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक एप्रिसिएशन की, एक कान दिए थे और कहीं ना कहीं मैं उनको जैसे गेहूं वाली हैं, जैसे कोई भी वहाँ भीख जो है वो मांगता नहीं है, वो भी कलाकार ही होता
1: जी,
0: है
1: बिल्कुल, वो उनमें भी कलाकार ही।
0: और उनमें हमें क्या फर्क है, हम परफॉर्मेंस करते हैं, पैसे लेते हैं, वो उनके पास स्टेज नहीं, तो वो सड़क पे आते हैं, गाते हैं, उनकी जो धुनें हैं, उनकी जो मस्ती है, वो कहीं ना कहीं मैं राजस्थान कि को इस मामले में मानती हूँ कि राजस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और ये खराश या जो कुछ भी है, मुझे ईश्वर ने अगर गला ऐसा दिया होगा, जो कि मम्मी कहती थी कि क्या तुम्हारी भारी आवाज है, बट
1: यही आवाज आपके लिए वरदान बन गई
0: जी। जो कई कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने उसे प्यार किया, या उस समय जिस समय पतली आवाजें हर जगह थी, या पार्श्व गायिकाएं या प्लेबैक सिंगर,
1: पतली आवाज था
0: उस समय, कभी भी ऐसा नहीं था कि मोटी आवाजें आए। तो फिर हमारी रेशमा जी तो मेरी रोल मॉडल रही है, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। फर्क इतना है कि वो सब एक गायक घरानों से थी, उनके कहीं ना कहीं उनके खानदानी सारंगी और सब था, मैंने एक्वायर किया है, मैंने उन लोगों को अपना एक, जिसको कहते हैं, वो मेरे लिए एक प्रेरणा रहे हैं और मैंने उनसे कहीं ना कहीं फेस्टिवल से, उनके अंदाज से कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हुई। और फेस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने चाहे पूरा भारतवर्ष देख लीजिए, राजस्थान नहीं है, कोई भी फेस्टिवल बिना संगीत के अधूरा है, और अगर आप फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे, आज मैं कह सकती हूँ कि मैं न केवल राजस्थानी बल्कि शादी जिनके घरों में होती है उनकी मैं एक महानायिका रह चुकी हूँ।
1: बिल्कुल,
0: अगर 5 फंक्शन होते हैं, एक इला अरुण का जरूर होता था।
1: बिल्कुल,
0: तो वो हमेशा था कि वो ट्रेडिशनल, लोग चाहते थे कि कुछ ट्रेडिशन आए, तो हमें अपने जड़ों से जुड़ के रहना चाहिए, और ट्रेडिशन ही है जो आज दोबारा फैशन में आ गए हैं।
1: आ गए हैं और ये हमारी हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है जो कहीं नहीं जा सकती,
0: कहीं नहीं जाएगी।
1: और आपने कहा कि हर फेस्टिवल में आपका एक गाना जरूर होता है, एक गाना जो अब हम लेकर आए हैं आप ही की पसंद का, उसको सुनकर भी हमारे श्रोता जो है झूम उठेंगे। और मुझे लगता है खासतौर से महिलाएं आपके गानों को सुन सुनकर अपने घाघरे के जो स्टाइल है ना वो बदलती रही है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत आप ही की आवाज में।

0: थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढी हुई, मारी कमर को मैंने जरा तीन मिनट का ही थानेदार ने अपनी सारी अकल गवाई।
1: तू कह बोली, तू कह बोली।

सैनिक का घना मोर्चा, कोई प्रेस वाला, कोई मोटा लाला, कोई संतरी जी, कोई मंत्री जी, कोई या बोले, कोई वाह बोले, मैंने उठे ले गया, मैंने बटे ले गया, मैंने रुपया खिलायो, मैंने बड़ा दमकायो, मैं फेर भी ना मानी।

बोले इंस्पेक्टर जी, बड़ो मंत्री जी, ऊपर लड़को ये है, बड़ो तगड़ो ये है, ऐसा जेब में रख लिया।

0: वाह वाह, क्या घाघरा घुमाया आपने।
1: देखिए ऐसा है कि ये इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो गजब की है
0: जी।
1: एक छोटी सी कहानी है।

0: एक लड़की है, वो गांव में खड़ी है और खीरा खा रही ककड़ी
1: जी,
0: उतरे हुए मिनिस्टर का लड़का आता है और वो आकर के उसका हाथ पकड़ लेता है, वो उसको लकड़ी मार देती है। वो कहता है कि देखो भाई मैं मिनिस्टर का लड़का हूँ, तुम नहीं जानती हो। वो कहते होगी। बात यहाँ से बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि वो

0: लाला, सीटी सर सर बजाती, पुलिस दौड़ी चली आई, कंगन मारा उतारा, हथकड़िया पहनाई थानेदार के आगे, फिर मैं मुस्काए, मैंने दियो धचको, उन्हें खायो लचको, थोड़ी टेढ़ी हुई, थोड़ी मेढी हुई, मारी कमर को मैंने जरा सी लचकाई, तो अपना जो उसका
1: एक
0: दूसरा एक तरफ तो स्वाभिमान है, दूसरा जानती आदमी को कहां मैं गिरा सकती हूँ, ल्योर कैसे कर सकती हूँ। और एंड में फूलन देवी की तरह से होता है, इन्हें टिकट दिलाओ, इन्हें मंत्री बनाओ, चुनाव चिन्ह घाघरा ले बना। सो दिस इज नॉट पॉलिटिकल, इट इज अबाउट विमेन, औरत को कमजोर मत समझना। तो ये गाना उस पे था, इसकी रिदम अच्छी है, ये पहली बार राजस्थानी में रैप,
1: या सबसे बड़ी बात,
0: नहीं लड़की में ऐसी, नहीं लड़की में वैसी, हमारे सामने तू क्यों अकड़ी, क्यों तू क्यों झगड़ी, ये सारा कुछ जो है 7.5 मिनट का रैप मैंने लिखा है।
1: ये राजस्थान का पहला रैप है, जो इलाजी की आवाज में है। श्रोताओं, आप इस वक्त इलाजी से रूबरू हैं और हम आप सभी श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि अपने संदेश हम तक पहुंचाएं। इलाजी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कम शब्दों में अपनी बात रखें, इलाजी से हम जरूर वो सवाल पूछेंगे और वो उसका उत्तर देंगी। तो चूंकि बात चल रही थी आपके लोकगीतों की, अभी इन दिनों एक बहुत खूबसूरत लोकगीत आपका बहुत चर्चा में है, चरखा, जिसका जिक्र आप भी करना चाहती थी। तो ये गीत जो चरखा है, अगर सोशल मीडिया में जाएं तो लाखों फॉलोवर इसको,
0: 1 करोड़ हो चुका है,
1: 1 करोड़ हो चुकी है,
0: 10 मिलियन।
1: क्या है इस चरखा लोकगीत में जो आपके दिल के इतना करीब है, और आपने मुझे कई बार कहा कि चरखा लोकगीत पर हम जरूर बात करने वाले हैं और अपने श्रोताओं को सुनाएंगे।
0: इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं सारी स्त्रियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि खुल के सामने आई, चाहे वो पुलिस की हो। आप शॉक्ड रह जाएंगे, वो शायद इंदौर था या बंगलोर था, वो सिक्योरिटी की लेडी थी और अपनी ड्रेस में थी, उनको अलाउड नहीं था कि वो सेलिब्रिटी से बात करें। उसने कहा मैडम आप मेरी रील देखिए, मैं जब घर जाती हूँ तो मैं नारी हो जाती हूँ। ये चरखा है वैसे 400 साल पुराना है, इसे आदिवासियों ने भी गाया, पर जब मेरे सन इन लॉ ध्रुव घानी करने इसको, क्योंकि देखिए लोक संगीत को अगर जिंदा रखना है तो उसको हमें एक नया पैकेज लाना पड़ेगा, वरना वो क्या होगा, चौपाल जैसे हम करते थे। ये तो किसानों का नहीं है, जो ताकत लोक संगीत में, हर म्यूजिक डायरेक्टर लोक संगीत को ही चुरा रहा है क्योंकि वो धुने वो आवाज। तो ये जो चरखा मैंने जब दोबारा गाया तब यंगर जनरेशन को समझ में आया कि लोक संगीत क्या है। मैं तो चरखे से वैसे भी, चाहे कबीर ने चरखा कहा हो, चाहे वो हमारी सूफी गानों में आया हो, पर ये चरखा औरत की बात करता है कि औरत जब सूत काटती थी, गांधी जी का चरखा तो
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: पर ये औरत का वो चरखा है कि पहले वो अपना धागा बुनती थी, उसके बाद वो उससे अपना वस्त्र बनाती थी। और वो कहती है कि चरखे की कमाई से मैं ननदल ने परणाई, चरखी
1: को मैंने ब्याह किया है, इसकी कमाई
0: ये
1: एक औरत की कमाई
0: कमाई जो है वो ये। हमारे यहाँ जोधपुर की भी एक आपकी अनाउंसर है जो मुझे मिली थी, और मैं चाहूंगी कि वो जहाँ भी बैठी इस गाने पे डांस करें, क्योंकि चाहे वो जोधपुर है, चाहे बीकानेर, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई सा भी हिस्सा है, चरखे ने जो दोबारा एक
1: क्रांति
0: लाई है और औरत को जो एक फ्रीडम दी है, यानी जिन पोशाकों में उन्होंने डांस किया है वो कॉम्बिनेशन तो मुझे भी नहीं पता थे कि क्या पर्पल के साथ चटनी ग्रीन हो सकता है, क्या कत्थे रंग के साथ बैंगनी आ सकता, ऐसे ऐसे बेस पहन के ट्रेडिशनल चूड़े, ये सब चीजें जो मैं हमेशा प्रमोट करती हूँ वो पहन के औरतें आई। तो आप ये चरखा गाना मेरी तरफ से मेरे श्रोताओं को 70वीं वर्षगांठ विविध भारती पे मैं भेंट करना चाहती हूँ।
1: बिल्कुल, हम सुनवाने वाले हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आप ध्रुव का नाम ले रही है इस संगीत से, लोक संगीत के साथ, तो ध्रुव ने किस तरह से लोक संगीत की जड़ों को समकालीन संगीत के साथ जोड़ा, आप क्या सोच रही हैं?
0: अब उनके जीवन में एक पुरातन आ चुकी थी इलारून, जो कि उनकी मदर इन लॉ हैं और वो वर्ल्ड म्यूजिक करते हैं। मैंने उनके साथ एक जो आजकल नया ट्रेंड चला है कोक स्टूडियो में, निमरी निमोली भी मैंने गाया है, ही इज वेरी गुड, क्योंकि वो खुद भी गायक भी हैं, तो वो गाने की ताकत को समझते हैं और ये भी समझते हैं हमें कहाँ तक पहुंचाना है। इंटरनेशनली हमारी ऑडियंस तो इंटरनेशनल भी है, तो वो जो उन्होंने भरा है ना, और उसकी चरखे की मादकता को रखते हुए जो इसका ग्रूव बना है, ग्रूव इसकी ताकत है। मतलब अगर ध्रुव मेरी ताकत है तो ग्रूव इस गाने की ताकत है।
1: जी। तो जब ध्रुव की बात चली है तो ये गीत तो हम आपको सुनवाएंगे। हम लगे हाथों आपकी बेटी इशिता जी की भी बात कर लेते हैं।
0: जी, जी,
1: ध्रुव और इशिता की बात इस वक्त हम कर रहे हैं, वो भी कला और अभिनय की दुनिया से

0: जुड़ी हुई हैं
1: जी। वो गाती भी बहुत अच्छा है, पर पता नहीं क्यों नहीं पब्लिकली गा रही हैं, पर गाती भी बहुत अच्छा है।
0: तो क्या कभी ऐसा हुआ इला जी कि पुरानी कला और नई कला के बीच में, या जो बदलते तौर तरीके हैं युवा पीढ़ी की ओर से, उस सोच को लेकर कभी आप दोनों में कोई टकराहट हुई?
1: किस वक्त नहीं हुई, हर वक्त टकराहट होती है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल में वो तो उन्होंने देखा है कि मैं मेरी माँ को पुणे जी रही हूँ, पर वो महाराष्ट्र में रही हैं और मराठी तो आपने देखा फरफट बोलती हैं वो
0: जी,
1: तो बहुत ज्यादा
0: बिंदास
1: भी हैं, ह्यूमर भी अच्छा है, पर मैं उनसे बराबर ये बात कहती हूँ कि मैं पुराने को इतनी आसानी से नहीं भूल सकती हूँ। पुराने ने जो दिया वही हमारी ताकत है। टकराहट होती है पर वो वाद विवाद अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं इतनी भी ना मैं अपने अंधकूप में घुस जाऊं कि मैं कहूँ नहीं हम ही अच्छे हैं। तो ये जो समन्वय है ये नए और पुराने का, ईशिता का मतलब ही है गॉड गिफ्टेड पावर विच कैन अट्रैक्ट एनीबॉडी, ईश्वर प्रदत्त शक्ति जो सबका मन मोह ले। तो मुझे लगता है कि टकराहट के साथ भी कहते हैं ना पहला नाद आया था टकराहट से, तो मेरी जीवन का नाद है, नाद स्वर है और ये टकराहट मुझे पसंद है
0: जी। और ये टकराहट होनी चाहिए हेल्दी टकराहट,
1: ना वो दबी रहे ना मैं दबी रहूं और इससे कुछ अच्छा निकल के आए तो अच्छी बात है।
0: चलिए तो पहले चरखा लोकगीत सुन लेते हैं
1: जी।
0: चूंकि बात ध्रुव और इशिता की हमने की तो आप अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं भूल सकती है, आपने बातचीत करते समय उनका जिक्र किया था,
1: उनका एक गाना बाद में सुनाइएगा
0: और उस पर आपके विचार भी लेंगे कि किस तरह से आप गीतों को जीती हैं।
1: जी
0: तो अभी एक चरखा लोकगीत सुनते हैं
1: जरूर।

0: मुझे ये कहना है केक तो बड़ा अच्छा है
1: जी,
0: लोग पता नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ जो 70 साल मन रहे हैं
1: जी,
0: यानी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, कोई अनाउंसर है, कोई स्टेशन डायरेक्टर है, सब डांस कर रहे हैं इस पे, वैसे ही जैसे राजस्थान में चरखी पे डांस होता है। पर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैं जितने भी शोज बाहर भी मैंने किए और यहाँ भी किए हैं, मैं लंगा और मांगनियार
1: जी,
0: ये जो हमारी कम्युनिटी है, ये जो आपने आलाप सुनी होगी,
1: बिल्कुल,
0: तो जब ये पहली बार रिकॉर्ड कर आए ना, तो मैं तो इनके बाप दादों के साथ कर चुकी हूँ। तो जब एक लड़का आया, उसको मैंने कहा, उसने कौन सा गाना है, अरे मैंने कहा तो तुम्हारा ही गाना है, तुम्हारे दादाजी गाते थे
1: जी।
0: तो देखिए मैं उनके गाने को प्यार कर रही हूँ, और वो लोग जो हैं, वो लोग सब कुछ आज के पॉप पॉप बनना चाहते हैं, सनग्लासेस लगाना चाहते हैं, जर्सी पहनना चाहते हैं, और मैं चूड़े पहनना चाहती हूँ, मैं टैटू कराना चाहती हूँ, चाहती नहीं हूँ, ये फैशन नहीं है,
1: नहीं ये आपके अंदर है, आपके
0: ये
1: अंदर
0: मैंने
1: है।
0: मुझे अगर मैं ना पहनू, सॉरी बज गए होंगे ये, तो मैं उतारने वाली थी, पर मैंने आज क्यों नहीं उतारे, हर स्टूडियो में मेरा ये झुमका छूट जाता है
1: जी, जी।
0: क्योंकि वो टन टन करता है, फिर वो स्टूडियो की इंजीनियर जैसे अभी आई थी, उन्होंने कहा आपका कुछ बज रहा है, तो मैंने कहा ठीक है पर उतारूंगी नहीं, हर बार उतारती हूँ वो वहीं रह जाता है।
1: बहुत अच्छी बात, लेकिन आज आपको नहीं उतारना है। और पता है अभी जब सभी लोग डांस करने लगे थे तो लगा कि हम जैसलमेर आ गए हैं, रेगिस्तान के धोरों में आ गए हैं। आपने विविध भारती के स्टूडियो को एक तरह से रेगिस्तान के धोरों में तब्दील कर दिया,
0: मुझे बहुत मजा आया, एक्चुअली उन्होंने मुझे जोश दिलाया
1: जी। तो हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि आज एला जी को लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, बचपन में दूरदर्शन पर इनके गाने बहुत देखने सुनने को मिलते थे, और लिखते हैं कि आप भी एक गीत गाकर हमें बताइए क्योंकि हम आपको सामने से गाता हुआ देखना चाहते हैं, तो एक गीत आपसे हम गवाएंगे, लेकिन चूंकि
0: ये मत करिएगा क्योंकि क्या है कि ये जो उम्र का एक वफा गुजर गया, तो उसके बाद मैं अब गाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कहे अब आप गाइए ही मत, अब आप बंद कर दीजिए।
1: नहीं नहीं, हमारी श्रोता बिल्कुल आप चाहेंगे और एक ही लाइन आपसे सुनेंगे, लेकिन अभी नहीं।
0: हाँ अभी मुझे थोड़ा रेस्ट दीजिए, क्योंकि कल ही मुझे डॉक्टर ने कहा था कि देखिए आपको कुछ दिन का, क्योंकि परसों मैंने एक नाटक किया था लाइव है ना, तो सच बोलना चाहिए, तो मैंने बहुत जोर का बोला, तो उन्होंने कहा कि आपने थोड़ा उसको डैमेज किया या तो आप थोड़ा वॉइस रेस्ट लीजिएगा और कुछ नली दी मुझे ऊं करके पानी में करना है, वो सब हुआ। दूसरा मैं गांधारी का रोल बहुत अच्छा करती हूँ, तो जब मैं श्राप देती हूँ ना, तो कृष्ण जी अगर होते उससे मेरी आवाज श्राप से जाती रही, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है।
1: बिल्कुल, हमारे पास वक्त कम है और हमारे श्रोता बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपके पति पर हम बात करते हैं, आपके जो अधिकारी नेवी अधिकारी रहे अरुण
0: जी,
1: उनकी जिंदगी जो है समुद्र और सफर से जुड़ी रही हमेशा, और आपकी दुनिया गीत संगीत की मिठास से लगातार जुड़ी रही, तो कभी ऐसा हुआ कि समुद्री सफर में और आपके सुरों के सफर में कभी टकराव हुआ हो?

0: भूचाल आ गया हो या फिर किस तरह का योगदान आपके अरुण जी का आपके जीवन में रहा?
1: अरुण जी मैं बताऊं, जैसे कि जहाज पे लंगर कहते हैं ना, एंकर, एंकर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो जहाज हिलने लगता है।
0: जी बिल्कुल।
1: अरुण जी मेरी जिंदगी के बहुत ही सशक्त एंकर रहे हैं, ही हैज ऑलवेज एडमायर्ड। और एक आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा जरूरत होती है स्पेस की, और उन्होंने मुझे ये स्पेस दी। अगर आप खुला छोड़ेंगे तो जैसे मम्मी कहती थी कि जैसे जहाज को पंछी पुनी जहाज पर वापस आए, वो हाल है। उन्होंने मुझे उड़ने दिया और मैं कभी भी इस बात को भूलूंगी नहीं। सो दैट्स ए वेरी गुड एडजस्टमेंट। वो आर्टिस्ट नहीं पर आर्टिस्ट की कद्र करते हैं, जैसे मैं अपना उठती हूँ, मेकअप होता है, ये करते हैं, ही ऑलवेज एडमायर्स। और हो सकता है अभी सुन रहे हो तो शायद अरुण का मतलब, अगर मुझे करेक्ट करिए, जैसे सूर्य पृथ्वी का होता है, पृथ्वी उसकी धुरी पे, पृथ्वी की धुरी पे सूर्य घूमता रहता है, तो वो ही हमारा संबंध है। और मैंने अरुण जी के साथ 3-4 वॉयज भी किए, मतलब मैं 35-35, 40-40 दिन, उन दिनों में जब मैं बहुत यंग थी, तो मैंने दुनिया के 3-4 चक्कर काटे हैं।
0: आप अभी भी उतनी ही यंग हैं।
1: तो वो जो अकेलापन होता है ना, वो आपको और मौसिकी, आपके अंदर की कवित्री जगती है, आपके अंदर के सुर जगते हैं। बट ही हैज बीन नेवर हर्डल, ये तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हर औरत को जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो उसको उसके लिए थोड़ी सी स्पेस दे।
0: जी जी,
1: क्योंकि औरत जो है ना वो खिलती है
0: जी।
1: अगर आपको वो हर मिनट क्वेश्चन करते रहेंगे, आप सब भी आ रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, तो फिर बात बिगड़ जाती है
0: जी।
1: या हो सकता है अगर कलाकार से शादी की होती, कहीं हमारा ईगो ही ना टकरा जाता, तो अच्छा है। मतलब सब कुछ ठीक है, हाँ श्रोता हूँ, मेरी जिंदगी में सब ठीक चल रहा है।
0: बिल्कुल, आपकी जिंदगी में बिल्कुल सही चल रहा है। और चूंकि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, आपने अभी अपनी बेटी और दामाद को लेकर बात की, अभी हमने अरुण जी के बारे में बात की, और आप हमसे जब फोन पर बात कर रही थी तो बार बार अपनी ग्रैंड डॉटर की बात कर रही थी कि उन्हें नए गाने बहुत पसंद है। आपने कहा टन टन तारा और इससे के गाने।
1: अरे मैं इसका जो कि बता रही हूँ, उनका नाम है, एक का नाम है अमाला, एक का नाम है अलाया। अमाला जब पैदा हुई थी ना, तो ये गाना कोई मान नहीं सकता कि इलारू बजाएगी, यानी इतना बड़ा उनका खोपड़ा था और उस समय उनके बाल नहीं थे। दिल ने मारी टंक मारी टन टन टन टन, तो वो मुझे अभी तक याद है। पर दोनों बच्चे उनके, क्योंकि पिताजी म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, दोनों पियानो बजाते हैं, दोनों गाते हैं। अब मेरी ये कोशिश रहेगी कि उनमें से कोई रेशम करुमाल एक दिन गाए, क्योंकि ये बम्बई के बच्चे तो अंग्रेजी गा रहे हैं, वो मेरा दुख है। पर मैं चाहती हूँ कि वो राजस्थानी भी सीख जाएं या हिंदुस्तानी, पर वो इंडियन क्लासिकल भी सीख रहे हैं, तो सुर तो है कहीं ना कहीं। देखते हैं आगे
0: पसंद
1: क्या।
0: अभी उम्र के मुताबिक है,
1: स्कूल भी है, उम्र के मुताबिक है, पर बहुत ज्यादा वो म्यूजिक को समझती हैं, पियानो बजाती हैं, क्लासिकल सीखती हैं, और पिताजी तो बराबर लगे रहते हैं, तो
0: उनको समझाने में।
1: तो भारत की संस्कृति, जरूरी नहीं कल को कोई डॉक्टर बने, कोई लॉयर बने, पर ये तो आना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि हमारे उसमें है।
0: आप कह रही थी हमसे डॉटर की बात, तो आपने कहा कि मंदाकिनी पुराने गीतों में प्रेम शब्दों में नहीं होता था, भावनाओं में, पुराने गीतों में ठहराव होता था
1: जी,
0: भावनाएं होती थी, इशारे होते थे, और उसमें हम प्रेम करने लग जाते थे। लेकिन आजकल तो टन टना टन टन टन तारा करते हुए हम गर्दन हिलाते हैं, नायक या नायिका से प्रेम हो जाता है,
1: शब्द और लिरिक्स रहे नहीं है ना।
0: जी जी, तो आप इस पर भी चाहती थी कि मैं कुछ कहना चाहूंगी कि कितना अंतर आ गया इन गीतों में। एक जमाने में महान गीतकार किस तरह के गीतों को रचा करते थे, और आज थोड़ा
1: क्योंकि उसकी उसके पीछे की जो टीम होती थी, जहाँ इंदिवर जी लिख रहे हो, आनंद बख्शी लिख रहे हो, नीरज जी लिख रहे हो, और उस समय की हमारी सोशल वैल्यू भी ऐसा था कि कलम से और हारमोनियम तक पहुंचने का जो एक वो था, जर्नी थी, वो बहुत ही भावनात्मक स्तर थी। समाज ही बदल गया ना, कहते हैं समाज साहित्य का दर्पण है।
0: बिल्कुल।
1: तो अभी जब सारे लोग इस पे डिस्को पे डांस कर रहे हैं, तो वो धुने हैं, और मैं चाहूंगी कि एक गाना आप जरूर सुनाए कि वो है मैं ना पहनू थारी चुनरी, जो मैंने लिखा है और उन कुंवारी लड़कियों के लिए लिखा है जो अपने घर से विदा होती हैं। मारे बाबू सा ने चुनरी रंगाई, मारो जियो उस चुनरी में जाए, मैं ना पहनू थारी चुनरी, जो चुनर तुम लाए हो वो नहीं पहनूंगी, मैं बाबूसा की चुनरी पहनूंगी।
0: कितनी बड़ी,
1: तो मैं अभी तक पुराने शब्दों को लाने की कोशिश कर रही हूँ, पर उल जलूल शब्दों में भी कुछ तो है। किसी को कमेंट करने की स्थिति में नहीं है, जो चल रहा है उसे चलने दो और जीवन को जियो, यही मेरा कहना है।
0: तो अभी आपकी ग्रैंड डॉटर की पसंद का ही गीत
1: टन टन टन
0: टन टन
1: ठीक है।

0: मेरी आंखों के आगे ना उनका बिना बालों का सर याद आ रहा है। वो तो लिटरली कार में मारती थी।
1: जी जी,
0: टन टन टन।
1: दिल में घंटी तो हमारी बजी चुकी है और आपने तो कहा कि आपकी घंटी दिल में बहुत बार बजी थी।
0: क्या करूं, कलाकार ऐसे होते हैं।
1: तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि वाह, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और राजस्थान लोग की बात करते समय दो राजस्थानी महिलाएं, अरे विविध भारती के स्टूडियो में अगर आज है तो इससे बेहतर और क्या होगा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही बिंदास हैं इला जी और बहुत अच्छा लग रहा है उनका ये बिंदास रूप देखकर, आज तो बड़ा सुंदर समा बंध गया है।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: तो इला जी, जब बात चल रही थी कि दिन में घंटी कब बजती है आपसे, जब हम पर्दे के पीछे बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने कहा था कि प्रेम और जवानी इस विषय पर हम जरूर बात करने वाले हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, मैं भी, कि लापसिंह ठक्कर का एक नाटक किया था मैंने, पीला गुलाब और मैं, उसमें नायिका कहती है कि जब मैं अपने डायलॉग्स बोलती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और वो अपने पति से कहती है कि वही डायलॉग जब मैं रात को तुम्हारे साथ बोलती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ, मुझे वो असल का एहसास क्यों नहीं होता कि मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी उधेड़बुन में लगभग पगलाई सी हो जाती है कि ये क्या है, सच्चाई क्या है। तो अपने पति से सवाल करती है कि क्या सच है, मतलब मैं नाटक के डायलॉग बोल रही हूँ या सचमुच मैं तुम्हें
0: रियल एंड रियल।
1: तो आपके जीवन में आपने पर्दे के पीछे प्रेम के कितने ही रंग जिए होंगे, और आपकी आवाज में भी जो मोहब्बत का एक पैगाम लोगों को तो पहुंचता है, महिलाओं तक पहुंचता है। एक कलाकार जब जिंदगी भर प्रेम का अभिनय करता है, प्रेम भरे गीत गाता है, तो क्या सचमुच वो प्रेम को महसूस करता है, या उनके अपने जीवन में प्रेम उसे एक रटा रटाया वाक्य सा लगता है या रटा रटाया सा भाव लगने लगता है, आप क्या सोचती हैं?
0: ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। पर सवाल है कि हम नाटक में ही कहते हैं कि जब भी अपनी लाइनें कहो तो ये मत सोचो कि तुमने पहले कही है।
1: जी, जी।
0: अगर पहले रटा रटाया करेंगे ना तो वहां भी एक स्टैग्नेशन, एक आपका मतलब वो फीलिंग होगी नहीं। हम जब कोई नाटक करते हैं, खास तौर से मैं, तो उस पल को मैं जीती हूँ। वो हर पल नया होता है, चाहे नाटक का 200 नाटक किया जा चुका हो, पर ये बात वास्तविकता में आप कहेंगे कि क्या यही डायलॉग, क्या मैं कहूंगी अपने आप, बताइए कि मैं घर से निकलूंगी, लो मेरे लाल गुलाब, मैं निकल रही। धीरे धीरे क्या होता है, समय के साथ जब जिंदगी शुरू की जाती है तब वो रोमांस होता है, सभी की जिंदगी में हुआ होगा, मेरा भी हुआ होगा। फिर धीरे धीरे जीवन सामने आता है और जीवन में जितना एडजस्टमेंट हम करते हैं वो हमारा रोमांस है। आई कैन नॉट बी ड्रामेटिक विद माई हस्बैंड। अगर वो ये सोचे कि वहाँ ये कह रही थी, यहाँ ये कह रही है कि वो गैस वाले का बिल नहीं आया, तो उसमें भी कंसर्न है ना
1: जी।
0: तो वो जितना रियाज करेंगे आप भावनाओं का, और वो कहीं ना कहीं आपके जेस्चर्स बोलने लगते
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: डायलॉग नहीं होता है, जेस्चर्स आपके बोलते हैं कि आपका कंसर्न्स क्या है, जो भावनाएं क्या है। तो बड़ा डिफिकल्ट है। और एक मैंने पहले भी अपने हस्बैंड को कहा था और सबसे कहती हूँ कि कलाकार दरअसल एबनॉर्मल होता है। उसको आप थोड़ा तो सोच लें कि आम व्यक्ति जैसी नहीं है ये, थोड़ा अगर
1: थोड़ा
0: उसका
1: टेढ़ा होता है,
0: टेढ़ा होता है, वो सच्चा भी होता है
1: जी, बिल्कुल।
0: वो कल्पना में भी होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और उसकी सच्चाई कभी कभी उससे टकरा भी सकती है। एवरीथिंग इज गुड विद मी, नो
1: जी,
0: ये सही नहीं,
1: उसको मैनेज करना,
0: उसको मैनेज करना
1: और
0: पड़ता है।
1: इला जी, बहुत हम समय को भी अब मैनेज कर रहे हैं
0: जी।
1: एक अंतिम सवाल के बाद एक लाइन आपको हमारे श्रोताओं को गा के सुनानी है, रेशम का रुमाल पर। अनु मलिक साहब हमारे जाने माने,
0: नहीं उनको मत आने दीजिए, उन्होंने गाना गवाया था दरवाजा खुला छोड़ा है नींद के मारे, मैं पूरे होश में हूँ, मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगी। अच्छा नहीं, ये गाना मैं सुना नहीं सकूंगी।
1: अनु मलिक जी आने वाले हैं, उनके साथ बिताए पल आप याद करेंगी जब अभी आप उनसे मिलेंगी
0: जी।
1: तो दो शब्द अनु मलिक जी के लिए कहिए और फिर रेशम का रुमाल की एक लाइन गाते हुए आप इस।
0: दरअसल मेरा, मैंने जैसे कहा, गला बहुत खराब है, पर आप कहेंगे तो मैं गाने की कोशिश करूंगी
1: जी।
0: और क्योंकि मुझे वाकई में प्रॉब्लम है, अनु मलिक जी के साथ पहली फिल्म मैंने करी थी जाल
1: जी।
0: और वो शायद आज कह भी सकते हैं कि पहला ब्रेक उन्होंने कमर्शियल फिल्म में दिया। वैसे जगजीत सिंह जी के साथ मैंने आशियाना की थी, तो वो बड़े अच्छे इज ए नेचुरल पर्सन, मतलब वो भी हुड़क में रहते हैं और उस हुड़क में हमारा समय समाप्त हो गया शायद।
1: बिल्कुल, तो रेशम का रुमाल की एक लाइन हो जाए,
0: आप गाना सुना दीजिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशम का रुमाल गले पे डाल के तुम आ जाना दिलदार मेरे माँ।

जो दोस्तों हमारे दरवाजे पे बहुत सारे कलाकार अनु मलिक साहब भी आ गए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग अंदर आ गए हैं। आज का ये मैटिनी शो यहीं समाप्त होता है। आप सभी का साथ बना रहा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मैटिनी शो से अब अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद

0: कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान यह बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमरीका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली जिला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, जाने माने संगीतकार अनुमली के साथ लाइव कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती के स्टूडियो से लाइव है मेरे साथ अनु मलिक। 70वें वर्ष में विविध भारती प्रवेश कर रही है और इस समय अनु मलिक हैं विविध भारती के स्टूडियो में बिल्कुल लाइव। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई।
1: अनु जी, आपसे बातें करने के पहले जरा एक बार आपका एक प्रोफाइल प्ले कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो कौन से अनमोल गाने हैं जो आपके इस सफर में आपने हमें दिए हैं और विविध भारती से पिछले कई

0: अनु जी, इतने सारे गाने और ये सारे एक से बढ़के हिट हैं और विविध भारती जो है वो इस समय विविध भारती का ये कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है, न जाने कितने देश हमें सुन रहे हैं। और जिस तरह की हमने पब्लिसिटी की थी कि आप विविध भारती पर आ रहे हैं, विविध भारती देश का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल है और 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और रेडियो से क्या नाता रहा है आपका?
1: देखिए, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं
0: जी
1: कि विविध भारती ने मुझे याद किया। विविध भारती एक ऐसा शब्द है जो हमारे नस नस में, रग रग में है
0: जी।
1: अब आप पूछेंगे ये कैसे है? मैं उनका बेटा हूं जिनका नाम है सरदार मलिक साहब,
0: मशहूर संगीतकार सरदार मलिक,
1: जिन्होंने कमाल कमाल के गाने बनाए। बचपन से ही मुझे उनसे सुनने को मिलता था। और ये कहा उन्होंने कि जब भी विविध भारती ने याद किया है मैं वहां गया हूं, और आगे चलकर तो कितना भी नाम कमा ले, याद रखना कि ये वो जगह है विविध भारती जहां ऐसे ऐसे संगीतकार आके अपनी कहानियां सुना के गए हैं, ऐसा कमाल का काम किया है, उन्हें कभी ना मत कहना।
0: वाह,
1: आज मैं यहां बैठा हूं तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, मेरा 100 बार ये दिल से एक आवाज निकल रही है कि आप कितनी भी मेरी तारीफ करो, ये कहो कि आप आए हैं, अनु जी आए हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं और कहता हूं कि थैंक यू, आपने मुझे यहां बुलाया।
0: क्या बात है,
1: आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को एक अंदाजा होने लगेगा मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी जान तोड़। आप जो गाने सुना रहे थे मैं अपनी यादों में चला गया
0: जी, बिल्कुल।
1: और वो यादें हैं उन निर्माता की, ज्यादातर निर्देशक का नाम लेते हैं लेकिन निर्माता जो प्रोड्यूसर होता है
0: जी
1: कम लिया जाता है उनका नाम, वो निर्माता सब याद आते हैं। जब आपने रफी साहब का गाना सुनाया अभी, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरी उम्र थी 16 साल, 17 साल जब मैंने ये गाना बनाया था
0: पूनम फिल्म के लिए
1: जी, और ये हरमेश मल्होत्रा साहब ने मुझे मौका दिया था। फिर आपने सभी गाने सुनाए और सभी मेरे निर्देशक निर्माता सब याद आए, मेरे गायक याद आए, मेरे लेखक याद आए जिन्होंने गाने लिखे हैं,
0: हाँ जी,
1: मेरे साजिंदे याद आए।
0: बिल्कुल, क्या बात है, ये कितनी प्यारी बात है कि आप अब म्यूजिशियंस को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि संगीत एक संगत का काम होता है यूनुस
0: जी,
1: आपको ये सब लोग सही मिल जाएं तो गाने बन जाते हैं।

0: गुलाब ने पिताजी को याद किया, हम यहां ये दावा कर रहे हैं कि विविध भारती ने 70 बरस का अपना सफर पूरा किया
1: जी,
0: और इन 70 सालों में हमने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लेजेंड्स को रिकॉर्ड किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेडियो चैनल है जिसके पास यादों का एक बहुत बड़ा खजाना है, और आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं। ये तोहफा है पिताजी की आवाज। मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं पिताजी से मिला हूं, विविध भारती में ही मिला हूं जब वो विविध भारती में आए थे, और आज मैं आपके लिए खास तौर पर पिताजी की याद, उनकी आवाज लेकर आया हूं। बरसों पहले की ये रिकॉर्डिंग, 1 मिनट का टुकड़ा मैं आपको सुनवाता हूं।

ये गाना के जिसने गाया वो भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट था। उन्होंने कहा, मलिक साहब मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन हर एक ने कहा कहीं ना कहीं आप फीके पड़ते हैं। मैंने कहा अगर आप मेहनत करें, जी मैं करूंगा, तो आप 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास रोजाना इस कुटिया में आकर बैठिए। 1 मंथ आप बिलीव करिए कि वो इंसान मेरे पास बैठा, और हर वक्त ये पूछता था क्यों कोई कसर तो बाकी नहीं।

0: जी कैसा लगा पिताजी की आवाज सुन के?
1: मैं एक्चुअली भावुक हो गया हूं क्योंकि मैं ये गाना, मेरी माँ कहती हैं, अब तो माँ भी नहीं रही, माँ कहती थी कि तू 4 साल का था जब मुकेश जी घर पर आया करते थे, तू डैडी की गोद में बैठता था,
0: अच्छा,
1: और रिहर्सल होती थी सारंग तेरी याद में। तो वो दिन ऐसे अब याद आ रहे हैं।
0: जी जी।
1: और जिस अंदाज से डैडी ने ये गाना बनाया और जो गाया है मुकेश जी ने, और मैं उनका भी तारीफ करना चाहता हूं जिन्होंने गाना लिखा, भरत व्यास साहब का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो अंबुवा का झूलना, वो पीपल से छाव,
0: घूंघट
1: में जब चांद था मेहनती लगी थी पांव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। डैडी एक महान इंसान थे, भरत व्यास जी, मुकेश जी, और ये गाना आज ऐसा लगता है कल रिकॉर्ड किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: इतनी ताजगी है इसकी इसकी तर्ज में कि वो कूट कूट कर मेरे अंदर भरी हुई है। जो को सीखा वहीं से आया है, और मैं अपने फादर को नमन करना चाहता हूँ और उनकी यादों में ही मैं रहता हूँ और आज भी काम करता हूँ। बल्कि मेरी जंग भी उनकी वजह से हुई।
0: जी।
1: जब उनको वो मुकाम नहीं मिला तो मैंने कहा मैं नाम कमाऊंगा डैडी आपके लिए।
0: बिल्कुल। और आपने वो करके दिखाया, और मुझे याद है कि जब मुलाकात मेरी हुई थी तो वो इतनी आपकी तारीफें करा करते थे और एक गर्व से भरे हुए थे कि मेरे बेटे ने वो मकाम हासिल किया जो जिंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया हासिल करने का।
1: जी बिल्कुल।
0: और चूंकि यादों की बात है तो वो गाना जो आपने इसलिए बनाया शायद ताकि जब भी कभी हम पुराने दौर को याद करें तो इस गाने को दोहराएं कि यादें याद रह जाती हैं।

0: अनु जी बिल्कुल जज्बाती मोड पर हम पहुंच गए, पिताजी को याद किया और
1: बिल्कुल बात
0: ये गाना आया सुभाष घई की फिल्म यादें। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरोज के गाने आपने बनाए। एक वो दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक वो दौर था जब आपने अमिताभ बच्चन के लिए लगातार गाने बनाए, आगे भी बनाए, तो वो यादें बांटिए, यादें हैं।
1: देखिए ये मां सरस्वती की कृपा है। मैं बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट था
0: जी
1: ऐसे महान सुभाष जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना। उसकी जद्दोजहद बहुत हुई
0: जी,
1: आसान नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने बड़े जबरदस्त संगीतकार थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब
0: जी,
1: आर डी बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, जो कमाल कमाल के गाने बना रहे थे। उनके सामने फिल्म मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था
0: जी जी,
1: लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर गाने बनाने की एक चाह है
0: जी।
1: मैं गाना बनाता था, उसे कैसेट्स में रिकॉर्ड करता था, बाजा लेकर चल पड़ता था।
0: यस,
1: सुभाष घई साहब का म्यूजिक बड़ा कमाल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी हर फिल्म का म्यूजिक कमाल रहा है। तब जाके जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, अब ये जो गाना है नगमे हैं शिकवे हैं, इसमें आनंद बख्शी साहब बहुत याद आते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बख्शी साहब ने कहा कि सुभाष जी सुनाओ ये लड़के ने क्या बनाया। मैंने जब ट्यून सुनाई उनको
0: जी,
1: मैंने ऐसे सुनाया

0: अचानक वो रुक गए। बख्शी साहब कहते हैं, अन्नू मुखड़ा यहीं खत्म हो रहा है। मैंने कहा कुछ और आ सकता है। वाजी ने भी ये कहा। मैं और क्या लेके आया कि अचानक मैं समझ गया बख्शी साहब क्या चाहते हैं। वो लिखना और चाहते थे।
1: हाँ, उसके आगे
0: तो मैंने आगे ऐसे ऐसे गाया, और उसके बाद जो तर्ज उनको इतनी पसंद आई, लिखने के बाद गाना वो सुभाष जी की तरफ देखते हैं, आनंद बख्शी।
1: हाँ हाँ
0: बख्शी साहब बोलते हैं, सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह वाह, क्या स्टेटमेंट है ये।
0: ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कहना सुभाष जी को,
1: हाँ
0: अन्नू तेरा लक्ष्मी है,
1: वाह वाह,
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बख्शी साहब बड़े बड़े उस वक्त भी संगीतकारों के साथ काम कर रहे थे, जो लाजवाब काम कर रहे थे।
1: जी जी,
0: उन्होंने कहा ये बैठे बैठाए मेरे सामने अगर इस लड़के ने डा डा डा डाडी डा डा डा डा। अब ये आप सवाल बहुत से लोग पूछते भी हैं, बहुत से लोग पूछते भी नहीं है, ये कैसे होता है मैं बताता हूं। इतने संगीतकार है दुनिया में
1: जी।
0: और गुनीजन है, गुनीजन मैं क्यों बोलता हूं उनको, सीखे हुए लोग हैं।
1: हाँ जी,
0: मैं एक नेचुरल म्यूजिशियन, मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज अ नेचुरल म्यूजिशियन। नेचुरल म्यूजिशियन वो होता है जो चीजें आमद होती, सरस्वती मां की कृपा है।
1: जी जी,
0: मैं बाजे पर बैठा हूं और बाजा बजा रहा हूं और ये नोट्स साक्षात अंदर आते हैं।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने बहुत इंटरव्यू में कहा, अब आप पूछेंगे अनु जी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बात करते करते भी एक दिमाग में, एक सेक्शन ऑफ मेरे दिमाग में ट्यून चल रही है।
1: अच्छा,
0: एक लय चल रही है। तो मैं कभी फुल, मैं ये कहूंगा कि एक तो मेरे फादर
1: जी,
0: एक तो बड़े बड़े महान संगीतकार जिनको मैं बहुत, मैं सभी संगीतकार ने बहुत अच्छा काम किया हिंदुस्तानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैं दीवाना हूं शंकर जयकिशन का, आर डी बर्मन का इसलिए दीवाना हूं मैं, क्योंकि मैं

0: समझता हूँ कि शंकर जयकिशन आर डी बर्मन कंप्लीट लोग थे
1: जी जी.
0: उसके बाद फिर लक्ष्मीनाथ प्यारेलाल साहब, और उसके बाद आप गिनते जाइए, मदन मोहन जी के गाने सुन लीजिए,
1: वाह,
0: सलील दा के सुन लीजिए, सचिन देव बर्मन की सुनिए, नौशाद साहब की सुनिए, क्या काम किया लोगों ने. अभी भी मुझे लगता है मुझे और मेहनत करनी है और काम करना है. बल्कि आपको मैं न्यूज बताना चाहता हूं कि जब आपके 70th ईयर है ये
1: जी,
0: भारती का
1: जी,
0: जनवरी 11 को 2027 में मैं 50 साल काम, आई विल बी कंप्लीटिंग 50 ईयर्स.
1: वाह वाह वाह वाह वाह.
0: 14 साल की उम्र में शुरू हुआ था, फिल्म थी हंटर वाली 77.
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपको याद होगा.
1: बिल्कुल.
0: मैंने काम किया है लता जी के साथ, आशा जी के साथ,
1: रफी साहब के साथ,
0: किशोर दा के साथ और मोहम्मद रफी साहब के साथ, यहां तक मन्ना दा के साथ भी काम किया है, बस मुकेश जी के साथ नहीं किया. एक बेबाक लड़का 14 साल की उम्र में बाजा लेकर पहुंचता था सबके पास, बोलते मेरे पास तर्ज है, सुनोगे? मेरे पास तर्ज है. कुछ लोग हंसते भी थे, कुछ लोग मजाक भी बनाते थे, लेकिन मैं हारा नहीं. और आज भी मुझे लगता है कि मैं फिर से काम शुरू करने को तैयार हूं.
1: क्या बात है. रफी साहब से जुड़ी कोई याद?
0: बहुत सी यादें, खास करके इसी गाने की, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता. हुआ यूं कि मैंने उनको अप्रोच किया, हरमेश मल्होत्रा साहब ने कहा कि अन्नो रफी साहब से गवाते हैं.
1: हाँ,
0: मैं जाता हूं उनको मिलने के लिए. तो उनके ब्रदर इन लॉ जहीर भाई, उनको फोन किया, मैं रफी साहब से मिलना चाहता हूं. तो रफी साहब से उन्होंने बात की.
1: हाँ,
0: और कहा कि कौन है आप? मैं बोला बस, मैंने इतना कहा मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं. तो वो बहुत खुश हो गए कि मलिक का बेटा मुझसे मिलना चाहता है. किस सिलसिले में? मैंने एक फिल्म साइन की है, आपसे गाना गवाना चाहता हूं.
1: हाँ,
0: उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे मेरे घर पर आ जाना.
1: क्या बात है.
0: मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात. और सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली कि मुझे रफी साहब को मिलने जाना. तो मैं भूल गया वक्त, इतने बजे बुलाया था. मैं 6 बजे पहुंच गया.
1: अरे बाप रे, इतने सुबह?
0: 6:15 बजे मैं पहुंच गया और बाहर खड़ा हो गया उनके दरवाजे के. बंगला था उनका ये बैंड्रा में.
1: हाँ,
0: अभी वहां बिल्डिंग बन गई है
1: जी.
0: और रफी साहब, मुझे पता नहीं था कि रफी साहब भी जल्दी उठते थे. वो सुबह अपने गार्डन में बैठते थे
1: जी.
0: और झरोके से जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो दरबार रोक रहा था, तो उन्होंने देख लिया. तो देखकर हैरान हो गए. अरे भाई, मैंने आप बहुत सॉफ्टली बात करते थे.
1: हाँ,
0: कौन हो? मैं बोला अन्नू मलिक को, सरदार मलिक साहब का बेटा. अरे मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था. नाराज होने के बजाय उन्होंने मुझे इशारा किया अंदर आओ. मैं अंदर चला गया.
1: हाँ,
0: 6:30-7 बजे ही मैं जाके लॉन्ज में खड़ा हो गया. वो उठे, कुर्ता पहना हुआ था, लुंगी पहनी हुई थी. और अचानक मुझे रूम में बुला लिया. जैसा मैं रूम में गया, मैं क्या देखता हूं कि चारों तरफ अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं, एसी ऑन है, खूबसूरत समा और खुशबूदार रूम था. रफी साहब सामने बैठ गए, बोला गाना लेके आए हो? मैंने हाँ, सुनाइए. और मैंने बाजा खोला और अपना गाना सुना. तो सबसे पहले बोलते आ रहे, तुम बाया हाथ से बजाते हो?
1: हाँ.
0: हाँ, मैं लेफ्टी हूं. अच्छा अच्छा, सुनाओ सुनाओ. अब मैं गाना गा रहा हूं, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रंग लाती है शराब. उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो गाना लिखते जा रहे थे
1: जी.
0: मैंने एक चीज नोटिस की कि रफी साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे.
1: ओ,
0: चुप थे.
1: हाँ हाँ,
0: मैं गा रहा हूं दु दु दु दु दु दु. अचानक एक चीज मेरे दिमाग में, मैं बोला चलो अंतरा गाते हैं. अब जैसे मैंने अंतरा गाया, अभी कम सिन हो क्या जानो, तो मुझे कहते हैं वापस गाओ. मैंने कहा अभी कम सिन हो क्या जानो. तो वही रफी साहब से एक चीज सीखा मैं. बोला ये जो तुम गा रहे हो
1: जी,
0: थोड़ा गलत है.
1: ओ,
0: तो मैं बोला सर क्या गलत है? तुम गा रहे हो अभी कम सिन हो क्या जानो, इसको मिला दो. तुम एक शब्द को दो टुकड़े कर दो. अभी कम सिन हो क्या. और मैं उनके पांव पर गिर गया.
1: वाह वाह.
0: मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानता हूं, ऐसे महान लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला. फिर जब गाना रिकॉर्ड हुआ, वो दिन अच्छी तरह याद है. मैं जब कंडक्ट कर रहा था, मेरे म्यूजिक

0: प्रोड्यूसर वहां, मतलब जो अरेंजर थे वो वहां थे, तो एक पीस आया और मुझे नोटिस कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बोला फर्स्ट म्यूजिक ऐसा करते हैं, डंग डंग डंग डंग डंग डंग, मैं खुद ही गा रहा था तो मैं साजिद को समझा रहा था, डंग डंग डंग डंग डंग डंग, मुझे इंटरलूड बनाने का बड़ा शौक है। तारा तीरा तीरा भी कम से, तो बोला अरे क्या अंतरा उठा है, आके मुझसे गले मिले। और मुझे अच्छी तरह याद है जब गाना जब खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा,
1: क्या बात है,
0: और जो इस यहां उनका हाथ था लेफ्ट मेरे हाथ पर कंधे पर, और मुझे ऐसे पकड़ा,
1: वाह।
0: और उसी शाम को उन्होंने डैडी को फोन किया था, मलिक तेरे पास एक संगीत का नग है,
1: वाह।
0: एंड डैडी की आंखों में आंसू थे कि रफी साहब ने मेरी तारीफ की, ये मैं लम्हा कभी नहीं भूल सकता हूं। और वही रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई, इतने महान इंसान थे, अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था,
1: हाँ,
0: तो मुझे आगे कर दिया कि भाई इनसे कुछ रिक्वेस्ट करो। तो बोले मैंने गाना गा दिया, पैसा तो चाहिए मुझे। बोले रफी साहब वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, पैसा है नहीं। तो मुझे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं, अनु एक काम कर, पैसा तो मैं लेके ही जाऊंगा। अब मैं डर गया,
1: बिल्कुल,
0: मैं बांद्रा से आया हूं,
1: हाँ हाँ,
0: घर वापस जाना है। प्रोड्यूसर को बोलो मुझे 50 रुपए दे दे, पेट्रोल का पैसा तो दे दे। सिर्फ 50 रुपए लेकर उन्होंने वो गाना गाया था, मोहब्बत रंग लगी जनाब आहिस्ता, इसलिए लोग उनको फरिश्ता बोलते थे।
1: क्या बात है, अब

0: क्या कमाल, क्या कमाल जी, कहिए।
1: यही जो आप पीस सुना रहे हैं ना
0: जी,
1: टांग डा डा डा डा डा,
0: इसी की बात हो रही थी।
1: इसी की मैं बात कर रहा था कि जब मैं बना रहा था ना ये पीस,
0: हाँ,
1: उस वक्त रफी साहब फेमस स्टार जो
0: जी जी बिल्कुल
1: स्टूडियो में,
0: हाँ,
1: क्यूबिकल के सामने खड़े थे,
0: हाँ,
1: और मुझे सुन रहे थे बनाते हुए।
0: बताइए।
1: तो इतने खुश हो गए थे वो कि तुझे शौक है इंक्लूड बनाने का? मेरा जी बहुत शौक है
0: जी जी जी।
1: तो उसके बाद ही उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा।
0: बताइए।
1: और फिर डैडी को फोन किया था। मैं ऐसे इंसान को भूल नहीं सकता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे इंसान थे, इतने इनकरेजिंग थे मोहम्मद रफी साहब, इतना प्यार करते थे कि चंद शब्दों में उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा।
0: अब मैं एक और गायिका की तरफ आ रहा हूं, लेकिन यहां भी जो बात है ना वो गाने के सिरे को पकड़कर होगी, और वो गाना है ये।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: अनु जी, बातें रफी साहब से चल के और आशा भोसले तक आ गई। शुरुआती दौर था उमेश मेहरा की फिल्म, और ये जो म्यूजिक है ये पूनम से बिल्कुल अलग है। इसमें पूरा एक पंजाबी फ्लेवर है। सोनी महिवाल और क्या तो गाना, यहां सब लोग उस गाने की मस्ती में डूब गए।
2: तो आपने जो अभी बात कही कि ये बिल्कुल अलग है उस गाने से,
1: हाँ जी,
2: तो इसकी इंस्पिरेशन कि मैंने कसम खाई थी कि मैं वो संगीतकार बनना चाहता हूं जो हर किसी के गाने बनाए। हाँ। उसके पीछे थे आरडी बर्मन साहब
1: जी।
2: मैं जब छोटा था मैंने एक गाना सुना था, डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग, ये दम मारो दम, ये सुना था।
1: हाँ, हाँ।
2: उम्र थी 10 साल।
1: हाँ।
2: वही इंसान बनाता है चिंगारी कोई भड़के, अभी वही इंसान। इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट, मैं बोला कि मैं आगे चलकर ऐसा संगीतकार बनना चाहता हूं कि मैं सिचुएशन में अपने आप को ढाल लूंगा। अगर रोमांटिक गाना है तो मैं वो बनाऊंगा, अगर पंजाब पर बेस्ड है सोनी मेवाल लव स्टोरी पर मैं वैसे गाने बनाऊंगा, अगर जुड़वा है जिसमें मस्ती वाले गाने चाहिए जैसे कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है मैं वो करता हूं, तो आर डी बर्मन साहब ओ हसीना जुल्फों वाली भी कर देते, आर डी बर्मन साहब चिंगारी कोई भड़के भी बनाते थे, और मैंने अपने आप को कसम दी कि आई कैन कंपोज ऑन एनी सिचुएशन एनी टाइम एनी वेयर एज लॉन्ग एज माई डायरेक्टर इज विद मी।
1: और ये आपने किया है?
2: एक बार नहीं, हजारों बार, और अभी भी कर रहा हूं।
1: बिल्कुल, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं कि एक पूरा 80s का दौर था जहां बहुत अलग तरह का म्यूजिक बन रहा था, और कमाल की बात यह है कि उस पूरी धारा में भी आप 80s के

0: निर्देशक आप पर भरोसा करता है कि दिस मैन कैन डिलीवर, तो हजारों चीजें होती है। और मनमोहन देसाई साहब से जब मैं मिला भी था तो उन्होंने बहुत से मुखड़े सुने मुझसे, बहुत से मुखड़े, लेकिन मुझे मुखड़े लिखने की भी आदत है। मैं मुखड़े की जो फ्रंट पहली जो चार लाइनें होती है मैं लिख देता हूं। तो मैं बोला सर कैरेक्टर का नाम क्या है, बोला एक सोच रहा हूं मैं, पिक्चर का नाम सोच रहा हूं मर्द। तो मुझे टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगा मर्द, बोला वेरी गुड टाइटल। तो मैं बोला सर एक मुखड़ा दिमाग में आ रहा है, कैच करता है यार, वो टांगा चलाता है। तो बोलता हुआ मुखड़ा, ये मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। और वहीं से वो मेरे गले लग गए। और फिर मैंने कुछ 200 300 400 500 कितनी ट्यून सुनाई उनके दनादन। और एक दिन उनने कहा चल आज सिटिंग करते हैं, और बच्चन साहब के साथ सिटिंग हुई। बच्चन साहब ने रिएक्शन तो कुछ दिया नहीं, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, बस चुप के सुनते जा रहे थे। लेकिन आधे घंटे के गाने के बाद, डेढ़ घंटा गाया मैंने, बोला फिर अचानक मनमोहन जी ने बोला उनसे कैसा लगा, और बाहर आके मुझे बोलते हैं तू अपनी शर्ट तो नहीं फाड़ेगा, यू आर नाउ साइन फॉर मर्द।
1: क्या बात
0: है। आई वुड थैंक अमिताभ बच्चन साहब फॉर एक्सेप्टिंग मी अ न्यू बॉय। आई वुड थैंक मनमोहन देसाई साहब, अगर बच्चन साहब ने हाँ नहीं बोला होता, मनमोहन जी ने हाँ नहीं बोला था, अन्नू मलिक आपके सामने बैठे ये बातें नहीं कर रहा होता।
1: बहुत सही बात है।
0: उमेश मेहरा साहब ने मुझे सोनी मेवाल दी
1: जी,
0: राजीव मेहरा साहब ने मुझे एक जान एम दी
1: जी,
0: एफसी मेहरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, जैसे हरमेश बल्होत्रा, उससे पहले सलीम अख्तर साहब,
1: बिल्कुल
0: ये सब लोग बड़े।
1: एक चीज मुझे याद आ गई, मर्द में कुछ बड़े म्यूजिक बड़े लिरिसिस्ट थे जैसे राजेंद्र कृष्ण।
0: बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। वो थे ज्यादातर एक्चुअली वो तूफान में थे, अल्लाह रखा तूफान में।
1: हाँ,
0: लेकिन इसमें
1: प्रयागराज
0: प्रयागराज जी थे, किकला साहब थे, मिलजुल कर मैं जब ट्यून सुना रहा था सब अपने करते जा रहे थे कि अन्नू की ट्यून इतनी अच्छी है हम कैची वर्ड लिखेंगे। मनमोहन देसाई वॉज अ फैबुलस डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं आएगा।
1: मतलब कभी कोई खींचतान हुई किसी ट्यून को लेके किसी
0: बहुत बहुत बहुत, मैंने तो बैकग्राउंड भी किया था इस फिल्म का। खींचतान इसलिए हुई क्योंकि मेरे अंदर तो ये था ना कि मैं जिस बैनर पे काम कर रहा हूँ वह एमकेडी फिल्म्स है, और जिसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हमारे गुरु। और अगर अच्छा संगीत होता तो अलग बात होती, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो लाजवाब संगीत दिया था, लाजवाब। अमर अकबर एंथनी देख लो, नसीब देख लो, कूली देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो उनकी, मतलब सुपर ड्यूपर हिट गाने। अब मनमोहन देसाई साहब अन्नू मलिक को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत
1: हाई
0: हो गया था।
1: यस,
0: अब मैं गाने क्या बनाऊं, तो मैंने बड़ा अतरंगी उल्टे स्टाइल के गाने बनाए।
1: हाँ,
0: अगर आप मर्द के गाने सुनोगे, मैं बोला हटके बनाना पड़ेगा।
1: और वो
0: दिमाग में ये बात थी कि व्हेन यू आर जस्ट 22-23 इयर्स ओल्ड, सामने मनमोहन देसाई बैठा है, इट इज नॉट इजी। क्योंकि मनमोहन जी के कानों में कल्याण जी आनंद जी के सुर थे,
1: बिल्कुल
0: मनमोहन जी के कानों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर थे, मनमोहन जी के कानों में रफी साहब की आवाज थी। अनफॉर्चुनेटली रफी साहब चले गए थे उस वक्त
1: जी,
0: हमारे पास वो सिंगर नहीं था जो, और उन्हें रफी साहब की आवाज से ज्यादा किसी की आवाज पसंद नहीं थी
1: बाकायदा।
0: तो उस वक्त मैं मुखड़े सुनाता था जो मैंने अपने मुखड़े लिखे हुए थे, कैची मुखड़े, लाइक सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे, मैं तेरी टांगे वाली। मन मुझे उछल गए, बोला तू गाना नहीं बना रहा है सिर्फ, तू मेरे सीन लिख रहा है। दैट वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मनमोहन देसाई कि मेरा सीन है कि टांगा वाला कौन है, अमिताभ बच्चन इश्क करता है इस लड़की से, तो उसका आपने ये नहीं कहता कि तू मेरी जान है या मेरी जानम है, तूने कहा सुन रूबिया, लड़की का नाम रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, डायरेक्ट है, प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, या छोड़ दिया। मन मुझे सोचा आगे क्या आएगा, और सर ये लाइन डालता हूं, मैं तेरा टांगे तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला, मतलब टांगे वाले की शादी टांगे वाले से हो रही है, मैं टांगा चलाता हूं तो मुझे इश्क करती है, एंड वो उछल गए। या फिर वो गाना था कहने की तो बात नहीं है, फिर भी रहा न

0: विल यू मैरी मी,
1: उस जमाने में टू गेट अ न्यू इंग्लिश वर्ड अभी ट्रेंड हो गया है,
0: हाँ.
1: उस जमाने में बड़ी नई बात थी.
0: बिल्कुल,
1: वाइज विल यू, ऐसे सर क्या मुझसे शादी करो, मैंने नहीं सर ऐसा मत करेंगे. सर कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा ना चाहे, विल यू मैरी मी. और लड़की कहती है नो नो सॉरी जी. सो एवरी सॉन्ग बिकेम अ चार्ट बस्टर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेशनेस ऑफ इट्स न्यूनेस. और बच्चन साहब ने कैरीड इट टू अ डिफरेंट लेवल. अमृता जी थी उसके अंदर,
0: yes.
1: उसमें दारा सिंह साहब थे, उसमें क्या क्या गाने पिक्चराइज किए गए,
0: yes.
1: माहौल क्या था वो.
0: बिल्कुल बिल्कुल. अब जो है बातचीत को फिर से बदलते हैं और अब मैं एक ऐसे गाने के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूं जिस गाने में एक नशा है. इस गाने में एक तरंग है. फिल्म में अलग गायक की आवाज में आता है, रिकॉर्ड पर अलग, लेकिन इस फिल्म के तमाम गानों के बीच इस गाने ने अपना जादू बनाया है. अस्सी के दशक से नब्बे के दशक में आ गए विविध भारती लाइव, सत्तरवें वर्ष में प्रवेश और प्यार का इजहार.

0: भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनू मलिक के संग। अनुजी, बाजीगर फिल्म का ये गाना, मैंने बाकी तमाम गानों को छोड़कर इस गाने की बात की है, कोई तो बात होगी।
1: मैं समझता हूँ इसलिए बात होगी, मैं देखिए ये जो फिल्म का गाना आपने बजाया है
0: जी,
1: पंकज उदास जी की आवाज में बजाया है आपने, और इसको बाद में गाया था विनोद राठौड़ ने।
0: हाँ,
1: सो क्या हुआ, महान रतन जैन, मैं उनको महान रतन जैन बोलता हूँ, वीनस के जो मालिक हैं
0: जी जी जी,
1: और महान गणेश जैन, दो भाई, इनकी वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड्स
0: जी,
1: सात भाई, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक चले गए, हमारे प्यारे चंपक जी
0: जी जी,
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस वक्त जब मैं 80s में से निकलकर 90s की तरफ जा रहा था, 80s का दौर बदलता जा रहा था, आप समझ गए, नए नए संगीतकार फिर अपना अपने कदम जमा रहे थे
0: जी,
1: उस वक्त धीरे धीरे मेरा काम जाने लगा
0: जी,
1: एंड मेरी जिंदगी में इस गाने से पहले एक इंसान आए जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिनका नाम है महेश भट्ट साहब
0: जी जी जी।
1: उसके बाद ये पिक्चर आई, मैंने एक एल्बम किया रतन जैन साहब के लिए
0: जी जी,
1: उसमें ये गाना था
0: जी।
1: तो एक दिन रतन जी कहते हैं, यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं,
0: हाँ,
1: फिल्म का नाम है बाजीगर।
0: वाह,
1: इसमें एक नया लड़का है शाहरुख खान,
0: हाँ,
1: नई हीरोइन है काजोल, और डायरेक्टर भी वर्चुअली न्यू है, एक फिल्म इनकी हिट हो चुकी है, तुम आओगे? मैं बस सर डूबते हो गए, तिनके का सहारा वाली बात है, मेरे पास तो काम ही नहीं है, नई नई शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने कहा काम करते हैं। मैंने जब ये मुखड़ा सुनाया वो इतने खुश हुए,

0: फिर हमने यही गाना विनोद राठौड़ से गवाया था
1: जी।
0: जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तालियां बज रही थी।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि 90s की एंट्री
1: हाँ
0: का ब्यूगल बज चुका था, सिर्फ अनु मलिक का नहीं।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: जितने भी संगीतकार 90s में थे
1: जी,
0: वो अपना नया रंग लेके आ रहे थे।
1: जी जी जी,
0: और ऐसे एक था अनु मलिक।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इन्हें बहुत अच्छा काम किया। जितने भी अगर 90s का म्यूजिक सुनोगे तो लोग कहते हैं दैट्स द रेनेसांस ऑफ, जैसे 60s का म्यूजिक था।
1: हाँ,
0: नाइट म्यूजिक के बारे में बात करते हैं।
1: हाँ,
0: उसके बाद ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं है।
1: जी जी,
0: एवरी कंपोजर, एवरी लिरिसिस्ट, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर
1: जी,
0: एवरी म्यूजिशियन, एवरी सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियंस अपने उस जमाने के क्या थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था।
1: जी जी,
0: एंड उसका नतीजा है 90s का म्यूजिक। जब ये बाजे के गाने बने थे तो लोग दीवाने हो गए थे, बोलते कैसेट्स में फ्लाइंग लाइक हॉट केक्स।
1: हाँ,
0: मुझे लोग आके बोलते हैं कैसेट्स बिकते थे, हर दुकान के कैसेट बिक रहे थे। मतलब अगर बगल में चार कैसेट्स बेचने वाले बाजीगर के हो तो चारों दुकान से बिक रहे थे, ये देखिए एक दुकान में।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उसका नतीजा ये निकला कि आज टुडे जब ये गाने लोग सुनते हैं तो मुझे मैसेजेस लाके देते हैं, कहते हैं अनु जी ये गाने ऐसा लगता कल रिकॉर्ड किया आपने।
1: हाँ,
0: इतनी फ्रेशनेस कैसे है। आई वुड से उस वक्त ऐसा एक सर पे एक जुनून सवार था कि कुछ अच्छा करना है।
1: बासीगर में तो आपने वो रैप भी किया था,
0: वो काली काली आंखें में, उसकी भी स्टोरी है। अब गाना बजाए तो बताऊंगा।
1: अच्छा, गाना बजाना पड़ेगा। ठीक है, गाना बिल्कुल बजाएंगे, और बाजीगर का वो गाना भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैं ये चाहता हूं अनुजी के हम इसके बाद वो बात करेंगे बॉर्डर की, लेकिन बाजीगर का गाना अभी आ रहा है।

हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती के स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव देखा जा सकता है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं।

0: ये वो पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें विविध भारती पर अनु मलिक
1: मैं मिला दुनिया जले तो जले प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे धक धक दिल ये करे।
0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने वाले

0: ये सुनो जी, ये काली काली आंखें,
1: ये जो काली काली आंखें का गाना है, इसमें जो आज इतना ट्रेंडिंग हो गया रैप
0: जी,
1: उस वक्त ये सब नहीं था
0: जी।
1: हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुखड़ा बन चुका था, सेट पर सब थे, अचानक 16 बार का एक फर्स्ट म्यूजिक में टेम्पो बज रहा था, टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक। बहुत कुछ ट्राई किया, उसमें कुछ हो रहा नहीं था। मैं बोले ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है पूरा जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया, मैं चला गया सेट के ऊपर, मैं बोला यार एक काम करते हैं, माइक पर जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खाली जगह को मैं कवर करना है। अभी मुखड़ा खत्म हो चुका है, अंतरा आने वाला है, अंतरा आने से पहले की म्यूजिक पीस है, लेकिन ये 16 बार मैं करूं तो क्या करूं, बहुत सोच रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं ये वर्ड डालता हूं
0: जी,
1: मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, दुनिया चले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे राम पाम पाम पारा पाम पाम। अब पूरा ब्रास आता है वहां से।
0: हाँ।
1: तो पूरा मैंने टाइमिंग कवर किया उसके अंदर।
0: हाँ।
1: एंड वहां अब्बास मस्तान, रतन जैन ऑल जंप्ड अप, ये बहुत अलग चीज की तूने। और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत अलग चीज हो गया, मैं मिला। अच्छा तेरा अंदाज है ना तू मिली, तो वहां देव कोहली साहब भी थे लिरिक राइटर। मैं बोला देव जी पहला हाफ तो मैंने लिख लिया है, दूसरा हाफ को लिखे देते हैं, सेकंड अंतर में भी डालते हैं। मैं तो कर झटपट, मैं तो कर खटपट, मेरे आचा तो निकट। वो देव जी ने वही लिख दिया, वो भी कमाल के इंसान थे देव कोहली साहब,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: महान राइटर थे वो,
0: महान राइटर।
1: तो वो उन्होंने, मैंने बोला सर ये जो मैंने तैतू लिखा है फर्स्ट, मैं मिला तुम्हें, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बोला अनु जी गो हेड एंड रिकॉर्ड इट, बहुत अच्छा लग रहा है। देव जी की परमिशन मिली मुझे और मैंने कर दिया। बट जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा वो भी मैंने बोल दिया, ना तू कर खटपट, तू आजा तो निकट, तेरे प्यार झटपट, ना तो जुल्फ झटक, ना तो पैर पटक, ऐसे ये सब किया था मैंने। आज वो गाना लोग बोलते हैं वॉज अ ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग, वन फॉर इट्स साउंड,
0: बिल्कुल
1: द म्यूजिक प्रोडक्शन वॉज वेरी न्यू।
0: यस यस,
1: डेढ़ महीना लगा था उस गाने को बनाने के लिए, डेढ़ महीना टू गेट द म्यूजिक राइट, पाम पाम पारा पाम पाम पाम। तो करते करते बहुत टाइम लगा, आई वांटेड टू सेट अ ट्रेंड। और आज लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, एआई आ चुका है, लेकिन लगता है ये गाना कल रिकॉर्ड हुआ है। मैं 3 बार ये लफ्ज यूज कर चुका हूँ, बिकॉज आई बिलीव अ सॉन्ग शुड साउंड एज फ्रेश एज इट वॉज रिकॉर्डेड यस्टरडे इवन टुडे।
0: बाजीगर के टाइटल सॉन्ग में आपने वायलिंस बड़े प्यारे इस्तेमाल किए हैं, वो क्या था मामला?
1: कहानियां बहुत है उसके बारे में, लोग बोलते हैं अनु जी आप ये बताइए कि ये गाना बना कैसे। बाजीगर इज अ वेरी टफ वर्ड, बाजीगर। अगर इस पर आपको बोला जाए गाना बनाओ, हाउ डू मेक अ सॉन्ग?
0: जी जी।
1: तो मेरे दिमाग में एक दिन मैंने रतन जी को फोन किया, सर एक मुखड़ा है दिमाग में, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर। तो बोला सुना, तो मैंने ऐसे सुना है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, ऐसे सुना रहा हूं। बोला बहुत कैची मुखड़ा, त्रिडुन तत्तुरतरतरा। अप्रूव हो गया।
0: हाँ।
1: लेट्स रिकॉर्ड द सॉन्ग।
0: जी जी जी।
1: मेरा अब ये जो लाइन आती है ये सुनने वाले में, सेट पर हम पहुंचे, सिंगर्स आर ऑन द माइक।
0: हाँ हाँ,
1: ना तो सिंगर्स आर ऑन द माइक, अब्बास मस्तान खड़े हुए, पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा, 60 वायलिंस, वियोलास, चालोस, एवरीवन, रिदम फॉर्मेशंस, एवरीथिंग इज रेडी। अब सब बोल रहे कि अनु मलिक इज रिकॉर्डिंग फॉर अ न्यू हीरो, अ न्यू हीरोइन, सबके फैमिलीज आए हुए हैं
0: जी,
1: सब सुन रहे हैं, और मैं सेट पर हूं। अचानक जब गाना रिकॉर्ड किया, जो आपने पूछा कि वॉयलेंस आए कैसे,
0: हाँ
1: ये मैं बोला यार 1 2 3 4 गाना शुरू होता है, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर, तरन टन टन टडन, सीधा फर्स्ट म्यूजिक आ रहा था, टडम पम पम बम बम तरम पम तम ददम ददम दरा। मैं बोला कुछ कमी है यार गाने में, दम नहीं है। लोग हैरान हो गए, बोला सेट पर हो आप, गाना हमने अप्रूव कर लिया है। अब्बास मस्तान कह रहे हैं सर ये गाना उठ रहा नहीं है,
0: कुछ करना पड़ेगा।
1: मैंने बोला एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं।
0: हाँ,
1: वही सेट पर इंट्रोडक्शन बनाया।

0: तो मैं चाह रहा था ब्रास शुड बी कमिंग डाउन, तारा ये सुन रहा है, दा री रा रा रा, ये सब वॉल्यूम चल रहे हैं, अभी भी कुछ कमी है, मुखड़ा क्यों नहीं उठ रहा है। तो वहां मेरे एक सोलोइस्ट थे हमारे, उनको मैंने बोला यार एक काम करते हैं, हम लोग स्ट्रिंग्स लेके आएंगे, तारा या रोक देंगे,
1: ओ वाह भाई वाह,
0: और वहां ही मेरा मुखड़ा बजाओ, मेरा ही
1: ओके
0: मुखड़ा बजाओ, तारी री रा री रम ता। तो ऑलवेज लुकिंग एट मी, ये क्यों किया? फिर बोला इसके बाद ये मुखड़ा नहीं उठ रहा है।
1: हाँ
0: सडनली आई गॉट एन आइडिया, मैंने गाना यहां से शुरू करते हैं, वहीं लिखा गया ये,
1: अच्छा
0: मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला, तेरी याद में जागू रात भर, डारा डान डारा डान डारा डान डारा डाम, ब्रेक, बाजीगर ओ बाजीगर। तो गाने किस तरह बनते हैं, गाने का चेहरा बदल जाता है सेट के ऊपर,
1: क्या बात
0: एंड
1: है,
0: आई बिलीव इन इंस्टिंक्टिव क्रिएशन। उस वक्त अब्बास मस्तान रतन जैन मेरे पास आए, बोला तुमने चेहरा बदल दिया गाने का, मुखड़ा उड़ गया,
1: वाह वाह,
0: एंड बाजीगर वॉज बॉर्न विद दैट सोलो वॉयलिन पीस एंड द सिंगिंग एंड द राइटिंग। क्या मतलब उसका अंतरा भी क्या बना था, धक धक धड़कता है ये दिल, बोलो ना क्या कह रहा है, मेलोडी थी, तो सिंगर सैंग विद अ लॉट ऑफ लव, सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस, एंड द रिजल्ट कि आज भी गाना बजता है।
1: हाँ
0: और पिक्चराई भी शाहरुख पर और काजल पर इतना ब्यूटीफुल किया था सरोज जी ने कि लोग याद करते हैं उस पिक्चराइजेशन, और क्या शाहरुख लगा और काजल लगी उस गाने के अंदर, लाजवाब पिक्चराइजेशन।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू प्ले दिस इंट्रोडक्शन म्यूजिक, जिसके बनने की कहानी अभी आपने सुनाई है। विविध भारती पर फेसबुक लाइव भी है ये कार्यक्रम, और हां आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल हम अनु मलिक से पूछेंगे। यह है वो म्यूजिक जिसके बनने की कहानी अभी सुनाई अनु मलिक ने।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए

0: आज मध्य प्रदेश में गौपालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब बिर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सीमा पार कराधान, नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके और भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
1: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्री सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने एमटी काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। सभी को सुरक्षित

पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय दूतावास ने बचाव अभियान के दौरान निरंतर सहयोग और सहायता के लिए ओमान के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। और जापान में जारी एशियाई खेलों के क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने

0: recognize that economic resilience cannot be separated from social resilience, and that inclusion is the foundation of resilience in a rapidly changing world. Mr. Radhakrishnan made these remarks during the inaugural address at the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi today. The Vice President said, democracy and development can advance together with consensus, inclusion and responsive policy making, providing the foundation for sustainable growth. He stressed that true resilience lies in ensuring that no citizen, enterprise or region is left behind, and called for collective efforts towards building a Viksit Bharat by 2047.
1: Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there, we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: The government has successfully brought back the hardened narco-trafficking kingpin, Navpreet Singh, from Turkey. Sharing this achievement of the country's enforcement agencies, Mr. Shah said that Navpreet Singh used to smuggle heroin and methamphetamine to India from Afghanistan by obtaining Turkish citizenship under the fake identity of Nabab Virk. He added that the agencies tracked him down, ripping apart veil after veil to unmask his true identity and secured his deportation. Home Minister with multiple cases involving drug trafficking and other crimes. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India is building a network of free trade relationships that could eventually cover nearly 75% to 80% of the world's economies. Addressing an event organized by the U.S. Indian Community Foundation in Chicago, Mr. Goyal said India has significantly expanded its trade negotiations in recent years, with several more talks underway. He said the growing network would give companies operating from India access to a much larger international market. Mr. Goyal said that before 2014, India had free trade agreements with economies representing around $10 trillion in GDP. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completed 12 years today. The first episode of the program was broadcast on this day in 2014 on the occasion of Vijay Dashami. The 138th episode of Mann Ki Baat was broadcast recently. Over the past 12 years, Mann Ki Baat has provided a unique platform to highlight the positive transformation taking place across the country and to encourage citizens to participate actively in India's development journey. Through the monthly program, the Prime Minister shares inspiring stories of people from across the country who are making a difference in areas including education, healthcare, environmental conservation, innovation and social service. The UAE Attorney General Counselor Dr. Hamad Saif Al-Shamsi has said that investigations into the Fly Dubai flight FZ1073 incident found that the co-pilot attempted to carry out a terrorist attack. Emirates news agency quoted Al-Shamsi saying the co-pilot began executing his plan during the flight by attacking the captain inside the flight deck with a crash axe and attempting to take control of the aircraft. Investigations are continuing to establish the full circumstances and motives behind the incident as well as any links, while technical examinations and analysis of physical and digital evidence are also underway. Five internationals were rescued after a Kuwait-flagged tanker was struck by a projectile in the Strait of Hormuz. The Indian Embassy in Oman said in a post on social media today that it coordinated the rescue of the five Indians on board the MT Kazima 3, who were safely brought ashore. The mission thanked Omani authorities for their continued support and assistance during the rescue operation. In Asian Games cricket, India set a 212-run target against Pakistan in the gold medal clash at Nishin, Japan. In reply, Pakistan were 139 for 4 in 15.5 overs when reports last came in. In Asian Games, Indian archer Neeraj Chauhan upset compatriot Dheeraj Bumadevra 6-4 to bag the bronze medal in the men's individual recurve event in Nagoya, Japan today. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में खनिज सेस पर विवाद जारी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार के रुख को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। झामुमो सांसद महुआ माझी बोली, खनिजों पर पहला हक राज्य का। सरायकेला खरसावां में भीषण सड़क हादसा, कोलकाता से रांची आ रही यात्री बस पलटी, 20 से अधिक यात्री घायल। वियतनाम सड़क हादसे में जान गंवाने वाले झारखंड के दोनों युवकों के शव आज पहुंचेंगे कोलकाता, सड़क मार्ग से लाया जाएगा रांची और जमशेदपुर। राज्य में अगले दो दिन साफ रहेगा मौसम, 5 अक्टूबर से देवघर, दुमका और रांची सहित कई जिलों में फिर शुरू हो सकती है बारिश। और एशियन गेम्स में एक और स्वर्णिम सफलता, तीरंदाजी में भारत की कुमकुम मोहोद ने जीता स्वर्ण पदक, कुल 77 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में खनिजों पर अतिरिक्त सेस वसूलने के राज्य सरकार के फैसले पर पक्ष विपक्ष में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने केंद्र के नियमों को दरकिनार करने के इस कदम को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है।
3: देश बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है। जब देश में कानून बन गया, एनार्की नहीं है ना कि हम नहीं मानेंगे और लूट की छूट नहीं दे सकते, इलीगल माइनिंग करने नहीं देंगे, क्योंकि इलीगल माइनिंग करने से राज्य के राजस्व की हानि होती।
2: वहीं झामुमो सांसद महुआ माझी ने कहा कि खनिज संपदा पर पहला अधिकार राज्य की जनता का है।
4: केंद्र सरकार जिस तरह से तमाम नए नए नियमों को लागू कर रही है, उसे थोप रही है, तो राज्य सरकार के पास और चारा ही क्या है। हमारे झारखंड के मिनरल से पूरा देश समृद्ध हो रहा है, यहाँ के लोग यहाँ का पॉल्यूशन झेल रहे हैं, यहाँ जमीन उनकी ले ली जा रही है, सब कुछ ये झेल रहे हैं और फायदा दूसरों को ही हो रहा है।
2: राज्य की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर राज्य में सियासत तेज है। भाजपा ने राज्य सरकार पर इस योजना के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रमाकांत महतो का कहना है कि कई योग्य महिलाएं इस लाभ से अब भी वंचित हैं।
5: प्रमाणित करके छटनी कर रहे हैं, पहले जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज आपको लेने चाहिए थी पहले नहीं ले थी, अब आप केवल उसमें देख रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है कि नहीं है, ये देख करके कौन किस संप्रदाय का है, कौन किस जाति का है, ये भावना आपके बीच में, ये जो आपके पास आया है, ये चीज ठीक नहीं है और इसे देश में बदनामी हो रही है झारखंड राज्य की।
2: पलटवार में कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक कदम बताया है।
6: यह सम्मान योजना जिस दिन से शुरुआत हुई इस राज्य में, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी की साजिश लगी कि कैसे मैया सम्मान योजना को बंद करवाएं। लेकिन महागठबंधन की यह सरकार है साहब, हम किसी सूरत में मैया सम्मान योजना नहीं रोकेंगे, चाहे आप हमारा 1,36,000 करोड़ हड़प कर जाओ।
2: सरायकेला खरसावां के चौका थाना क्षेत्र में NH 33 पर आज तड़के एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। कोलकाता से रांची जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वियतनाम में सड़क हादसे के शिकार हुए रांची के योग शिक्षक राजा कुमार वर्मा और जमशेदपुर के विनय राय के पार्थिव शरीर आज झारखंड पहुंचेंगे। दोपहर में कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचने के बाद दोनों शवों को सड़क मार्ग से उनके पैतृक आवास लाया जाएगा। हजारीबाग के 3 प्रखंडों में कृषि विभाग और गोरियाकर्मा कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा ड्रोन से खेती का प्रायोगिक परीक्षण शुरू किया गया है। उपायुक्त हेमंत सती के निर्देशन में चल रहे इस प्रोजेक्ट के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं को जोड़कर रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज अपने सफल 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के दिन शुरू हुआ यह ऐतिहासिक कार्यक्रम अब तक अपनी 138 कड़ियों के जरिए देशवासियों से सीधा संवाद और जनभागीदारी का सशक्त माध्यम बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं द बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप यानी जनधन क्रांति की।
7: अंतोदय के विचार को सच करते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति को सशक्त बना रही हैं। बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहे करोड़ों लोगों के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना आर्थिक सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच बनकर उभरी है। इस योजना के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
8: जनधन योजना के तहत देश में 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले गए, जिनको कभी बैंक का दरवाजा देखने का सौभाग्य नहीं मिला था, ऐसे 55 करोड़ लोगों के खाते में ये काम कर रहा है।
7: राज्य में इस जनधन क्रांति का व्यापक असर दिख रहा है। अकेले बोकारो जिले में ही बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों के माध्यम से करीब 15 लाख से अधिक जरूरतमंदों के खाते खोले गए हैं। कोरोना संकट के मुश्किल दौर में जहां इन खातों ने सीधे नगद सहायता पहुंचाकर परिवारों को सहारा दिया, वहीं अब महिलाएं मुद्रा लोन लेकर स्वरोजगार से जुड़ रही हैं। बोकारो की रीता देवी और कौशल्या देवी इस आर्थिक बदलाव को लेकर अपने अनुभव कुछ इस तरह साझा करती हैं।
9: आगुडी के है कौशल्या देवी, हमको सरकार खाता दिया, हम नहीं जानते थे कि पैसा बैंक में आता था, इसीलिए हम सब सीख गए पैसा निकालने का रखने का, तो सुविधा हमको मिला, अब हम जानते बचत खाता में कितना पैसा बचता।
10: मेरा नाम रीता देवी है। जनधन खाता भारत सरकार द्वारा दिया गया है। हम लोग अभी जनधन खाता होने के बाद इसमें किसी पर आधारित रहना नहीं पड़ता है।
7: स्पष्ट है कि जनधन खातों के माध्यम से शुरू हुई यह वित्तीय डिजिटल क्रांति अब झारखंड के ग्रामीण और शहरी इलाकों में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है। सबका साथ सबका विकास की यह भावना वास्तव में जन सेवा से देश सेवा के संकल्प को सिद्ध कर रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए बोकारो से मनोज कुमार के साथ समाचार कक्ष से मैं कुंदन कुमार वर्मा।
2: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,43,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,43,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। राज्य में 5 अक्टूबर से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 5 अक्टूबर से देवघर और दुमका सहित कई जिलों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। हालांकि विभाग ने 8 अक्टूबर तक कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की है। एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला तीरंदाजी में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा। भारत 17 स्वर्ण सहित कुल 77 पदकों के साथ पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में खनिज सेस पर विवाद जारी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार के रुख को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। झामुमो सांसद महुआ माझी बोली, खनिजों पर पहला हक राज्य का। सरायकेला खरसावां में भीषण सड़क हादसा। कोलकाता से रांची आ रही यात्री बस पलटी, 20 से अधिक यात्री घायल। वियतनाम सड़क हादसे में जान गंवाने वाले झारखंड के दोनों युवकों के शव आज पहुंचेंगे कोलकाता। सड़क मार्ग से लाया जाएगा रांची और जमशेदपुर। राज्य में अगले 2 दिन साफ रहेगा मौसम। 5 अक्टूबर से देवघर, दुमका और रांची सहित कई जिलों में फिर शुरू हो सकती है बारिश। और एशियन गेम्स में एक और स्वर्णिम सफलता। तीरंदाजी में भारत की कुमकुम मोहोद ने जीता स्वर्ण पदक। कुल 77 पदकों के साथ पदक तालिका में भारत पांचवें स्थान पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
11: तनुजा चंद्रा की पहली फिल्म मेरे साथ थी
12: जी।
11: फराह खान की पहली फिल्म मैं हूं ना
12: जी,
11: इसे गाने बड़े लोकप्रिय हैं, मेरे साथ थी। राजकुमार हिरानी साहब की पहली फिल्म मेरे साथ थी।
12: मुन्ना भाई
11: MBBS
12: जी।
11: तो बहुत से डायरेक्टर्स हैव लॉन्च्ड द कैरियर्स विद मी एंड आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बहुत से सिंगल्स को हमने डिस्कवर किया है
12: जी,
11: और मैं अपने आप को इतना मतलब भाग्यशाली मानता हूं कि लोग कभी कभी कहते हैं यार तुमने इसको डिस्कवर किया, इसके साथ काम किया। मैं समझता हूं कि ऊपर वाले ने मुझ पर एहसान किया है कि मुझे अच्छे अच्छे लोग से मिला है। ये बहुत नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि मैं कितना भी अच्छा काम करूं अगर अच्छे लोग मेरे साथ नहीं आते। मैं बार बार कहता हूं संगीत संगत का काम है
12: जी जी जी।
11: हर आदमी को समझना चाहिए कि संगीत एक आदमी नहीं बनाता
12: जी,
11: उसके साथ बहुत से लोग होते हैं।
12: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
11: जो मिलकर जान लगाते हैं।
12: बिल्कुल।
11: और एक ही प्रॉब्लम होता है संगीतकार की, जो मैं फिर आपके विविध भारती पर कहना चाहता हूं कि सबसे अकेला भी एक ही आदमी होता है जब गाना बनता है, वो है संगीतकार। अब आप पूछेंगे अनु जी संगीतकार अकेला कैसे होता है, सुनने वालों को बताना चाहता हूं।
12: यस,
11: ये मैंने हर प्रोग्राम में बोला, अभी भी बोलूंगा कि जब निर्माता निर्देशक घर पर आते हैं और कहते हैं हमें आपको साइन करना है, फिर निर्देशक सिचुएशन बताता है, उस वक्त सबसे अकेला महसूस जो अकेला होता है वो आदमी, वो होता है संगीतकार। उसके उस वक्त पर ना लिरिक राइटर होता है, ना उस वक्त सिंगर होता है, ना उस पर साजिंदे होते हैं, कोई नहीं होता। सामने डायरेक्टर बैठा होता है और बोलता है मेरी सिचुएशन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं
12: जी,
11: फिल्म है मुन्ना भाई MBBS।
12: यस,
11: नाना कहते हैं हमें एक गाना चाहिए। मैं बोला गाना पिक्चराइज कहां किया जाएगा।
12: हाँ,
11: और उनका डायलॉग आता है गाना अस्पताल में पिक्चराइज किया जाएगा। आप मुझे सोचिए अगर आपको बोला जाए कि अस्पताल में गाना पिक्चराइज हुआ, हाउ वुड योर रिएक्शन? आप क्या गाना सोचेंगे? हॉस्पिटल रात को गाना है। अब क्योंकि गाना लोकप्रिय हो चुका है तो आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जब वो संगीतकार के सामने वो सिचुएशन दी जाती है, और मैं ही नहीं ऑल द कंपोजर्स इन द वर्ल्ड, द लोनलीएस्ट Man on the planet while making a song is the composer.
12: Yes, yes.
11: और वहां डायरेक्टर बैठे हुए राजकुमार हिरानी, और मैंने गाना मैंने तरह छेड़ी तो राजकुमार हिरानी जी ने डॉक्यूमेंट किया है ये।
12: हाँ,
11: बोला भी है कि अनु मलिक उठे और अपने हॉल में 15 मिनट चले आए। मैं दरवाजे देख रहा था अनु मलिक यहां चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक 15 मिनट बाद आए और बोलते हैं एक मैंने चीज सोची है।
12: अच्छा,
11: तो 15 मिनट में और मैंने ऐसे गाया मैंने एक ही बोल देख ले आंखों में आंखें। अब ये गाना बना कैसे?
12: हाँ,
11: उन्होंने एक लाइन बोली थी राजकुमार हिरानी साहब ने कि एक आदमी 12 बजे और 4 बजे के बीच में अपनी पूरी जिंदगी जीना चाहिए उसको।
12: जी जी जी जी,
11: क्योंकि 4 बजे वो गुजर जाएगा, he will die.
12: हाँ,
11: he's got a terminal disease.
12: Right, right.
11: मगर उसको वो हर खुशी मिलनी चाहिए between 12 and 4. तो मैंने ये भी सोचा कि ये अगर मैं सॉफ्टली शुरू करूं और भी पेशेंट्स हैं।
12: हाँ,
11: तो मैं लाउडली शुरू करूं, लाउडली बात होगा। तो मैंने ऐसे शुरू कर देख ले आंखों में आंखें डाल दी गले जीवन के बल है चार याद रख मरने से पहले जीना
12: सीख ले
11: तुरुरम। तो आज ये गाना लोग सुनते हैं तो पूछते हैं बना कैसे। तो उस वक्त जो संगीतकार अकेला होता है वो संगीतकार ही जाता है, और वो मेरी बात नहीं है, पंचमदा भी अकेले होंगे, शंकर जयकिशन भी अकेले होंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी अकेले होंगे, मेरे फादर भी अकेले होंगे। और इनको मैं इसलिए सलूट करता हूं और बार बार घूम के इसी बात पर आता हूं कि आप दुआ करो कि मैं इनके करीब थोड़ा भी आ सकूंगी। ये महान लोग हैं। आप आज भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं कि मैंने ऐसा कमाल का कुछ काम किया है जो इनके करीब आ सके।
12: मुन्ना भाई MBBS, ये वो गाना है जो विविध भारती पर अक्सर सुबह बजता है और लोगों से ये कहता है कि सुबह हो गई जाग जाओ, अनु मलिक का गाना सुन लो, जॉगिंग करो, चाय पियो।

0: शुरू हो गई मामू।
1: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग।

ये गाना फिल्म का नाम अशोका, गुलजार और अनु मलिक की जोड़ी

0: जी
1: बहुत ही प्यार करने वाले हैं
0: बिल्कुल,
1: और इतना कुछ कर चुके हैं, इतना उनसे मैंने चीज सीखी रहा हूं, नम्रता काम करना चाहिए जितने भी गाने, और मुझे बहुत प्यार करते वो, आज भी मेरा फोन उठा लेते हैं।
0: हाँ।
1: और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुलजार साहब डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं।
0: कितना बड़ा चैलेंज था कि उनके अल्फाज आपके पास आ रहे हैं और ट्यून बनाना है,
1: क्योंकि मेरे दिमाग में तो अचानक मदन मोहन जी याद आ गए,
0: बाबा
1: पंचमदा याद आ गए, और मैंने बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला इंसान सामने बैठा हुआ है, खुद एक कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन पे उनके आंधी फिल्म की आप फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो, तब मुझे पता लगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूं मुझे जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं बार बार कहता हूं उनके बोलों में इतनी ताकत और शिद्दत है,
0: हाँ।
1: कि बोलों में तरस छुपी हुई होती है।
0: क्या
1: उन्होंने
0: है?
1: लिखा कि तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं, तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं। अचानक मेरी ट्यून को सुनते सुनते तू हवा है फिजा है जमीन की नहीं, तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ, टूर रूरा
0: बाबा।
1: और गाने बनते गए, रिकॉर्ड होते गए, और आज भी अक्स फिलहाल फिजा जाने मन अशोका जब बजते हैं गाने तो लोग उनको अपने सीने से लगाते हैं। ये जो गाना भी आपने बजाया चित्रा जी याद आ गई, क्या गाया,
0: बिल्कुल
1: रात का नशा अभी आंख से गया नहीं, तू जो हमने फ्लूट्स यूज किए इसके अंदर,
0: हाँ।
1: तो माय गॉड आज भी, और क्या गाया, क्या क्या जान लगाई
0: अनु
1: चित्रा जी
0: जी,
1: ने।
0: अब जो मैं बजाने वाला हूं ना, जितने लोग यहां मौजूद हैं और जितने लोग कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, ये सारे लोग झूम उठेंगे,
1: डडांग
0: डडांग, इसके बाद आएगा
1: माय गॉड,
0: डडांग इसके बाद आएगा।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: अनु जी, एकदम अलग दौर के गानों की बात मैं करने
2: जी सर,
1: ये जो कमाल है ये क्या था? एक तरफ अगर तुम मिल जाओ, दूसरी तरफ भीगे होंठ तेरे।
2: वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है
1: जी,
2: वक्त के साथ इंसान को तर्जे बनानी पड़ती है। नए निर्माता आते हैं, नए निर्देशक आते हैं, अपने अपनी अपने अपने इमोशंस लेके आते हैं।
1: हाँ।
2: नए हीरोज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं।
1: हाँ।
2: वो अपने एक अंदाज लेके आती हैं। जनरल पब्लिक जो है एक चेंज मांगती है। हमारे अंदर एक कहावत है ना, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है
1: जी।
2: और अगर आप अपने आप को उन्हीं यादों में रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।

0: बिल्कुल
1: आपको हर वक्त बदलना पड़ता है, हर वक्त नई चीज करनी पड़ती है, हर वक्त ऐसे गाने पब्लिक के लिए बनाने पड़ते हैं जो उनको, देखो हर हिंदुस्तानी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है, बड़ा मेलोडिक होता है, वो गाना गा सके या ना गा सके लेकिन वो गाना समझता बहुत है,
0: बिल्कुल
1: वो गुनगुना लेता है उसके अंदर। अगर आप ऐसा गाना बना दो जो उनके दिल की बात है तो वो गाने को सीने से लगा लेंगे।
0: एक चीज जो मैंने देखी है कि आपकी पूरी संगीत की यात्रा में जहां मौका मिलता है वहां मेलेडी का दामन पकड़
1: वही वही बिल्कुल गुनगुनाने लायक वाले गाने नहीं होंगे तो गाना में दम ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा फिर बार बार कहूंगा, हर हिंदुस्तानी के अंदर संगीत कूट कूट के भरा हुआ है।
0: yes.
1: किसी भी प्रांत में चले जाओ, महाराष्ट्र में देख लो, गुजरात में देखो, लोकगीत जो है
0: बिल्कुल
1: गुजरात में भी क्या टैलेंट है।
0: yes.
1: आप चले जाइए साउथ में, आप चले जाइए पंजाब में, आप चले जाइए राजस्थान में, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूं कि लाजवाब सिंगर, लाजवाब कंपोजर्स, लाजवाब म्यूजिशियंस, लाजवाब टैलेंट है हमारे देश में। हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश है जहां इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है, गली गली में है। उनमें से मुझे चुनकर सरस्वती माँ ने अगर अन्नू मलिक बनाया है तो मैं उनका जितना शुक्र करूंगा कम है।
0: बिल्कुल
1: मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं।
0: यस।
1: कान में 2 साल की उम्र से अगर आप सुरी सुर सुन रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
0: लेकिन अन्नू जी एक गाना ऐसा जो 7 समंदर पार तक भी गया था, जरा वो गाना बजा देते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी इंतजार कर रही हैं।

0: यस अनुजी, चाइना गेट बहुत ही अलग तरह की
1: फिल्म। ये गाना एक ही गाना था, चाइना गेट में एक ही गाना चाहिए था। इट वॉज अ मेल ओरिएंटेड फिल्म।
0: हाँ,
1: और बड़ा चैलेंज था। राजकुमार संतोषी साहब ने कहा कि यार कोई ऐसा गाना बना दो।
0: हाँ,
1: उनके फाइनेंशियल भरत भाई भी आए थे।
0: जी जी।
1: कि बड़ा एक लोकप्रिय गाना बन जाए।
0: जी।
1: तो मैंने ये सोचा कि छम छम ये बना भी कैसे, मतलब छम छम छम छम सब बोलते हैं।
0: हाँ,
1: चूड़िया खनकी खनकाने वाले आ गए, छम छम बाजे रे पाए लिए। लेकिन मैं बोला राजी, मेरे दिमाग में मुखड़ा आ रहा है।
0: हाँ हाँ
1: छम को छम्मा कर, छम्मा छम्मा।
0: लेकिन
1: जब ट्यून बनी ना, जो ट्यून सुन के वो गदगद हो गए।
0: हाँ।
1: द, द, द, द, द, और समीर जी ने फिर उस गाने को जो लिखा है,
0: जी जी
1: समीर अंजान साहब,
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। तो गाना फिर जब बन गया और रिकॉर्ड हुआ, फिर जो पिक्चराइज हुआ, तो मेरा गाना ये, मैंने आपको पता है बड़ा शौक है, आपने समंदर पार बोला, मैडम एक्चुअली बड़ा इसमें मेरा ये अजीब बिटर स्वीट मेमोरी है।
0: बिटर स्वीट,
1: हाँ, स्वीट मेमोरी ये कि गाना इतना लोकप्रिय हुआ।
0: बाद में हॉलीवुड की फिल्म में गया।
1: हॉलीवुड में जब गया, वहां जब मैं एलए में था, सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं एक थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा गाना बज रहा है, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी बाजे रे, निकोल किडमैन पर। वहां सबका सिंगर का नाम दिया, लिरिक राइटर का नाम दिया, मेरा ही नाम नहीं है।
0: अरे अरे अरे,
1: और मुझे बड़ा रंज हुआ ये, क्योंकि जब हमने इतना मेहनत की मुखड़े पर, अंतरे पर, ट्यून पर,
0: हाँ।
1: कोई बात नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तानियों का प्यार मिल गया, वही काफी हमारे लिए।
0: बिल्कुल,
1: मैं बाहर नहीं देखता हूँ, हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि यह एक हर एक हिंदुस्तानी आपको सीने से लगा लेता है, उससे बड़ा उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
0: यस। और अनुजी, अब एक ऐसी फिल्म जिसमें इतनी स्वीटनेस थी इन गानों में, और एक नई गायिका को लेकर आया।

0: अनु जी, जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीवनी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, और
1: ये फिल्म थी करीब
0: जी, हाँ सॉरी करीब,
1: हाँ ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे याद आते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशनिंग हुई और संजीवनी जी से मिलाया इन्होंने। मुझे इनकी आवाज बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने ये आज इतने चलते हैं गाने अभी भी, कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं, और अकेले हम अकेले तुम में
1: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के। उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसके गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर ने जो काम निकाला, नासिर साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान है, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया है उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन अकेले हम अकेले तुम में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए होए क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न अनु जी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तबले आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए ये नया था। बताइए अनु जी,
1: ये आपने कमाल कमाल के इस्तेमाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी हैं आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अन्नू इस फिल्म में
0: हाँ
1: कवाली करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कवाली बनाना इतना आसान नहीं है, और कवाल को मैं जितने भी कवाल्स हैं हिंदुस्तान में उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उस समय नहीं, मुझे कवाली चाहिए
0: जी।
1: तो मैं बोला अगर कवाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे।
0: हाँ।
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी,
1: बोला व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट डू यू मीन कवाली योर स्टाइल।
0: हाँ।
1: अरे सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्सअप।
0: अरे बाप रे
1: विकेड, मैंने ऐसे ही बोला। जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए वो। बोला मैं यहां से जा रहा हूँ, ये कवाली नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो फराह खान पकड़ के ले गए। तो मैंने एक पीस सुनाया उनको। इतना सुनाया तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना। मैंने सर नहीं सर, फरा बोलती इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टकाटो है ये।
0: हाँ।
1: लगाड़ो भी नहीं, लगाड़ो दारी रा रा रारी रा, ऐसा नहीं है तारी नांदी तारी नांदी तारी नांदी दान। तो इतनी छोटी जगहों पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बेहारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: एंड वहां पर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूसडे दा दा दा दा दा दा दा दा दा। तो उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ, सामने लिखा उन्होंने। अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था
0: जी।
1: नई डायरेक्टर बजट का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुश्किल होगा कव्वाल्स को लेके आना। तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं बहुत गुनी है। तो मैं बोला ये जगह है देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने। वो आए, उन्होंने बहुत मेहनत की और आकर उन्होंने ये गाना गाया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि रिदम क्या होगी।
0: हाँ ये रिदम बिल्कुल
1: तो रिदम कैसे होगी। तो मैं बोला कव्वाली के अंदर एक ढोलक तब ले ना टिपिकल ता ता ता ता ता ये होता है।
0: हाँ।
1: ये ठीक होगा। आई वांट टू चेंज दिस ठीक, आई वांट टू चेंज इट। तो मैंने बोला भाई साहब मेरे बोला भाई साहब तबले बुलाते हैं। तबले मतलब 20 तबले। हाँ मगर सिर्फ उनकी चाटिया बजाएंगे, बाया नहीं बजाएंगे।
0: ओके
1: मैं तो बेस कटार तनांग चिक दुम तम कचिक दिंग तनांग चिक दिंग तम कचिक दिंग तनांग चिक दिंग। अब ये साउंड जब बजा है रिकॉर्ड हुआ है तो तारा नंदा धारा नंदा धारा नंदा धारा नंदा धाम बाम बाम बाम बाम बाम बाम रर तनांग कचिक दिंग तम कचिक दिंग तना। और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अनु जी आपने ये बात जो मुझे बोली है
0: हाँ।
1: इस पर मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं लगता हूँ इसके पर
0: जी।
1: और मेरे भाई साहब लगे उस पर
0: जी,
1: और हम बैठे हैं रात से सुबह हो गई
0: जी।
1: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसके जो साउंड है ना, उसके जो चाटी का साउंड उसको ट्यून के

0: मिलाना था।
1: कौन से?
0: हाँ कौन सा जो मुखड़ा है?
1: बिल्कुल
0: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल गया। अब ये इसी सुर में तुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दारी रारी रा रा राम ये तनांग चिक दिंग कचिक दिंग तनांग। तो बेस गिटार लेके साउंड डाल के स्ट्रिंग्स डाल के अचानक फिर जो गाना बना वहां साबरी ब्रदर्स बा सोनू जी वो सब मिलकर जो फिर वो जो फरा नाची है
1: क्या बात है।
0: हाँ उसने बोला ये क्या गाना मिल गया और गाना उसके बाद तो कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया था।
1: वाह
0: तो बहुत मेहनत की मैंने इस गाने पर। आई टेल यू समथिंग उसके अंतरे बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा पिक्चराइज मेरे चुनाव पर हुआ था और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग।
1: बिल्कुल बिल्कुल इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात।

0: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे।
1: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। और अब इस गाने की बात, जिसके बिना ये गाना अधूरा, ये कार्यक्रम अधूरा। ये गाना ये दिखाता है कि अन्नू मलिक खुद को रीडिस्कवर करते रहते हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर, 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होता है, 2000 के दशक में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे, यानी नई सदी में भी अन्नू मलिक का जादू कायम।

0: अनु जी, ये गाना तो मैजिक है। नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है YRF को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जिनका मुझे बुलावा आया, वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बोला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारिया साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर ने जो काम किया है इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाएं तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये, मैं समझा, पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस क्यों चल रहा था, और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ
0: हाँ
1: तरह सोच रहा था। 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तब दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर शरद जी बोले अगर हम कोई नया राइटर लाएं इसके अंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मैंने बोला भाई गुलजार साहब होंगे
0: जी,
1: बोले नया राइटर जरूर ले आइए प्लीज, आई एम गेम टू वर्क विद एनीबॉडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए
0: जी,
1: ये मोह मोह के धागे,
0: बाद में तेरा चाव लगा के

0: जैसे घाव लगा,
1: वो
0: भी आपने,
1: वो भी उन्होंने लिखा था
0: जी।
1: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोमो के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
0: वाह वाह वाह।
1: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे रिहर्सल करें। और इसका तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है
0: जी जी।
1: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर। गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
0: बिल्कुल
1: इस फिल्म को, इस गाने को, द बेस्ट लिरिक्स एंड द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अन्नू मलिक को भूल गए, मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट फिल्म भी मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार।
0: यस यस यस।
1: एंड 2016-17 की बात है ये।
0: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूं।
1: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करारा।

ये गाना भी अनु मलिक का। विविध भारती के स्टूडियो में ढोल बजने लगा।

0: अनुजी, अब बहुत कम वक्त बचा है। विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। इतने सारे लोग और सभी आपके दीवाने, बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अनु मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूं, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहां मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से कहता हूं कि भगवान, अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है।
0: अनुजी,
1: मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूँ, जितने भी मुझे यहाँ लोग मिले हैं
0: जी,
1: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया
0: जी।
1: आपका यूनुस भाई, जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा और जरूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 इयर्स इज नो मीन अचीवमेंट।
0: यस,
1: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अनु मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहा है इंडस्ट्री में,
0: तब भी बैठेंगे और तब लंबी बातें करेंगे।
1: 14 साल की उम्र से शुरू हुआ वह आदमी अपने बाजे को लेकर चला था मैं, और एक ही शब्द बोलता हूं जो आज भी बोलता हूं, मैं गलियों का राजा, मैं गलियों का राजा
0: जी,
1: मैं
0: गलियों का राजा,
1: गलियों का राजा, मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत ये मेरा दिल है और ये मेरा बाजा।

0: क्या बात है, क्या बात है। एक आवाज पर मेरी आप विविध भारती के स्टूडियो में आ जाते हैं और आप इस सम्मान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात कभी भी आपको विविध भारती बुलाओ, बस एक बार कहना होता है। अनु जी, आपका
1: नाम क्या है इसका? विविध भारती
0: जी।
1: भारत जहां होगा, जहां भारत शब्द कहलाया जाएगा, वहां अनु मलिक जाके अपना माथा टेकेगा।
0: वाह, शुक्रिया। बिल्कुल समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत लेते हैं, आप आए, बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

0: Uttar Pradesh moves parts of Gujarat and Madhya Pradesh. In Asian Games, India won the gold in men's cricket, defeating arch rivals Pakistan in the T20 cricket final at Nishin, Japan today. India won the final by 19 runs, chasing India's target of 212 runs. Pakistan managed to score only 196 for 6 in their stipulated 20 overs. Earlier, India posted 211 for 6 after opting to bat first. Opener Abhishek Sharma scored 61 of 28 balls, while Tilak Varma remained unbeaten on 51 of 22 balls. Shivam Dubey added 27 of 14 balls to take India past the 200-run mark. With this, India has secured its 81st Asian Games medal, including 19th gold to the tally. India has also won 26 silver medals and 36 bronze medals already. In men's cricket, India were 3 for 1 in 2.3 overs against West Indies in the third and final ODI in Mulanpur, New Chandigarh, when reports last came in. In men's hockey, defending champions India will take on Malaysia, with the two teams meeting at the Gifu Prefectural Green Stadium with eyes on the gold and an LA 2028 Olympics quota. The match will start at 3:30 p.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government developing entire ecosystem based on cattle farming, giving push to rural economy, says Union Cooperation Minister Amit Shah. Commerce Minister Piyush Goyal says India's free trade agreements to cover 75% of world economies. Prime Minister Narendra Modi's monthly radio program Mann Ki Baat completes 12 years today. 5 Indian nationals rescued safely after Kuwait flagged tanker struck by projectile in Strait of Hormuz. And on the final day of Asian Games, Indian men's cricket team bags gold with 19-run win over Pakistan in finals. In men's hockey finals, India to take on Malaysia in a short while. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।

0: के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75-80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
3: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे और वो सब छोटे छोटे देश थे अधिकतर, और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया, 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो
1: जाए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News हिंदी और पब्लिक पर एट AIR News अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है, इस बात की जानकारी देंगे।
5: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के

0: तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
1: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं है पूछा था, हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में सी में जाके ऐसा कागज डॉक्यूमेंट बताया ऐसा है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जोरन हॉस्पिटल से ही हुआ था।
2: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
3: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
2: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
4: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल SP सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: अपडेट रहे, आगे रहें expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। हुरमूज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT Kazima-3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी

0: कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
1: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टी20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में शुरू होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: मेहमान वो हैं जाने माने लेखक निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया जी। तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं हम। नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।
0: तिग्मांशु धूलिया एक लेखक निर्देशक और अभिनेता जिनकी कलम में यथार्थ की कहानियां हैं।
2: 28 बरियर सात पानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन मरे, कौन ने पूछा? जब 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देगी ये किडनैपिंग कर लाई तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा।
0: जिनके कैमरे में जिंदगी की सच्चाई है, अभिनय में किरदार की धड़कन, गैंग्स ऑफ वासीपुर, शाहिद, मांझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सारी फिल्में।
3: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाए।
0: हासिल से हासिल हुआ कामयाबी का सफर।

0: मान सिंह तोमर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण कमल दिलाया। फिर तो साहब बीबी और गैंगस्टर, शागिर्द, बुलेट राजा, राग देश, मिलन टॉकीज जैसी बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन और लेखन से आईं। तो आइए एक बार फिर स्वागत करें तिग्मांशु धूलिया का। तिग्मांशु जी, विविध भारती का ये 70वां स्थापना दिवस है और रेडियो से आपको बड़ा प्यार है, तो बताइए आज इस जश्न के मौके पर हमारे देश भर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो मुझको अपनी इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार 2-3 बार पहले भी आ चुका हूँ।
0: जी जी,
1: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण है।
0: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
1: हाँ, तो रेडियो का ये कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर जिसको हम अपने सोते वक्त तकिए बगल में लगा के सो जाते थे, और हवा महल और फिर बहुत सारे वो बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो टायर
0: छाया गीत
1: और तमाम। और तो उस एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
0: जी।
1: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो है, जो इतिहास से पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
0: जी।
1: और बहुत बहुत इट इज स्टिल अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया है रेडियो ने।
0: जी बिल्कुल। तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बन पा?
1: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे तो हम इलाहाबाद में पढ़ा, बढ़ाऊ में तो हमारा एक बैंड भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
0: बाल संग, नन्ही दुनिया वगैरह,
1: उसमें उस पे छोटे छोटे हम लोग जाते थे वहीं पे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया कौन भैया होते
0: बड़े भैया जी,
1: बड़े भैया जी और दीदी होती थी
0: जी जी,
1: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहां से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
0: जी,
1: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मैंने एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में जो होती थी उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
0: जी रेडियो ही मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो ही मिला।
0: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे हैं। आपने इलाहाबाद का जिक्र किया तो इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं, हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई खास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहेंगे विविध भारती के श्रोताओं से?
1: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ,
0: और
1: क्या बात है? वो शहर जो है, मैं एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो भी हूँ, और भी सभी लोग को अपना

0: शहर पसंद आता है मैं यहाँ, लेकिन इलाहाबाद बहुत खास है। तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से हूँ, तो समझ जाते हैं वो लोग बैकफुट में होना चाहिए उनको।
1: जी बिल्कुल, इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे से।
0: मैं तो अभी परसों ही लौटा इलाहाबाद से डुबकी लगा के।
1: अच्छा, तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं? और
0: पितृपक्ष शुरू हो गए थे इसलिए गया था।
1: जी जी, इलाहाबाद की एक बड़ी मशहूर शूटिंग है, बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसने आपको बहुत कुछ हासिल कराया, और आप फिर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो आपकी ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए बताइए कि फिल्म हासिल जो आपकी कामयाब पहली फिल्म थी, उसके पहले तो आपने शुरुआत कर दी थी।
0: नहीं, हासिल मेरी पहली फीचर फिल्म हासिल ही थी।
1: हासिल ही थी, अच्छा, तो हासिल से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई। हमने सुना है कि फिल्म हासिल ने आपको कामयाबी दी और साथ में उसने आपको रुलाया भी था, वो रोने वाली कौन सी घटना है, जरा वो घटना बताइए हमें।
0: अब जैसा मैंने कहा, इलाहाबाद टेस्ट करता है वो शहर, वो मुश्किल शहर है। अगर आप वहाँ पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहें या पौधा बोना चाहें, तो उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारी औकात है करने की।
1: जी,
0: तो
1: क्या बात है।
0: उसने, उस शहर ने मुझे टेस्ट किया। तो मैं, तो पहली फिल्म थी, तो मैं बहुत एक जवान, बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरह अपना शहर जा रहा हूँ, शूटिंग करूंगा अपनी पहली फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंभ मेले में ऑलरेडी सेट कर दिया था, जिसको मैं पहले शूट कर चुका था, 2000 वाला जो कुंभ मेला था। तो बट वहाँ के लोग जो थे, उनको लगा कि मैं शहर को, वहाँ की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा। तो मैं उनसे कहता रहा, भाई रामायण में रावण भी है, राम भी है। मैंने रावण के सीन पहले शूट कर लिए, तो उन्होंने वो देखा तो उनको लगा कि ये तो ऐसी फिल्म है। अब तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहाँ, बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं पहली फिल्म थी तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तब जानते भी नहीं थे, अब कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा है, तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग, मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहां शूटिंग की। मेरा एक भी दिन काम नहीं रोका, क्यों, मुझे था कि काम रुकेगा, प्रोड्यूसर रुकेगा, अपने शहर लेके गए उसका नुकसान होगा। तो मैंने कहा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, तो मैं भी, अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे तो उनको नहीं पता मैं भी
1: एक
0: इलाहाबादी से ही लड़ रहा है। और वो हार गए सब, मेरी फिल्म रिलीज भी बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही
1: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब ये?
0: हाँ, वो रोया तो
1: रोने वाले।
0: हाँ, मुझे वहां पे डीएम को दफ्तर में बुला लिया
1: जी,
0: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे, वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, आपको यही रहना है।
1: जी जी,
0: और ये लोग यात्री होटल में हैं, तोड़ देंगे उसका शीशा, उनकी गाड़ियां, उस लड़के को उसका सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे।
1: ओ बाप रे।
0: तो मुझे तो आंसू आ गए मेरे। मैं अकेला, और ये कम से कम 25-30 लोग डीएम ऑफिस में, मैं इसको डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं। तो फिर मैं रो दिया, फिर लेके मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक फिर बात हुई, मुझे फोन करने पड़ा। तो
1: मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी के मोती आपके जीवन में दिए,
0: और तो ऐसे ही है।
1: बहुत सारे मोतियां। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए?
0: जी बिल्कुल,
1: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये?
0: जी जी,
1: सुनते हैं।

0: तो ये हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाजें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेते हैं पहले
0: जी। हमारी एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो खास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है, आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी,
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं
0: जी,
1: कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बनाता था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था, उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, बाकी एक्टर के साथ मैं ये नहीं, ये फैसिलिटी नहीं है मेरी। तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही हैं
0: जी,
1: वो थोड़ी ज्यादा लोगों के
0: संवेदनशील भी रही,
1: बिल्कुल बिल्कुल वो बात लोगों तक पहुंची है
0: जी। और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं, उनकी फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सब के दिल के करीब हैं वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं, सामने बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था वो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
0: जी।
1: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ
0: जी,
1: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और फिर पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल, मतलब कि मेरी मैं इरफान, हमारे और भी 2-3-4 दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेन काला, ये सब जो थे तब बहुत मिला करते थे हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब
0: जी जी,
1: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी,
0: अच्छा
1: स्वीट, और इरफानी उनको गाड़ियों में बैठा के घुमाना या उनको जैसे चाट वाट खाने का बहुत मन करता है ना, तो वो सब इरफानी करता था
0: जी जी,
1: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4 महीने 3 महीने के गैप में, तो इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा
0: जी। बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया, तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी।
1: हाँ, वो मेरा कजन ब्रदर है।
0: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी।
1: हाँ।
0: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
1: वो बहुत अच्छा एक्टर है, वो थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की जरूरत मुझे खास पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत जो उसकी है कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो
0: जी जी। एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह
1: जी जी,
0: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहां पहुंचे? मतलब एक्टिंग, आगे एक्टिंग ही तो नहीं करना चाहते हैं?
1: नहीं,
0: मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट बतौर डायरेक्टर फिल्में देते रहें।
1: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों वो अपना अनुराग और कश्यप और जो कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश छावड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना है, मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर पे था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसू नहीं किया। मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कम्प्लीटली अलग
0: जी जी
1: स्ट्रीम। उन्होंने बोला, मैंने हाँ कर दी, मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था, मैंने कहा एक्टिंग में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कॉन्फिडेंस। वो बहुत तरह एक चीज नहीं होती, बहुत चीजों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है, थोड़ा आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था। उस यूनिट पर जब गया तो सब दोस्त थे, मनोज वाजपेयी हो, ये वो नवाज होगा, तब सब दोस्त हैं
0: जी।
1: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं, तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गिरी कि अरे मैं, अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा था तो शायद मैं घबराता थोड़ा।
0: तो
1: इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
0: जी
1: तो हो गया।
0: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे?
1: नहीं,
0: क्या हुआ था फिर उसके बाद?
1: वो विपिन को जब मारता हूँ, कहाँ गाड़े थे उस तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से, मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है, तो मैंने विपिन को बोला अभी, मैंने कहा विपिन यार सिर्फ जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दो क्या? कहे नहीं नहीं मारना मारना।
0: ओहो,
1: मैंने कहा यार लग जाएगी, मेरा थोड़ा भारी हाथ है। कहे नहीं नहीं कोई नहीं,
0: अच्छा
1: कह दिया तो मैंने मार दिया।
0: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
1: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल।
0: अच्छा ओके। और बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है, दिल से?
1: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके
0: जी,
1: तो मैं पूरी शूटिंग में था
0: जी
1: उस दिल से की जी।
0: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव?
1: शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था मैं, मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था। मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली में
0: जी।
1: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको, और उस इतना समझ के कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे
0: जी,
1: तो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, और उस जो अंग्रेजी में मणि सर ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया, बस ये काम था मेरा
0: जी। तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है, तो यहाँ पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाए? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं, कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने सुनना चाहते हैं?
1: ये तेरे मेरे सपने का गाना
0: जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, ये गाना हम सुन लें
1: जी। बिल्कुल,
0: नीरज के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत है, और आपकी जिंदगी में गानों की बहुत दखल रही है, तो इस गाने के बाद हम कुछ गीत की बात करेंगे, कुछ पुराने गानों की।

0: तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नजर किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में एक था आनंद कुकर, और वो चीज मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा,
1: वो इतनी खूबसूरत चीज थी।
2: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने भोपाल में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकार से समृद्धि के मंत्र को दोहराया। देश में लागू तीन नए कानूनों की चर्चा करते हुए श्री शाह ने कहा कि पूर्व के कानून अंग्रेजों ने अपनी सरकार को बचाने के लिए बनाए थे। नए कानूनों का उद्देश्य नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाएगी।

0: इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है। ई समन, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है।
1: जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में जेल में बंद जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। हालांकि अभी इसकी सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। उनकी ओर से निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज करने को चुनौती दी गई है। सरायकेला खरसावां के चौका थाना क्षेत्र में एनएच 33 पर आज तड़के एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। कोलकाता से रांची जा रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज अपने सफल 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन शुरू हुआ यह ऐतिहासिक कार्यक्रम अब तक अपनी एक कड़ियों का सशक्त माध्यम बना है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम के 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मालदा रेल मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने साहिबगंज में गंगा नदी के कटाव से प्रभावित रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। उन्होंने साहिबगंज बरहरवा रेलखंड पर सकरी गली और महाराजपुर स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक का जायजा लिया। इन स्टेशनों के बीच पोल संख्या 219 से 32 के बाद गंगा नदी के तेज कटाव के कारण रेल पटरी के नजदीक पानी पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि समस्या के अस्थायी समाधान के लिए प्रयास जारी है।
2: पिछले 2-3 दिन से पूरी हम लोगों की टीम यहाँ पे काम कर रही है। हमने देखा कि यहाँ पे आज स्तर जो है कल के कंपैरिजन में बढ़ गया है और गंगा नदी की जो बहाव है वो भी बढ़ गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि जो वाटर लेवल कितना बढ़ता है और स्पीड कितनी रहती है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे।
1: भारत ने एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाते हुए 19वां स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। स्वर्ण पदक के लिए हुए इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने मात्र 22 गेंदों में 51 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्ध शतक लगाया। भारत ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 211 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम 192 रन पर ही सिमट गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और जज्बे से देश का मान बढ़ाया है। सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारत ने महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीतकर अपने जुझारूपन, परिश्रम, अनुशासन तथा संघर्ष का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की यह उपलब्धियां देश के करोड़ों युवाओं को खेल के मैदान में आगे बढ़ाने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देगी। भाजपा नेताओं ने आज गुमला के रायडी में वीर शहीद बख्तर साय और मुंडल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने वीर शहीदों के संघर्ष और योगदान को याद किया। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही और प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह समेत अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कुछ ऐसा ख्याल मुझको तो उसी दुनिया में बनानी थी, कहानी का ही हर पहले का ही एक्सटेंशन था, सेकेंड और थर्ड भी। तो उसे सिर्फ गैंगस्टर बदलते हैं, पहली वाले में रणदीप हुडा गैंगस्टर थे, सेकेंड वाले में इरफान था। तो पहली भी चल गई थी और तो सेकंड वाले में थोड़ा हमको मिल गया स्टूडियो फट से, बहुत झंझट नहीं हुआ
1: जी जी,
0: थोड़ा बजट भी थोड़ा बढ़ गया। तो उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया पोलो मैचेस, जितने प्रिंसली वाले जो पोलो खेलते हैं उस तरह के मैचेस और ये वो, थोड़ा गानों में खर्चा ज्यादा, वो सब किया आपने सेकंड में
1: जी। एक झलक सुनते हैं गाने के, साहबीबी और गैंगस्टर, नूरा सिस्टर्स की आवाज में।

0: ये साहा बीबी और गैंगस्टर फिल्म का गाना था नूरा सिस्टर्स की आवाज में, और तिग्मांशु जी की ही ये फिल्म है। तिग्मांशु जी, हमारे बहुत सारे श्रोता विविध भारती के बुक पेज से जुड़े हैं और आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं। एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आपने अभिनय और निर्देशन दोनों में काम किया है, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है?
1: दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अंतर क्या बहुत ही दोनों, मुझे मज़ा कैमरे के पीछे ज़्यादा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टिंग मैं करता हूँ क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक्टर बन गया किसी तरह से, और वो लोगों को पसंद आ गया तो अब मुझे कभी कोई रोल ठीक ठाक होता है या पैसे थोड़े ठीक ठाक मिलते तो मैं रोल कर लेता हूँ, बाकी मुझे बहुत शौक नहीं है एक्टिंग करने का।
0: जी,
1: दुनिया का सबसे आसान काम है एक्टिंग।
0: अच्छा, तो उस समय आपका निर्देशक भी काम करता है आपके भीतर कि जो निर्देशक बोलता है वही करते हैं?
1: जी नहीं, आप उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते कि आप कंप्लीटली स्विच ऑफ, तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर कोई और होता है तो मैं ज्यादा सवाल जवाब करता नहीं हूँ। अंटिल एंड अनलेस बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जो वो डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा, तब मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो अड़ा रहे तो मैं डायरेक्टर की ही मान मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर भी ऐसा ही करें, तो मैं भी डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ, तो माननी भी चाहिए
0: जी।
1: तो लेकिन एंजॉय मैं ज्यादा डायरेक्ट करना करता हूँ
0: जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि अवधि में कुछ बोल के बताइए।
1: अरे कहाँ तो... बताई भैया दोनों एक सवाल बढ़िया से पूछो तो बताई फिर तुमको।
0: तो बतावे कोनो शूटिंग से जुड़ी हुई कोनो बात याद हो तो बता दे।
1: अरे अब शूटिंग इतनी पिक्चर बन गई, इतने कांड हुए हैं और इतनी कहानियां हैं कि सुबह से रात हो जाएगी,
0: तो एक आध कोनो छोटा सा अंश बता दे ताकि हमारा श्रोता खुश हो जाए।
1: नहीं ऐसे जब बहुत कुछ होता था कि एक जैसे पान सिंह तोमर की एक बार शूटिंग कर रहे थे हम लोग चंबल में, तो बहुत खूबसूरत जगह है चंबल, बहुत ही वो नदी इतनी खूबसूरत है, इतनी साफ, इतनी आप उसको आप ऊपर से देखें बोट से तो आपको नीचे तक दिखाई देता है,
0: ट्रांसपेरेंट है
1: एकदम, आपको नीचे कछुए और ये सब चीजें तैरती हुई दिखाई देंगी, ब्यूटीफुल रिवर, और साथ में वो चंबल के घाटियां और रवेंस जो है। तो शूटिंग करते थे फिर सोचते थे यार, क्योंकि सारे दोस्त तैयार हैं, इतनी 100-150-200 की यूनिट है, हम लोग सोचते थे यार एक जैसे की जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा साहब मैं रिफान हूं, मैंने कहा यार रात को ना बैकअप के बाद यही मंदिर बनाएंगे।
0: क्या बात है।
1: तो यही बैठा जाएगा,
0: डर नहीं लगता था रात की शूटिंग में?
1: उस नहीं, तब पुलिस तो रहती थी हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग सोचा लगे बैठेंगे अपना कुछ मजा वजा करेंगे यही आसपास, खाना वाना कहीं बनवा लेंगे गाँव में, और पूरी तैयारी के साथ और बहुत कि कैसे जिस कैसे जल्दी पैकअप हो और कैसे हम लोग सब रिलैक्स कर रहे हैं नदी के बगल में, घड़ियाल बहुत है वहाँ चंबल जो नदी है उसके कट पे एलिगेटर्स जो है बहुत सारे हैं
0: जी जी,
1: ऐसे मुंह खुले हुए सब लेटे रहते हैं सब। तब तक खबर आई, हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि आग वाग का सबका, हर तरह की आग का, तो फिर पाया कि देखो शूटिंग देखने के लिए आते हैं ना बहुत सारे लोग, कौन
0: जी,
1: क्या है उसमें क्या मालूम, कहते नहीं डकैत लग गए हैं यहाँ पे 3-4 और आप लोग ये सब एंजॉय करना भूल जाइए, चुपचाप गाड़ी में बैठिए होटल जाइए।
0: तो
1: वही किया, नहीं तो पता चला कि जो हीरो है उनको उठा के ले गए, पकड़ बन गए, वो हम उनकी रैंसम दे रहे हैं वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शूटिंग के दौरान, आपको क्योंकि लोकेशन नहीं होती है, आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होना चाहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे किस्से इस तरह के
0: जी जी
1: बहुत है। लेकिन डाकू आते थे हमारी शूटिंग देखने।
0: अच्छा, तो कभी आपको उनसे डर नहीं लगा, डराया धमकाया नहीं?
1: इस तरह के थोड़ी होते हैं
0: जी,
1: इस तरह के थोड़े गधे बेवकूफ थोड़ी होते बाकी लोग लग
0: जी,
1: उनको अगर किसी को किडनैप करना हो तो पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे वो किसी को
0: हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: अब वो पूरे एरिया में सब घर हर घर में बंदूकें हैं, क्या करेंगे डाकू परेशान।
0: और आप जैसे जो इलाहाबाद की जो दबंगई है, दबंग किस्म के इंसान तो डर ही नहीं सकते, ये भी बात।
1: ऐसी बात नहीं है, डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझको भी लगता है
0: जी,
1: और लगना भी चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, खतरों से खतरों का सामना करना ठीक है, लेकिन खतरों के खिलाफ खड़े होके अनायास मोर्चा लेना भी ठीक नहीं होता जी। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है तो आपको लगता है कि कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे प्रस्तुत करने का तरीका?
1: फिल्म चलने के पीछे, अच्छी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों पे बात बोल सकता हूं, देखिए फिल्म के चलने के पीछे अच्छी कहानी हो जरूरी नहीं है।
0: जी, कौन सी फिल्म चल जाए कुछ पता नहीं।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं उस पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए। आपको क्या चाहे कैसी भी कहानी हो, सिंपल कहानी हो, लेकिन उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं वो अंदाज आपका, उस फिल्म की पैकेजिंग, किस तरह से टाइटल्स आ रहे हैं, किस जगह पे गाना आ रहा है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं हम, मंजर कशी जिसे जावेद साहब से पूछा गया था कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले में फर्क क्या है, तो स्टोरी इज व्हाट एंड स्क्रीन प्ले इज हाउ। तो आपका अगर हाउ बहुत अच्छा है तो एक कमजोर या बहुत ही सिंपल सी सामान्य सी कहानी भी अच्छी फिल्म हिट बन सकती है। लेकिन अच्छी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म में तो यह है कि कहानी अगर हो तो फिर वो यादगार बन जाती है, अगर कहानी अच्छी है तो।
0: जी बिल्कुल। तो आपको बतौर, चूंकि आप लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो कभी अपने लिखे को एक निर्देशक के रूप में खारिज भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं, कोई ऐसे उदाहरण?

0: उदाहरण देके बताइए हमारे श्रोताओं को कि
1: लिखना तो एक्चुअली सबसे पड़ी, जब क्योंकि मैं लिखता भी सारी फिल्म खुद की, वो सारी जितना भी अब तक काम किया मैंने खुद ही लिखा है सब, तो वो एक बहुत ही पैनी और उससे स्क्रूटनी से होकर गुजरता है। बहुत आलसी लेखक भी हूँ मैं, मुझे जल्दी भी नहीं लिखा जाता।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत टाइम लेता हूँ मैं। तो मैं, मुझको ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने कभी कोई खराब, ऐसे नहीं मेरी सारी पिक्चर लिखा, बहुत सारी पिक्चर फ्लॉप ही है मेरी।
0: ये आप कह रहे हैं ना हमारे
1: नहीं, नहीं, नहीं, सच बात है। उसमें उसमें क्या है, हर पिक्चर तो हिट, किसी भी सक्सेसफुल डायरेक्टर का जिसका भी आप बड़े से बड़े के नाम लें, पूरे फिल्मोग्राफी में 3-4 पिक्चरें होती हैं जो अच्छी होती हैं
0: जी,
1: बड़े से बड़े की। बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो गया तो उसकी बात छोड़ देते हैं, बिमल रॉय को हटा देते हैं स्फेरिस से, और राज कपूर साहब और गुरुदत्त इन जैसे लोगों को हटा देते हैं, वो लोग तो लेजेंड्स हैं, वो लोग उन्होंने ग्रामर लिखा है सिनेमा का, हिंदी सिनेमा का, तो उनसे तो हम कभी देख भी नहीं सकते, सिर्फ नतमस्तक हो सकते हैं उनके सामने। बाकी जो और लोग की, जिन पे हम लोग जैसे डायरेक्टर आते हैं, तो उन सबकी फेहरिस्त में देखिएगा तो अगर 15 पिक्चर हैं तो 4 ही पिक्चर होंगी जो सही पड़ी होंगी, बाकी तो आदमी फेल करता ही करता है।
0: आपकी ये बात बड़ी मन भाई कि इतनी ईमानदारी से अपनी फिल्मों की समीक्षा खुद ही कर रहे हैं, और पुराने दौर के गोल्डन इरा के निर्देशकों की बात की और फिल्मों की बात की, तो पुरानी फिल्में आप देखते हैं, उनके गाने
1: सुनते हैं? मैं तो आजकल पुरानी ही देखता हूँ
0: जी,
1: मैं तो आजकल पुरानी फिल्में ही देखता हूँ। कई फिल्में मिस हो, सब पिक्चर तो अच्छी नहीं देखी, कई पिक्चर मिसिंग भी है, कहीं आ जाती, तो मैं यूट्यूब में खोज खाज के वो फिल्में देखता हूँ। मैं
0: कौन कौन सी फिल्में देखी इन दिनों में?
1: मैंने अभी ख्वाजा अदम अहमद अब्बास की एक दो फिल्में देखी जो कि नहीं देखी थी, देव साहब की एक दो फिल्में थी जो मैंने नहीं देखी थी, और जैसे मेरी बहुत अच्छी पिक्चर जो मैंने नहीं देखी थी, इसका नाम था शंकर हुसैन
0: जी, जी
1: जिसके गाने
0: बहुत ही
1: खूबसूरत गाने, तो मैं गाने तो बहुत सुने थे, पिक्चर नहीं देखी थी, वो देखी मैंने। तो ऐसे ऐसे कई फिल्में हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी।
0: तो गाने आपकी जिंदगी में कैसे जुड़ते हैं, क्या दखल रखते हैं आपकी जिंदगी में पुराने गाने?
1: अब गानों के साथ म्यूजिक के साथ, जब हम लोग इलाहाबाद में थे तो हमारा बैंड था तो अंग्रेजी गाने बजाते थे हम लोग
0: जी जी,
1: मैं रिदम गिटार बजाता था और गाता था
0: जी,
1: और मैं गाता ठीक ठाक था, तो मुझे सब जगह जितने इलाहाबाद के लेवल पे और फिर यूनिवर्सिटी लेवल में कॉम्पिटिशन या सब फेस्टिवल्स होते थे सब स्टूडेंट्स का अपना, तो उन फेस्टिवल्स में मुझको हमेशा बेस्ट वेस्टर्न सोलो मेल अवार्ड हमेशा मिलता था, तो मैंने चैंपियन था मैं उसका।
0: क्या बात है भाई,
1: तो जी
0: आपने,
1: मैं गिटार कभी बहुत अच्छा बजा नहीं पाया, रिदम बजा लेता था, लेकिन मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बनना चाहता था, जो मैं कभी कभी नहीं कर पाया, मैं आज भी सोचता हूँ लेकिन टाइम नहीं मिलता है। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले मैं अच्छा लीड गिटारिस्ट बन जाऊँ।
0: क्या बात है।
1: अब वहां से सिलसिला शुरू हुआ म्यूजिक का, और फिर मेरे जो मैंने वही किया जो मेरे दोनों बड़े भाइयों ने किया, उन्हीं की नक्शे कदम पे मैं चला हूँ। बड़े भाई साहब मेरे वो डिफेंस में चले गए, वो नेवी में थे, रिटायर कर गए, बट अभी भी उनका आर्ट और पोइट्री वो परसू करते रहते हैं गोवा में। बीच वाले भाई साहब वो जुडिशरी में चले गए, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने गुवाहाटी हाई कोर्ट के, भी सुप्रीम कोर्ट के जज बने, वो उनकी पूरी जिंदगी जुडिशियल, लेकिन वो भी मुझसे अगर वो फिल्मों में आते तो शायद मुझसे बेटर फिल्में करवाते वो
0: जी जी।
1: अब ये था, मैं छोटा था, हम लोगों में एज डिफरेंस बहुत है, 7-8 साल का डिफरेंस है भाइयों में मेरे और उनमें, तो उन्होंने छोटे भाई को प्रमोट किया कि करने दो उसको, तो उनकी बदौलत में बढ़ गया आगे
0: जी जी जी। तो अब यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए, शंकर हुसैन का भी जिक्र किया आपने, आपकी पसंद का कोई और गाना?
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है दाग फिल्म का
0: जी जी,
1: विच इज अ वेरी अनलाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सॉन्ग
0: जी जी, तो वही गाना हाँ। सुनते हैं
1: ये मेरे दिल में आज का।

0: साई साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज और दाग फिल्म। तो ये गाना तो हमने सुना और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो वो उन्हें बड़ी जिज्ञासा है, तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं, नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
0: जी।
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य। तिग्म अंशु, तो तेज जिसकी अंशु है, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
0: जी जी।
1: तो मुझको नहीं लगता मेरे नाम किसी नाम का कोई और दूसरा है, बड़ा सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
0: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
1: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का हिमांशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है, तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
0: जी।
1: तो और धूलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब है, तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रेलिवेंट और करेक्ट लगता है वो ये लगता है कि शायद हम लोग धूले से हैं, महाराष्ट्र से
0: जी जी।
1: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का, हम लोग पहाड़ के रहने वाले, तो तब अब तो उत्तराखंड तो 2000 में बना, उसके पहले तो यूपी का ही पार्ट था सब। तो मुझको एक मेरी थ्योरी लगती है, जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जब पेशवा साहब वहां से चल के पानीपत मतलब हरियाणा लड़ाई करने आया है मशाद अली से
0: जी।
1: तो वह सिर्फ सेना नहीं आती ना, तब तो साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, पुजारी भी आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, क्योंकि बहुत मिलों तक का ट्रैवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं, और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण

0: होते तो उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से आए हैं, यहाँ तो हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाकर, तब तो पैदल चलना है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धुले से थे और हम लोग रह गए वहां और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना
1: जी,
0: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है
1: जी। बात उत्तराखंड की चली है, उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तिग्मांशु जी, एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार है मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहब बीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?
0: अब मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखता हूँ, जिससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक, एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता।
1: जी जी,
0: बाद में सब जैज और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था।
1: बिल्कुल,
0: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है
1: जी जी,
0: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूँ या जो भी लोग पसंद करते हैं वही कारणों से करते, कहिए वो लिरिक्स बहुत पसंद आती है। अब पुराने जमाने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे सबसे ज्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूं कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलेडी की वजह से।
1: क्या बात कही आपने,
0: लिरिक्स जी बिल्कुल, लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं आज, उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलेडी कॉम्पोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री।
1: जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं कर पाते,
0: बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कह दें, अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं, से बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इश्क करना सीख रहे नासिक, इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर।
1: जी बिल्कुल,
0: तो पुराने राइटर्स से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं, लेकिन जो सब वो राइटर्स जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरू सुल्तानपुरी हैं, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम,
1: जो सबके पिक्चर
0: देखती हूँ उनकी फेहरिस्त सबसे ज्यादा है ना
1: जी।
0: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता।
1: जी जी, तो इस समय आप जो नए दौर के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्मों के गाने कविता के रूप में आए, क्या आप ये वादा करेंगे, और नए बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि वो नए गानों से हिंदी गानों से कैसे जुड़े?
0: देखिए कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि मीडियोक्रेटी ज्यादा है, अच्छा काम तो कम ही होता है
1: जी,
0: बुरा काम ही होता ज्यादा तो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश करते रहो बस
1: जी,
0: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे, तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो वही, इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
1: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब पसंद करते हैं।
0: तो ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में अब गाने खत्म हो गए।
1: जी
0: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नया गाना को तो कोई सुनता भी नहीं है
1: जी,
0: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें होगी, आप गाना रख नहीं सकते कि तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में 3-4 दिन, अच्छा गाना हो तो 3-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा
1: जी,
0: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक, तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक कटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने थोड़ा, यही हो गया है, सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, बाकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना, वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ
1: जी जी।
0: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं, तो अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे
1: जी जी बिल्कुल, और वो गाने याद किए हाँ, जाते थे, गुनगुनाए जाते हाँ, थे। और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं, चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते।
0: और देखिए बात ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटी पिक्चर पर, ये जानते थे कि छोटी पिक्चर का बजट कम होगा। आर डी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चरों के, आप उठा के देख लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है। फिर उन्होंने बड़ी, रमेश सिप्पी शोले, ये सब किया, लेकिन उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चरें बेमिसाल देख लीजिए, कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना।
1: जी बिल्कुल,
0: छोटी फिल्म है, देख लीजिए आप।
1: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाएं?
0: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर में लोग कभी इस बात का वादा कर लो, वो ओपन एयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना।
1: जी जी वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी
0: जी,
1: ये वाला गाना आपको, आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: और डायलॉग्स किए, और एक नाम है जानुसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूजिक रिलीज हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है जो होते हैं,
0: तो अजनबी गाना,
1: हाँ, तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी घर के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी,
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवानसी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था?
1: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी, मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की है वो तो नामों को लेके उनका
0: जी जी
1: हमारी फैमिली में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ वो छैया छैया के बाद ये और फिर ये जब गाना सुना शुरू हुआ है अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे गाने तो कमाल थे दिल से के, खैर आज भी झटका दे देते हैं हर एक गाना उसका, तो उसमें वो जानसी कहाँ,
0: क्या बात है,
1: और वे तुलका लेकर रुको रुको रुको रुको, जानसी वर्ड, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक्चुअली मेरी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
0: क्या बात है, तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
1: जान जैसी,
0: जान जैसी,
1: सिंपल
0: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है, तो
1: अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: आपको असिस्ट कर रही है?
1: हाँ।
0: ओ,
1: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा इस सब जो सभी कब करते हैं वो करते रहते, फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ। तो वो मेरे साथ है अभी
0: जी। कौन सी फिल्म बना रही है
1: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बनाएगी
0: जी। तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा?
1: जी, मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
0: जी जी जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर हैं, परदेश में हैं, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती।
1: हाँ, हाँ।
0: तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ खास बात बताइए।
1: जिमी से ये था कि मुलाकात, जब पहली फिल्म कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था, उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था,
0: सलोने से दिखते भी हैं।
1: हाँ, तो उसमें कैरेक्टर का वो था दिखाना था कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत खराब हो जाती है, गुंडे के साथ वो रहने लगता है और उसका कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीर चा, तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
0: तो जी बताइए। बिल्कुल,
1: हाँ, तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब, तो ये हुआ। फिर ये क्या, वही जैसे याराना दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
0: जी जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा,
1: जी,
0: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
1: और आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे, उसके कारनामों से आप थोड़ा
0: इंस्पायर हुए?
1: इंस्पायर नहीं, वो कारनामे विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते थे कि कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना,
0: तो समाज के सामने सच्चाइयां लाना?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने, समाज से मैं सच्चाई है तो अखबार पढ़ के समझ में आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का,
0: बिल्कुल सच्चाई यथार्थ के करीब,
1: मतलब हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने 2 में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल, क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
0: जी बिल्कुल,
1: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती के ऐसा रिश्ता जो आदमी खुद बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या

0: है उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं। आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खरा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने मुझे दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त रखे
1: जी। और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी थे।
0: हाँ, बाकी इसमें और भी कैरेक्टर थे जी, जी जी जी।
1: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई, जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
0: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोगों ने सैफ के साथ दोबारा

0: दिग्मांशु विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं। 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है। छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज्यादा आकर्षित करता है?
1: ने हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। वो तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी लेकिन हमने मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरे मेरी कक्षा के तो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े तो सबने टीवी किया। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली वो शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी। तो हम में जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था उसके बाद।

0: जाना तो फिल्मों की ही तरफ था
1: जी। तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए, जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे, तो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं, तो वो कुछ यादें आप ताजा कीजिए।
0: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे, श्याम बेनेगल जी का आता था के, फिर भारत एक खो जाता था,
1: फिल्मों का इंतजार होता था,
0: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे होते थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में तो खूब दिखाई जाती थी, दिन में तीन तीन चार चार पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे, हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी देखी जाए, तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था
1: जी। तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
0: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
1: एशियाड जब शुरू हुआ था
0: तब आया था 82 में
1: जी,
0: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के यहाँ, तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने, छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा थिएटर करते थे, तो कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
1: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ, तो आप
0: कभी कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज फायदा भी उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था,
1: दुलारे बेटे थे,
0: दुलारा बेटा था जैसे मैंने कहा, बड़े भाइयों में जो 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी होता था उनके साथ होता, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा पूछे जाओ।
1: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
0: मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष उंघर्ष नहीं किया, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
1: तकलीफों से नहीं गुजरा,
0: बिल्कुल नहीं। मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला, मेरे भाई, मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो एनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ। मेरा पहले अटेम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
1: जी।
0: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था, उस वक्त होता नहीं, या फिर बैंडेड क्वीन भी, तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहां, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर को नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, कि शेखर कपूर का नाम सब जानते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि वो डिग जाम के मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता उनके असिस्टेंट हो, ठीक है
1: जी।
0: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा, मैं जहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जो इधर INS हमला जाते हैं
1: जी जी,
0: वहाँ रहते थे, तो मैं साल भर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है, तब नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
1: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
0: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
1: बिल्कुल,
0: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है, तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो, लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब एनएसडी में, मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, वो मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था।
1: जी जी
0: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल करके

0: जिंदगी खत्म हो जाती।
1: जी बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती तो, और आपकी एक फिल्म है साहब बीवी और गैंगस्टर जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
0: पार्ट टू का गाना है, इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया है। लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि ये, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाड़ा हुआ, उसे कई गाने पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं।
1: जी सुनते हैं ये गाना।
2: छल कपट प्रपंच है, हर स्वार्थ का ये मंच है,

0: निर्दोष है, प्यार में भी रोष है। मुर्दे में भी एक जोश है, ईर्षा ही शब्द कोश है।
1: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है, हमारा नहीं।
0: तनी हुई हर बात

0: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नजर किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: मैं ऐसी कोई बहुत लीक से हट के नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मतलब मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही कमर्शियल जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ।
0: जी जी।
1: कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ। जिसको आप बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है।
0: जी,
1: बाकी
0: जी।
1: मैं कोई लीक मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग। वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीजें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, मैं कभी बनाऊंगा मैं।
0: जी जी।
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात महसूस लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से किसी नए आदमी से मिलके कोई फिल्म देख के कोई नॉवल पढ़ के आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते आप।
0: जी जी बिल्कुल।
1: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए। वही आपके सारी कला आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं सबके पीछे वही है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
0: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म।
1: जी जी।
0: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: कठिन तो कुछ नहीं होता
0: आपके लिए तो बिल्कुल नहीं।
1: नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं आपने किया आपको मालूम है कैसा होना है। वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह पे, जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया। और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका बांदा वाला रीवा सतना मध्य प्रदेश यूपी इलाहाबाद के भी बहुत नजदीकी है।
0: जी जी।
1: तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, तो बैठे रहते थे अपने जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे, जाके मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार ऐसे रस्सी होती है वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ, या तो खा गए जंगली जानवर, ये क्या हुआ सबमरी, या तो मार के लटकाया गया है या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वहीं नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी। अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहां देखा, वहां पे एक स्पॉटेड डियर था बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में। तो ये सब चीजें हाँ थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती है फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता है आपको।
0: जी जी। डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाएं?
1: जी सुनाइए, धाएं धाएं
0: सुनते हैं।

0: तिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने कि वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई
0: दिया। अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है। तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नजरिए से कि एक अच्छी फिल्म दें दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीज़ें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियो पॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ का किसी ने कुछ अच्छा नई किताब है कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग सा लगता है फिक्शन बहुत। तो
0: जी,
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे
0: जी
1: पढ़ता हूँ मैं। हाँ,
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक हैं,
0: जी, बिल्कुल,
1: उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है।

0: उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
1: क्या बात है।
0: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
1: जी जी। और अब हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
0: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि पैगाम दूँ। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिलके इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 इयर्स पूरे हुए हैं, उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहे जिंदगी में।
1: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक।

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये 1.5 घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं जरूर आऊंगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

0: साउंड कैमरा एक्शन
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
2: तो स्वागत है आपका।
1: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
2: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, अच्छा। मुझे

0: याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था
1: तो जब तक थोड़ा आप पूर्णिमा में कन्वर्ट
0: नहीं,
1: थी
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या ये मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, ऑल दैट रबिश। इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए,
1: जी
0: पर
1: जी
0: क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारी हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिस जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं हम,
1: जी
0: मिडिल क्लास। और मुझे गर्व है इस बात का,
1: जी
0: अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ।
1: जी
0: वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप
1: गैप।
0: पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी, ना बड़ों
1: और
0: में।
1: ये दौर बड़ा मुश्किल होता है एक
0: बहुत
1: कलाकार
0: मुश्किल,
1: के लिए।
0: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा। उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना। नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, में जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का,
1: जी
0: है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल।
0: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका एक सिस्टम ही था, है ना। तो उन लोगों ने ये आइडिया इसमें डाल दिया, टिप्स कंपनी वालों ने, वो भी सिंधी, कि हम फिल्म, वो ही हम करेंगे फिल्मी गानों पे, हम गणपति के भजन, जैसे रमैया वस्तावैया, तो उस पे किया, मोरया गजानना मोरया गजानना सुख दे सकल जना, ऐसे।
1: जी
0: अब वो कैसेट उसके रिलीज के से जरा पहले, उनकी जितनी टीम थी, जो भी, उन सबको ऐसा लगा कि अब तो सुषमा श्रेष्ठ नाम देने से कहीं लोग ये ना समझे कि ये बच्चों के गानों का एल्बम है।
1: जी जी
0: होता है, हमें ये पता नहीं चलता मंदाकिनी जी, पर वो लोग तो मार्केट स्टडी करते हैं ना, तो क्यों ना हम तुम्हें एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस करें। सुषमा श्रेष्ठा इस नाम को हम नहीं रखेंगे, तुम्हें एक नए नाम, नए इमेज के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पूर्णिमा नाम मैंने ही सजेस्ट किया था, क्योंकि ये मेरे जन्म पत्रिका,
1: जी
0: उसमें मेरा नाम पूर्णिमा है, तो मैंने कहा पूर्णिमा कैसा रहेगा, सबको अच्छा लगा। अब सिर्फ वाद विवाद इस बात पे हुआ कि पूर्णिमा श्रेष्ठा रखें या क्या, तो वहां मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि नहीं, क्योंकि वो चाह रहे थे पूर्णिमा श्रेष्ठा, क्यों, बाकी जो टीम था
1: ठीक
0: उनका,
1: है
0: कि सुषमा श्रेष्ठा पूर्णिमा श्रेष्ठा,
1: श्रेष्ठा
0: एकदम से क्लिक हो जाएगा।
1: हाँ।
0: पर ठीक है, अब ईगो हैसल्स जहां आ गए, उसका तो कोई इलाज ही नहीं मंदाकिनी जी। तो रमेश तो मेरा भाई है, जो रमेश तौरानी जी हैं, मैं कई सालों से उससे राखी बांध रही। मैंने कहा छोड़ सुषमा, छोड़, पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करने का, जो है बाबू अपन ऐसे ही करेंगे। तो पूर्णिमा नाम वैसे करके उन्होंने बहुत, मैं कहूंगी टिप्स ने उस वक्त इतना मुझे, मतलब स्क्रीन में 2 पेज का कवरेज इंट्रोड्यूस, उन्होंने ही मुझे अपनी पहली फिल्म, उन्होंने जो बनाई थी बाहरों की मंजिल, राम लक्ष्मण जी का म्यूजिक था वो गाना, अगर आपको मिले प्लीज बजाइए गाना, अमित दा के साथ गाना था, उत्तम भैया ही अरेंजर थे
1: जी।
0: तुम ताना नाना ताना तर तर ये दिल है दीवाना,
1: जी

0: आपने भी हमें उन दिनों की याद दिला दी जब नई नई पूर्णिमा गायिका के रूप में हमारे सामने आई थी। बहुत समय बाद हमें पता चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से वयस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना सरगम जी। तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी।
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक तो आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने गाना गाया था उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तुतु तु तु तु तारा में हमें दिखाई दी थी, है ना, और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं, मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान लें, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही
0: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग ही रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही
1: मानती हूँ,
0: वो पूर्णिमा ही गा सकती है।
1: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद

0: वही मेरा एक यूएसपी है
1: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होते ही थोड़ा सा
0: हाँ,
1: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
0: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
1: चुलबुलापन जो आवाज
0: हाँ, वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
1: वो
0: ये
1: बाल,
0: कुछ है,
1: बाल मन था,
0: है ना। लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए,
1: जी, जी।
0: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
1: जी।
0: तो टेक्सचर एज सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
1: जी।
0: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी,
1: प्रोफेशनल
0: प्रोफेशनल साजिश थी
1: जी,
0: कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
1: बनानी
0: है,
1: तो, जी। तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा सेठ से बात करती है जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
0: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी, तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
1: जी,
0: आ रहा
1: जी,
0: है, पर
1: जी, एक अलग रूप से जी पाती,
0: से
1: उनके,
0: जी
1: संगीत
0: पाती
1: को,
0: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
1: सुषमा से पूर्णिमा का जो सफर है, यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तू तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
0: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन। बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना। हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना, क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना। तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
1: जी।
0: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूं मंदाकिनी जी, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
1: जी,
0: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग के, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
1: जी।
0: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से, और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी,
1: बिल्कुल,
0: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी,
1: बहुत
0: वो बहुत जरूरी,
1: ये एक बड़ा मन ही ये बात
0: वो बहुत
1: कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता, मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
0: कभी
1: नहीं करूंगी। पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पास,
0: शाम है धुआं धुआं।

आरजू झूठ है, कहानी है। आरजू का फरेब खाना नहीं, खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी

0: कभी
1: तो पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था, तू तू तू तू।
0: पहला तो वो था तुम ताना नाना ताना
1: जी, जी।
0: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है
1: जी,
0: तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी
1: जी,
0: दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर, क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा,
1: है ना। सही कहा।
0: तो उसके बाद

0: मैंने माँ का गाना जब गाया तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतू तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतू तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव के गोरी बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी जी
0: मैं हूँ गांव के गोरी बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ तुम कर दो ना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होती
1: बिल्कुल,
0: है ना, माने ना माने।
1: हाँ
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती और दे सकती हूँ वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं
1: नहीं
0: खुद से ये
1: बिल्कुल
0: कह रही हूँ
1: जी
0: आज,
1: बिल्कुल
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा
1: अरे
0: जरूर, शाम है
1: क्या
0: धुआं धुआं,
1: बात है क्या
0: वो तो
1: बात।
0: मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है,
1: जी
0: तो उनका, उनकी डिक्शन बहुत साफ है,
1: माधुरी
0: क्लियर
1: जी
0: जिसे
1: की।
0: हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन

0: तो क्वीन नहीं, महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना,
1: जी
0: वो एक अलग टाइप की होती है,
1: हाँ बिल्कुल
0: वो मैंने नोट किया
1: नोट की।
0: था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर का
0: हाँ,
1: सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंसेस,
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना।
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन,
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रस्ते से जा
0: अरे
1: रही
0: बाप रे
1: थी,
0: बाप।
1: है ना, कुली नंबर वन, गोविंद और करिश्मा कपूर की जो पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये बात कि
1: हाँ
0: करिश्मा को मेरी आवाज,
1: गजब
0: इनफैक्ट
1: गजब।
0: काजोल को भी, वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना
1: क्या
0: ये
1: बात
0: किसी और
1: है।
0: ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो
1: हाँ
0: खुद नहीं गाया, मतलब इतने वो
1: हूबहू,
0: एक्सप्रेशंस,
1: हाँ हूबहू
0: मैं खुद भी मतलब शौक में
1: जी।
0: हूं।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना
0: हाँ
1: कितना,
0: बाप
1: तो
0: रे,
1: मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही
0: उसमें भी
1: बेकार
0: देखिए
1: है। हाँ
0: करिश्मा का एक अजीब, एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका है ना, वो सिर्फ मैंने, कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया है,
1: जी
0: छोड़िए। खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हमें, वो
1: हाँ
0: हम पर छोड़
1: ये
0: देते हैं।
1: जी जी जी
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात
0: तो ये
1: है
0: सब हमारे इनपुट्स होते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारी इनपुट्स होती हैं, सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक की खुद की जो IQ है उसका जो
0: बहुत कम
1: है
0: है,
1: ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा
0: यकीनन
1: रही है
0: यकीनन
1: उसे पकड़े। मतलब
0: यकीनन,
1: लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
0: यहाँ
1: ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है,
1: हाँ
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
1: तो
0: बढ़ाते हैं,
1: आप
0: ये
1: कहें
0: मेरा
1: तो यही
0: मानना।
1: गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक
0: बिल्कुल,
1: लिया जाए,
0: प्लीज
1: हमारे
0: प्लीज
1: श्रोता भी थिरक लेंगे।
0: प्लीज।
1: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया या?
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने मैं गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफ कोर्स मैं आई एम वेरी प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ ऑल द सॉन्ग्स दैट आई सैंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था। मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही
0: हूँ, जी, जी, जी,
1: इतना भी किसको मिलता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदा के। नहीं जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में, हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा
0: बिल्कुल,
1: बुरा कभी नहीं सोचेंगे।
0: और उन्होंने सोचा भी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ
0: जी।
1: यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आज ये सोशल मीडिया में मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूँ, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं। जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
0: जी,
1: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझे पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला सापडला, कुठला देव बाई पाला जीवच कही वरला, उरात धड धड वाढली ठोकसरा चुकला छो मंत।
0: क्या बात है, क्या बात।

0: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया, मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा।
1: जी
0: पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूं, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी। अभी
1: जी
0: ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूं, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भाई से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूंगी। ही खत्म हुई, फिर एक हफ्ते वो फोन करते रहा, मैंने मना किया। फिर कुछ 15 दिन के बाद फोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास। वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है देखा, मैं बजा बाजा मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूं, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है, सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना
1: गवाली
0: गवाएंगे।
1: क्या
0: तो ये
1: बात है
0: कितनी बड़ी बात है, ये
1: जी
0: अहोभाग्य मैं
1: जी
0: कहूंगी।
1: जी
0: ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
1: ये बड़ी बात है,
0: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो
1: क्या हो
0: सकता है
1: सकता है।
0: मंदाकिनी जी।
1: जी बिल्कुल
0: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ,
1: बिल्कुल सही
0: है ना
1: कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले,
0: जी।
1: बताइए।
0: मेरे बचपन में जब सुषमा
1: हाँ
0: श्रेष्ठा के नाम
1: जी
0: से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
1: जी
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है।
1: जी
0: किल बिल पक्षी बोलती, झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर बिर बिरती।

0: बहुत सुंदर, क्या बात है। तो
1: तो मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के
1: जी
0: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
1: जी
0: बंगाली,
1: जी
0: नेपाली,
1: जी
0: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण, यानी जो डिक्शन आप करते हैं, और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफकोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज की उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे क्या, मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
0: जी, गॉड
1: पर
0: गिफ्ट।
1: ये गॉड गिफ्ट है। ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था, वो हर भाषा भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो शायद ये आई से जैसे आवाज मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब
0: मराठी,
1: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
0: हाँ।
1: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गाया, पर वो गाना एक्चुअली मेरा है। ये जेंजी क्राउड को पता पड़ना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: ऊंची है बिल्डिंग, टाडा टाडा टाडा, लिफ्ट तेरी बंद है, टाडा टाडा टाडा, कैसे मैं आऊं, टाडा रा रा रा रा रा रा, आजा आजा आजा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया था
0: जी, अनु मलिक के साथ
1: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
0: जी।
1: पर वो रिमिक्स से मुझे याद आया।
2: ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया
1: जी,
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी सबके साथ काम किया, जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू, धड़कन में तू, ओ माय जानू, आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं।
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है, एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को, बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलो कि क्या रे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहे ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरी रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग, म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी, या हम दो, है ना, तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी उस गाने के साथ जुड़ी है,
0: माहौल वैसे ही था, वो गर्माहट।
1: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो शुरुआत से गाना शुरू करना पड़ेगा, तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती
0: जाए,
1: कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
0: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
1: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं, वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है
0: जी।
1: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
0: तुला हुआ है,
1: अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहा अभी मैंने देखा है,
0: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर,
1: तो वो पॉजिटिविटी आएगी,
0: वो सीखेगा कहाँ से आगे के लिए,
1: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी जाएगी, है ना। मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नियत, शायद हो सकता है नियत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
0: रातों रात स्टार,
1: इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, क्या करेंगे वो
0: जी,
1: हमने सराहना करनी चाहिए बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
0: जी, ताकि आगे चलकर एक
1: उनको
0: करियर जो बनता है,
1: हर बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था हमें नहीं अच्छा लगता था, कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता है समझदारी उसी में।
0: जी, एक गाना सुन लिया जाए,
1: कौन सा बताइए?
0: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं।
1: हकीया तो मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, हकीया तो चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के। मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी, उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है कि पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही है। मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए।
0: नहीं नहीं बिल्कुल,
1: पर आज का ये मौका मैं नहीं गवाना नहीं चाहती,
0: और हम भी मौका नहीं गवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज्यादा मजा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना, और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहाँ पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है, धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे। हाँ, वो भी इस गाने को सुनना
2: बिल्कुल
1: पसंद करते।
2: बिल्कुल, और तू मेरा हीरो नंबर पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा, और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है
2: पे, यही से मेरे लिए तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा,
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना। हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं, तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चिता की आग जलेगी
1: जी।
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद।
2: प्लीज, चने के खेत में।
1: अरे
2: 18 बरस की कंवारी कली थी, घूंघट में खड़ा छुपा के चली थी, फसी गोरी फसी गोरी चने के खेत में, रहू चोरी चने।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठा जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज राजधानी में फुटपाथ दुकानदारों के बीच कैनोपी अम्ब्रेला का वितरण किया। रक्षा मंत्रालय के उपक्रम गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSI और CSR के तहत कैनोपी अम्ब्रेला उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य स्तरीय फेयर प्राइस शॉप डीलर संघ की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैठक में राज्य भर के राशन डीलरों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि डीलर संघ की मांगों को लेकर विभाग गंभीर है और जल्द ही उसका समाधान निकाला जाएगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज जिला निर्वाचन अधिकारियों ERO और AERO के साथ वर्चुअल माध्यम से SIR की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि SIR के तहत नोटिस की सुनवाई के दौरान अलग अलग दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष आउटरीच अभियान चलाने और 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश दिया। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 5 से 9 अक्टूबर तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, हालांकि इसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। भारत ने एशियाई खेलों की क्रिकेट स्पर्धा में पाकिस्तान को 19 रन से हराकर लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 211 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 192 रन ही बना सकी। भारत की जीत में अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद गेंदबाजों ने भी अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उन्हें खत में कैद करें।

कैसे उन्हें लिख भेजें दिल का हाल। ये हवाएं अपने साथ ले उड़ती हैं और हम गुम हो बैठते हैं उनके ख्यालों में।

ख्यालों का बुलबुला जब अचानक फूट पड़ता है तो याद आता है कि लिखने बैठे थे दिल का हाल, पर अब तक एक शब्द भी नहीं लिख पाए। दूरी है जो परेशान कर रही है, तो क्या दूरी का यह एहसास लिख दें या यूं लिख दें कि बे इंतहा मोहब्बत है तुमसे, अपनी मोहब्बत का इजहार ही लिख दें। तुमसे हुई हर मुलाकात याद आती है, तुम याद आते हो, क्या उन मुलाकातों का हसीन ख्याल लिख दें।

बार बार सोचते हैं कि तुम्हें क्या लिख दें, कैसे लिख दें, कहां से शुरू करें। दिल में तुम्हारे लिए इतना सारा प्यार है कि कोई भी शब्द उसे पूरा ही नहीं कह पाएगा। मन करता है कि इस खत में अपना पूरा दिल ही रख दें, तुम्हें बता दें कि तुम्हारे बिना हर दिन कितना अधूरा है, हर शाम कितनी बेचैन है, हर रात कितनी खाली है। सिर्फ तुम्हारा नाम ही लबों पर हर पल रहता है। इस खालीपन में जब भी कलम चलाने लगते हैं तो सारे शब्द चुप्पी की चुनर ओढ़ लेते हैं और सिर्फ लिख पाते हैं तुम्हारा नाम।

देखो ना, खत हमेशा साथ देने के लिए राजी हो जाता है, पर कलम पता नहीं क्या हो जाता है इसे, साथ ही नहीं देती। फिर बस खत को देखते हैं और मन ही मन तुमसे बातें करते रहते हैं। शायद प्यार ऐसा ही होता है, जहां सबसे ज्यादा कहने वाला दिल ही सबसे ज्यादा चुप हो जाता है। अब दिल में तुम जो रहने लगे हो, तो आंखें खुली हो या हो बंद, सिर्फ तुम्हें देखते हैं, तुम्हें पूछते हैं।

0: जानते हो, अब तो दुनिया की हर छोटी सी खुशी भी तुमसे जुड़ गई है। कोई भी बात हो, तुम्हारा जिक्र आते ही मन खिलखिला उठता है। कोई भी गीत सुनते हैं तो तुम्हारी याद उस गीत के साथ जुड़कर उसे और भी खूबसूरत बना देती है। कहीं ठंडी हवा चलती है तो लगता है जैसे तुम्हारा स्पर्श पास से गुजरा है। चांद में भी अब तुम ही नजर आते हो, तो मैं ऐसे सोचते हुए होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। कई बार लगता है कि काश तुम सामने होते तो शायद कुछ कह नहीं पाते हम, बस तुम्हें देखते ही रहते।
1: तुम भी

कितना प्यारा है ये प्यार का रिश्ता। इसमें खुशी भी होती है, दर्द भी होता है, दूरियां होती हैं तो पास होने का खूबसूरत एहसास भी होता है, शिकवे शिकायतें भी होती हैं तो माफी का खास अंदाज भी होता है, इंतजार भी होता है तो मिलने की गुदगुदी भी होती है। एक अदृश्य डोर से बंधे दो दिल एक अटूट विश्वास के रिश्ते में अपना संसार बसाने लगते हैं। इसीलिए कभी अगर तुम्हें कोई खाली खत मिले तो उसे खाली मत समझ बैठना। समझ लेना, जो तुम्हें लिख नहीं पाए हम, उस खाली खत के हर खाली कोने में प्यार लिखा पाओगे, हर धड़कन धड़कती पाओगे, हमारा इंतजार का हर लम्हा पाओगे, और सबसे ज्यादा सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा पाओगे।

जी आशोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और स्टूडियो की घड़ी में 5:30 हो चुके हैं। आइए हम आपको बता दें, अभी से लेकर रात 11:10 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

जी हाँ सोतो, अब से कुछ ही देर में शाम 5:35 पर आप सुनेंगे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युवानी। और आज के युवानी कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे मुकेश कुमार शर्मा से लिखी वार्ता। विषय है स्थिर एवं संतुलित वैश्विक जनसंख्या का तात्पर्य। 6 बजे का समय होगा प्रादेशिक समाचार का और 6:02 पर हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, जिसका प्रसारण आप सुन सकेंगे हमारे रांची केंद्र से। 6:30 पर युवाओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। और आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे साग की खेती से आमदनी, पशुओं का टीकाकरण और डॉक्टर प्रमोद कुमार से लिखी भेंटवार्ता भी हम आपको सुनवाएंगे। विषय है पशुधन क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। और श्रोताओं, शाम 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:10 पर जिले में आजकल। इस कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे अपने रांची केंद्र से।

गीत गजलों का कार्यक्रम श्रद्धांजलि का समय हुआ शाम 7:15 पर और आज के कलाकार हैं मेहंदी हसन। इस कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे अपने डाटा रेंज के नशे ही और रात 7:45 पर आप सुनेंगे विज्ञान जगत का कार्यक्रम और आज के श्रृंखला

रात 8:45 पर हिंदी में समाचार, 9 बजे का समय होगा अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार का हम प्रसारण करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

जिला सत्र में उसके वक्त से प्रभाव चलेंगे मुंबई, जहाँ से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को, और 10 बजे हम प्रसारित करेंगे अपने दिल्ली से स्पेशल प्रोग्राम 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम 2026 के दिल्ली के हाईलाइट्स को, और 10:20 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का हम प्रसारण करेंगे अपने डांडीगंज के अंदर से ही, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, इसका प्रसारण हम करेंगे अपने दिल्ली के अंदर से, और रात 11:10 पर श्रोताओं आज की सभा का समापन करेंगे। तो श्रोताओं ये तो थे अभी से लेकर रात 11:10 तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

0: युवानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुकेश कुमार शर्मा से लिखी वार्ता। विषय है स्थिर एवं संतुलित वैश्विक जनसंख्या का तात्पर्य।
1: विषय स्थिर संतुलित वैश्विक जनसंख्या का तात्पर्य। प्रस्तावना: जनसंख्या किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि जनसंख्या शिक्षित, स्वस्थ और कुशल हो तो वह देश के विकास का आधार बनती है। लेकिन यदि जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से अधिक हो जाए तो यही शक्ति अनेक समस्याओं का कारण भी बन जाती है। इसलिए केवल जनसंख्या का बढ़ना या घटना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका संतुलित होना सबसे अधिक आवश्यक है। इसी विचार हम संतुलित वैश्विक जनसंख्या कहते हैं। संतुलित वैश्विक जनसंख्या का अर्थ है विश्व में लोगों की संख्या और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के बीच ऐसा संतुलन जिससे प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, स्वच्छ पर्यावरण जैसी मूलभूत सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सके। सरल शब्दों में कहा जाए तो जनसंख्या इतनी हो कि पृथ्वी उसे बिना अत्यधिक दबाव के सहन कर सके। कहा गया है कि जनसंख्या तभी वरदान है जब वह संसाधनों के अनुरूप हो, अन्यथा वही जनसंख्या विकास में सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती है। वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता, आज विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, विज्ञान और चिकित्सा के विकास से मृत्यु दर में कमी आई है और औसत आयु भी बढ़ी है, यह मानव सभ्यता की उपलब्धि है। लेकिन इसके साथ संसाधनों पर दबाव भी बढ़ा है। आज अनेक देशों में बेरोजगारी, जल संकट, प्रदूषण, आवास की कमी, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही है। यदि जनसंख्या और

संसाधनों के बीच संतुलन नहीं रहेगा तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन और अधिक कठिन हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें शिक्षा की कमी, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का कमी, कम आयु में विवाह, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मृत्यु दर में कमी तथा सामाजिक मान्यताएं प्रमुख हैं। कुछ क्षेत्रों में आज भी अधिक बच्चों को आर्थिक सुरक्षा का माध्यम माना जाता है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण केवल कानून से नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता से ही संभव है। अधिक जनसंख्या के दुष्प्रभाव। जब जनसंख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ती है तो सबसे पहले रोजगार पर असर पड़ता है। काम करने वाले की संख्या बढ़ जाती है लेकिन रोजगार के अवसर उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। इसके बाद गरीबी बढ़ती है, सीमित आय में बड़े परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो जाता है, बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और सेवाओं पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है। शहरों में भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम लगना, झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार होना, अपराध में वृद्धि तथा सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं भी बढ़ने लगती है। पर्यावरण पर प्रभाव। बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है। अधिक लोगों के लिए अधिक घर चाहिए, अधिक सड़कें चाहिए, अधिक उद्योग चाहिए और अधिक ऊर्जा भी चाहिए। इसके लिए जंगलों की कटाई होती है, नदियां प्रदूषित होती है, भूजल का अत्यधिक दोहन होता है और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है। क्या कम जनसंख्या भी समस्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल अधिक जनसंख्या ही समस्या है, लेकिन बहुत कम जनसंख्या भी चुनौतियां पैदा करती है। यदि काम करने वाले युवाओं की संख्या कम हो जाए तो उद्योग, कृषि और अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। बुजुर्गों की संख्या बढ़ाने पर सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च भी बढ़ जाता है। भारत की भूमिका। भारत विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति उसकी युवा आबादी है। यदि युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार मिले तो यही जनसंख्या भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बना सकती है। संतुलन कैसे स्थापित किया जाए? संतुलित जनसंख्या के लिए सबसे पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना अत्यंत आवश्यक है। परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी प्रत्येक परिवार तक पहुंचनी चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना चाहिए तथा समाज को छोटे और स्वस्थ परिवार के महत्व को समझना चाहिए। साथ ही हमें जल संरक्षण, वृक्षारोपण, ऊर्जा की बचत और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। युवाओं और समाज की जिम्मेदारी। आज का युवा केवल अपने करियर तक सीमित न रहे बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझें। यदि प्रत्येक युवा 5 लोगों को जनसंख्या, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करे तो समाज में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जनसंख्या का संतुलन
केवल सरकार नहीं बना सकती।

है, इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। प्रेरक संदेश के रूप में महात्मा गांधी ने कहा है कि पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को नहीं। यदि हम संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग करें और जनसंख्या के प्रति जागरूक रहें, तो पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहेगी। जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें शिक्षा की कमी, परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव, कम आयु में विवाह, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, मृत्यु दर में कमी तथा सामाजिक मान्यताएं प्रमुख है। कुछ क्षेत्रों में आज भी अधिक बच्चों को आर्थिक सुरक्षा का माध्यम माना जाता है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण केवल कानून से नहीं बल्कि शिक्षा और जागरूकता दोनों से संभव है। स्थिर संतुलित वैश्विक जनसंख्या का निष्कर्ष। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि संतुलित वैश्विक जनसंख्या केवल जनसंख्या नियंत्रण का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव विकास, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक प्रगति और सामाजिक न्याय का विषय है। जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन होगा, तभी प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिलेगा, तभी प्रकृति सुरक्षित रहेगी और तभी विश्व में वास्तविक विकास भी संभव होगा। धन्यवाद। वार्ताकार मुकेश कुमार शर्मा।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सेवा सुशासन माह की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर श्री मरांडी ने बताया कि सेवा सुशासन माह के तहत 7 अक्टूबर को झंडा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज लोहरदगा के कुडू में आयोजित प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी ली और अधिकारियों को जनजातीय समाज से जुड़े मामलों का समयबद्ध और विधिसम्मत समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति मोर्चा ने रनपास में स्थायी निदेशक की नियुक्ति, आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में आज धरना दिया। मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष महेश कुमार मनीष ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। राज्य स्तरीय ललिता टूडू मेमोरियल थ्रो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हजारीबाग में किया गया। प्रतियोगिता में 16 जिलों के 800 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर 2 नवंबर को कोलकाता में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता के लिए झारखंड टीम का चयन किया जाएगा। एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 1-5 गोल से पराजित कर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही भारत 18 स्वर्ण समेत 89 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक जीत पर हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में जश्न का माहौल है। टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी झूमते थिरकते एक खुशी का इजहार कर रहे हैं। हॉकी झारखंड के महासचिव मनोज कोनबेगी ने कहा कि टीम का नेतृत्व सिमडेगा की खिलाड़ी सलीमा टेटे ने किया, जो गौरवान्वित करने वाला है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:02 हो चुके हैं दोस्तों। ये वक्त है कार्यक्रम किसान वाणी का, आइए सुनते हैं किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: तो कृष्ण जीवन भाई बताओ क्या हालचाल है?
7: हालचाल तो बढ़िया है संध्या बहन, और आशरा करी लकी सुनोया भाई बहन मन कर भी हालचाल, किसान भाई बहन मन कर भी बढ़िया होगी।
6: हाँ भाई, मौसम कैसनो रही हमरे के अपन ध्यान बढ़िया से रखे गए है नी। काले के भाई काम काज तभे बेस तरी होवेला जेखन हमरे कर स्वास्थ्य बेस रहेला।
7: ठीके कहते, काल के जे लखे हमरे मन अपन स्वास्थ्य कर ध्यान रखी ला, ओहे लखे किसान भाई बहन मन अपन खेत बारी कर भी ध्यान रखें। और आजकल तो सालों भर खेती होवे ला, तो किसान भाई बहन मन बेरा बेरा से अपन खेत कर माटी कर जांच जरूर करवाऊ, सेकर से फसल बगरा उपजी।
6: हाँ हाँ।
7: और उकर गुणवत्ता भी बढ़ी।
6: हाँ भाई, माटी से फसल के जरूरी पोषक तत्व भेटायला, अगर माटी में कोनो पोषक तत्व कर कमी हो जाए तो फसल कर उत्पादन प्रभावित होवेला। माटी जांच उ वैज्ञानिक प्रक्रिया है के जेकर माध्यम से माटी कर बरन बरन कर गुण और उकर में उपलब्ध पोषक तत्व कर परीक्षण करल जायला। माटी जांच कर माध्यम से खेत कर वास्तविक स्थिति कर पता चलेला, उकरे अनुसार खेती करल जायला।
7: माटी जांच कर सबसे बड़का लाभ ई है कि इकर से माटी कर उर्वरता कर सही आकलन करल जा सकेला, और माटी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और दूसर सूक्ष्म पोषक तत्व कर उपलब्धता कर जानकारी भेटायला। इकर से ई होवेला कि किसान भाई बहन मन जरूरत कर अनुसार उर्वरक कर प्रयोग कर सकेन। और सरकार भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसन योजना कर माध्यम से किसान मन के माटी जांच लगिन प्रोत्साहित करेला।
6: हाँ भाई, तो हमरे आसरा भाई बहन
7: आयदवती, आज हमरे जानकारी करब आज की बात में रामतिल जेके सरगुजा कहे ना, ओकर खेती और ओकर कीट प्रबंधन कर बारे में। कृषि विकास गीत सुनब बशीर अंसारी और संगीमन कर गावल, और नई उम्र की नई फसल में मधुमक्खी पालन कर बारे में हमरे जानकारी करब। इके हमरे केर एगो किसान है संतर सिंह, ई जानकारी देवन।
6: तो किसान भाई बहन मन अब कार्यक्रम के आगे बढ़ेला और आज की बात में जानकारी करीला रामतिल या सरगुज्जा कर खेती और उकर कीट प्रबंधन कर बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शांति कुरली और इनकर से गोठियाए हैं कृष्ण जीवन पौराणिक भाई।
7: किसान साथियों, आज की चर्चा एक ऐसी फसल पर है जिसे हम रामतिल या नाइजर के नाम से जानते हैं, और इसको हम सरगुजा के भी नाम से जानते हैं। यह कम लागत में कम पानी और कम उपजाऊ जमीन पर भी

0: बहुत अच्छा से होता है और इसका तेल सेहत के लिए तो वरदान है ही, बाजार में इसकी मांग भी हमेशा तेज रहती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर शांति कुरली, कनीय वैज्ञानिक, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची। डॉक्टर शांति, आपको नमस्कार है।
1: और सभी किसान भाइयों और बहनों को भी मेरा नमस्कार।
0: डॉक्टर शांति, आप हमारे किसान भाइयों, हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि रामतिल क्या है और यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है।
1: रामतिल एक तिलहन फसल है। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि जो सूरजमुखी का फूल होता है, जो फसल होता है, वो उसी का ही प्रजाति है। ये छोटा रूप है इसका, इसे हम सरगुजा भी कहते हैं। इसका तेल जो होता है, जिस तरह हम लोग सरसों का तेल हम अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसे भी हम उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में हम लोग मालिश के लिए, बच्चों के मालिश के लिए या बड़ों के लिए भी हम लोग इसे उपयोग करते हैं, उसी तरह इस सरगुजे के तेल को भी उपयोग करते हैं और खान पान में भी उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे कारखानों में, जैसे कि साबुन जहाँ बनता है और जहाँ ग्रीस बनता है, पेंट बनता है, ऐसे बहुत सारे कारखानों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
0: इसकी खेती के लिए किस तरह के मौसम और भूमि की आवश्यकता होती है, यानी कि हमारे किसान भाई इसकी खेतों की तैयारी कैसे करें?
1: ये हमारा जो सरगुजा का फसल होता है, बहुत तरह के, जैसे हमारे खरीफ फसल मुख्यतः इसके लिए हम लोग अपना खरीफ फसल ही से बोलते हैं, लेकिन ये जो है बहुत तरह की मिट्टियों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ये उगता है। जिस तरह की हम लोग का बालुई मिट्टी होता है, दोमट मिट्टी होता है, या तो कंकड़ वाला जो जमीन होता है, उसमें भी ये बहुत अच्छे से अपना फसल देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग 2 या 3 बार इसको जुताई कर लें, उसके बाद उसके ऊपर पाटा चला लें, ताकि वो जितना भी हम लोग का बड़ा जो कंकड़ पत्थर है या तो फिर जो मिट्टी है, वो छोटे छोटे कणों में बढ़ जाए और भुरभुरा हो जाए। उसके बाद हम लोग उसमें जो हमारा गोबर का खाद होता है, उसका 10 टन प्रति हेक्टेयर हम लोग उसको डाल के उसको छोड़ दें। और उसके बाद हम लोग, जैसे कि हम लोग लाइन विधि से करते हैं, तो इसको लाइन विधि के लिए हमारा जो बीज का मात्रा होता है 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर के दर से आता है, और अगर हम छिड़काव विधि से करते हैं तो ये 8 किलोग्राम बीज पर हेक्टेयर की दर से आता है। और बुआई करें उससे पहले हम लोग को जरूरी है कि हम लोग इसका बीज उपचार जरूर कर लें।
0: जी जी, तो रामतिल की मुख्य किस्मों और पौधों के बीज कितनी दूरी रखनी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से हमारे किसान भाइयों को बताएं और इसके किस्मों के बारे में भी बताएं।
1: ये कम से कम 40% तक ये तेल पैदावार करता है। जब हम एक नई किस्में जो हमारे बिरसा एग्रीकल्चर के द्वारा जो बनाया गया है, उसके अलावा दूसरे और भी हमारे यूनिवर्सिटीज के द्वारा बनाया गया है, तो पहला जो हमारा किस्म है बिरसा नाइजर 1, और इसकी जो अवधि होती है हमारी 90 से 100 दिनों तक में ये पक के तैयार हो जाती है। जो तेल की मात्रा होती है 42% इसमें पैदावार मिलती है, और इसका जो पैदावार होता है 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार मिलती है। दूसरा हमारा जो किस्म है बिरसा नाइजर 2, इसकी अवधि है हमारे 100 दिनों से कम की है, उसी में हमारा पक्के तैयार हो जाता है, और इसकी जो तेल की मात्रा 40% तक होती है, और इसकी पैदावार जो होती है 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त होती है। तीसरा जो हमारा किस्म है वो बिरसा नाइजर 3, ये हमारे 105 दिन तक का किस्म है, और इसकी पैदावार 6 से 7 क्विंटल पर हेक्टेयर तक है। उसके बाद इसकी जो तिलहन की जो क्षमता है, तेल जो हमारा निकलता है, वो 40% होता है। सबसे ज्यादा जो हमारा बिरसा नाइजर 3 है, ये सूखी जगह, मतलब जब हमारा पानी बहुत कम हो जाता है, तो उसको भी ये सहन कर लेता है। बुआई के समय हम किस तरह से इसकी जो दूरी होनी चाहिए, कतार से कतार तक की दूरी हमारी 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम इसे अगस्त के महीने में लगा रहे हैं, अगर सितंबर माह में लगा रहे हैं, तो इसकी पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर की रहेगी, और जो कतार की कतारी वही 30 सेंटीमीटर की रहेगी।
0: रामतिल या सरगुजा, तो इसमें कितने तरह के कीट लगते हैं यार, और कौन कौन से कीट लगते हैं इसमें?
1: इसमें हमारे बहुत ज्यादा कीट का प्रकोप नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कीट भी हैं, अगर ये एक बार लग जाए तो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक तो होता है पत्ते खाने वाले और बीज खाने वाले, और दूसरे हैं जो रस चूसने वाले कीट। तो सबसे पहला हम लोग का जो है वो सरगुजा का टोडी की मक्खी, इसको हम लोग इंग्लिश में कैप्सूल फ्लाई कहते हैं। दूसरा का जो है बिहार हैरी कैटरपिलर बोलते हैं, जिसको हम लोग बिहार बालों वाला सुंडी कहते हैं। उसके बाद तंबाकू की सुंडी है ना, ये सब जो है हमारे पत्ते और बीज खाने वाले कीट हो गए। उसके अलावा हमारा जो रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो एक है माहू है, और एक गंधी कीड़ा होता है, उसके बाद है लीफ ओवर जिसे हम हरा तेला कहते हैं
0: जी। इस फसल में अलग अलग अवस्थाओं में किस तरह के कीट हमला करते हैं और हमारे किसान भाई उनकी पहचान कैसे करें?
1: जो हमारे रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं वो जब पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, पौधा जब निकलता है तो उसी समय से वो लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो रस चूसने वाले कीट होते हैं मुलायम पत्तों को, मुलायम पौधे के जितने भी ब्रांचेस है उसको वो चूसते हैं। उसके बाद हमारा सबसे पहला जो कीट है टोडी मक्खी है, इसका जो छोटा कीट होता है बीज के अंदर का पूरा गुदा खा लेता है, जिसकी वजह से भारी नुकसान होता है। उसके बाद हमारा जो है बिहार बालों वाला सुंडी जो होता है ये पूरी तरह से पत्तों को खा जाता है, और ये हम जब खेत में जाते हैं तो पौधे के जो पत्तों को देखते हैं बहुत ज्यादा इधर उधर से छेद किया हुआ जैसा लगता है, तो इससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि वो क्या है, ये एक सुंडी का प्रकोप है। जब हम लोग देखते हैं कि कुछ पत्ता है जालीदार हो जाता है तो वो भी हमारे जो है ये सुंडी की वजह से ही होता है। ये जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं ये कोमल पत्तियों में टहनियों में इसका रस चूसते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और इस तरह से वो मुरझा जाते हैं और आगे वो पैदावार नहीं दे पाते हैं।
0: तो इसमें समेकित कीट प्रबंधन कैसे करें?
1: हमारा सबसे पहले तो है बीज जब लगाते हैं उसी समय बीज का उपचार कर लेना चाहिए। उसके बाद जो हमारा पहला जो कीट आता है जो हमारा टोडी मक्खी है या तो फिर जो सुंडी है, उनके लिए हम लोग क्विनाल्फोस 20 EC जो कि हम लोग 1.5 ml/L ऑफ, हमारे जो पतंगे वाले कीड़े होते हैं उनके लिए हम लोग सबसे पहले जो है जितने भी टहनी को वो खा जाते हैं या तो पत्तियों को खा जाते हैं वैसे जो पत्तियां हैं या तो टहनी हैं उनको हम लोग निकाल लेंगे और उसको अलग उसको जला के हटा लेंगे, क्योंकि अगर ये पौधों में ही रहेंगे कीट का जो इनका लाइफ साइकिल चलता है, तो अंडा हुआ इसका लार्वा है ये इसी में रह जाते हैं तो आगे फिर नुकसान पहुंचाएंगे, इसीलिए इस तरह के पहले से जो टहनियां हैं उन सबको हटा लेंगे।
0: राम तिल की खेती के बारे में विस्तार से समझाया, अब हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इसकी कटाई और भंडारण कैसे किया जाता है?
1: जिस तरह हम लोग सरसों हुआ या सूरजमुखी का फसल होता है उसी तरह से ये भी हमारा जब फली जो होता है सूख जाता है, हल्का भूरा हो जाता है, उसका थोड़ा काला पड़ने लगता है, उसी समय हम इसकी भी कटाई कर लेते हैं और इसको धूप में सुखा लेते हैं, तब इसका ये सफाई उसका 8% इसका नमी होना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो कीट पतंगों का आक्रमण हमारा भंडारण में भी हो सकता है। जिसमें हम लोग भंडारण कर रहे हैं जैसे डब्बा हुआ या तो कोई बड़ा टीन हुआ, तो उसका हम लोग देखे ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग का ढक्कन होता है उसका वो बहुत हम लोग को टाइट रखना पड़ेगा अच्छे से वो, ताकि वो डब्बे में पूरी तरह से फिक्स हो जाए ताकि उसमें हम लोग का कीट पनपे नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शांति कुरली जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को राम तिल जिसे हम सरगुजा के भी नाम से जानते हैं इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों का प्रबंधन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई आपकी बातों को सुनकर लाभ उठाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: धन्यवाद।
2: तो किसान भाई बहन मन एखन हमरे मन जानकारी करत रही राम तिल यानी सरगुजा कर खेती और उकर कीट प्रबंधन कर बारे में। विशेषज्ञ रहे डॉक्टर शांति कुरली और इनकर से गोठियात रहे कृष्ण जीवन पौराणिक भाई।
0: अब कार्यक्रम के आगे बढ़ाते थे एगो गीत से बशीर अंसारी और संगी मनकर गावल है, आओ सुनी ले।
3: नवा नवा

कातियन खाले रे बिलाइत भाटा चटानी चीटुआ से बेक झोर रे चीटुआ से बिके झोर अरे बिलाइत भाटा चटानी चीटुआ से बेक।

0: ते जाए का दिन मा वतिया खाली हाथे जाए हरे खाली हाथे जाए एका दिन मा वतिया खाली हाथे जाए हरे खाली हाथे जाए एका दिन मा वतिया खाली हाथे जाए हरे खाली हाथे जाए।
1: गीत तो बड़ा नगद सुन वाली कृष्ण जीवन भाई
2: बड़ा बढ़िया रहे।
1: हाँ हाँ
2: बिलेती चटनी।

0: बनकर झोर है ने।
1: तीयन बनकर स्वाद भी आ गेलक मुँह में है नी। तो चलो अब आगे बढ़ीला और नई उम्र की नई फसल में मधुमक्खी पालन के बारे में जानी लग। किसान भाई हैं संतर सिंह और इनके से गोठियाए हैं कृष्ण जीवन पौराणिक भाई।
2: किसान भाई बहन मने खेती बाड़ी कर काम तो रन करवे करीला, संगे संगे गाय भैंस मुर्गी बतख मछरी ये सब कर भी पालन रन करीला और अपन आमदनी के बढ़ावी ला। लेकिन इकरे संगे एगो आमदनी बढ़ावे कर बहुत बढ़िया जरिया है मधु पालन। मधु खाएक में जितना बढ़िया लागेला उतने उकर में बहुत गुण भी पावल जाएला, जे सेहत कर खातिर बहुते लाभकारी होएला। मधु पालन करके रावण खेती बाड़ी कर संगे संगे ऊपरी आमदनी कर सकीला। यह मधुमक्खी पालन कर बारे में बतावे खातिर आज हमारे स्टूडियो में एगो प्रगतिशील किसान है संतर सिंह। संतर भाई रौर के जोहार कर थी।
3: जोहार भाई।
2: रौरे रहक वाला कहाँ कर
3: है? भाई मैं रहक वाला ग्राम लोखमहन कर है को बिलिंगमीरा पंचायत थाना पालकोट गुमला झारखंड कर। और काफी दिन से मैं मधुमक्खी पालन करो ना।
2: मधुमक्खी पालन रौरे कितना दिन से कर थी?
3: लगभग 15 साल से करते आओ थो।
2: 15 साल से रौरे मधुमक्खी के पालन कर थी है नी?
3: हाँ।
2: तो ये बताओ कि रौरे कहीं से प्रशिक्षण ले रही कि कैसे कैसे सीख ली?
3: शुरुआत में प्रशिक्षण नहीं ले रहो, अपन निजी अनुभवी ज्ञान से पालन करत रहो। लेकिन जे कृषि विज्ञान केंद्र है गुमला, उस संस्था के माध्यम से जानकारी होलक और 2018-19 ईस्वी सन में प्रशिक्षण लेकर हमरे मन के मौका मिललक। तो उस प्रशिक्षण में हमें भाग ले करके फिर मधुमक्खी पालन के डेवलपमेंट करक लेकिन और जानकारी अधिक होलक हमरे के।
2: मधुमक्खी पालन के जैसे शुरुआत रौरे कैसे कर ली?
3: मधुमक्खी पालन कर शुरुआत चलते फिरते हमरे मन के मधुमक्खी मिल जात रहे जंगल में। हमरे मन विचार कर ली कि इस मधु के हमरे अपन पालतू बनाती तो कैसे होतक। इस विचार के हमरे मन मंथन कर ली और मधु कर झुंड के लाने कर प्रयास कर ली। और लगभग पहले हमरे मन के मौन पेटी कर ज्ञान नहीं रहे तो गगरी में पाले शुरू कर ली। लेकिन उकर में हमरे मन के कमी ये होलक कि छत्ता बिगड़ा पड़त रहे और एक वर्ष में लगभग 2 बार निष्कासित करे होत रहे। उकर बाद में फिर हमरे और डेवलपमेंट कर मुद्दा में आली तो बक्सा कर निर्माण कर ली मौन पेटी कर। उकर में फ्रेम सजाल गेलक और छत्ता के फ्रेम में सजाई करके और मौन पेटी में उके डाल के फिर मधुमक्खी के पालन करे शुरू कर ली। तो उकर में छाता बर्बाद नहीं होएला।
2: जंगल झाड़ लता मन में जो मधु रहेला
3: हाँ हाँ
2: ये सब के रौरे लाइन के और बक्सा में रख ली है नी?
3: हाँ हाँ।
2: तो एखन रौठन कितना बक्सा है?
3: एखन घटते बढ़ते रहेला, कभी 20-22 कर संख्या में हो जाएला मोन पेटी। और कभी बरसात कर मौसम में कभी जे के मक्खी मर जाए ना या तो भाग जाए ना, तो इस वजह से अभी वर्तमान में करीब 20-25 पेटी हमर मनक समूह में आए।
2: मधुमक्खी कर जैसे बक्सा कर बात कर ली, कैसे कैसे बक्सा लान ली और कैसे कैसे उकर प्रबंधन कर ली से कर बात?
3: पहले मौन पेटी कर ज्यादा ज्ञान नहीं रहे लेकिन प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केंद्र गुमला ट्रेनिंग दिलक। तो उस ट्रेनिंग कर दौरान में हमने मन के 15-20 भाई मन ट्रेनिंग कर ली। उकर में से फर्स्ट पीरियड में हमने मन के 4-4 मौन पेटी दिलाए तो उसी आधार पर हमरे मन मौन पेटी कर निर्माण कर ली। और पावल कर बाद में फिर उसे क्वालिटी कर बनवाई के और उकरे में पालन कर चालू कर ली। मौन पेटी के बनाए के वास्ते पटरा फाड़ के लकड़ी के चिरवाई के पटरा बनाई के फिर उकर जे साइज बाई साइज मौन पेटी कर तैयार करल गेलक। उकर बाद उके पाले चालू कर ली।
2: बक्सा में जैसे रौरे मधुमक्खी पालत थी तो ये बताओ कि मधुमक्खी कर कई गो किस्म हुए?
3: मधुमक्खी कर जो प्रजाति है मुख्य रूप से 4 प्रकार कर मधुमक्खी पावल जा है। लेकिन हमर मनकर भारतीय जो मधुमक्खी है जो 3 प्रकार कर मधुमक्खी है उके पालतू नहीं बनाए बनेला, जेके भावरा कहिला उके पालतू नहीं बनाई सकीला। उकर बाद में और एक दो मधुमक्खी है उके भी पालतू नहीं बनाई जा सकेल। लेकिन खैरा मधुमक्खी है जे गुफा कर अंदर में माड़ा कर अंदर में या तो ढोढ़ी में रहेला, वो मधुमक्खी के पालतू बनाए के लिए आसानी से बनेल।
2: मधुमक्खी कर परिवार कर रचना कर बारे में कुछ

0: बताए शकील।
1: मधुमक्खी का रचना है जे रानी मधुमक्खी है ला बड़ा संख्या जे एक परिवार में एक ही मधुमक्खी का रानी रहेला और उकर साथ में सैनिक मधुमक्खी रहेला जे अपन समूह के देख रेख के लिए दरवाजा पास रहेना। कोई क्षति करे के योग्य कोई जंतु है उकर अटैक करेल। और तीसरा है श्रमिक मधुमक्खी जे फूल से पराग रस लाने में वो काम करेला।
0: बरसात के समय में मधुकर पालन कैसे करे चाहिए?
1: बरसात कर समय में मधुकर पालन विशेष खास करके 3 महीना बहुत गहन उकर लगिन साधन जुटाए पड़ेला। बरसात कर सीजन है पानी जब पड़ेला तो मधुमक्खी कभी नहीं निकलेन। निकलने कर कारण यह है कि उकर लेकिन खाए कर जोगाड़ करे पड़ेला। तो उकर खाए कर जोगाड़ यह है कि चीनी कर इस्तेमाल करल जाला। चीनी कर चाशनी बनाई के ठंडा करके और कुछ गुनगुना अवस्था में मौन पेटी में ही छत्ता के ऊपर डाल देवे खोल तो उकरे से उमन कर भोरण पोषण हैला। उकर से उमन के आहार प्राप्त होला।
0: मधुमक्खी में कुछ रोगमन भी लागेल का?
1: हाँ रोग मन लागेल।
0: का रोग लागेल और इकर उपचार कैसे करे चाहिए सके किसान भाई बहन उनके बताए?
1: इकर में कुछ ऐसा समय आवेल जे बरसाती समय पार होला उकर बाद में ठंडक समय आवेल उस समय में जलिया वाला कीड़ा हो जाएला छत्ता के बर्बाद करेल। तो उस समय कर अवस्था में हमरे मन जो उपयोग करिल छत्ता के निष्कासित करके या तो फ्रेम बदले पड़ेल और नहीं तो एक कीटाणु मार दवाई आवेला जो सहज रूप में मिलेल। कीटाणु मार दवाई के देल जाएला है। ब्लीचिंग पाउडर कर भी इस्तेमाल कर सकीला। उके ब्लीचिंग पाउडर के चीनी कर चाशनी कर रूप में निर्माण करके और ब्लीचिंग पाउडर के कुछ घोल के और उकर साथ में मिलाई के और मधुमक्खी के देल कर बाद में फिर जे कीड़ा कर संख्या है धीरे धीरे कम हो जाएला।
0: किसान भाई बहन मने एखन रावन सुन ली मधुमक्खी पालन कर बारे में संतर सिंह जी से। मधुमक्खी कर पालन करू, खेती बाड़ी कर संगे संगे अपन अतिरिक्त आमदनी के बढ़ाऊ। संतर भाई, किसान भाई बहन मन के मधुमक्खी पालन कर बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दिली, इकर खातिर और के बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
1: जोहार भाई जोहार।
2: जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी का कार्यक्रम हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी की डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं और अब आइए सुनते हैं युवाओं को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। और आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार जोहार। आज किस खेती बाड़ी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे साग की खेती में आमदनी, साथ ही साथ सुनेंगे पशुओं का टीकाकरण। और इसी कार्यक्रम के कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी बरवाड़ी लातेहार के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है पशुधन क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आइए आगाज करते हैं और जानते हैं साग की खेती से आमदनी। जी हाँ श्रोताओं, साग की खेती कम लागत कम समय में आमदनी प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है और इसमें पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, चौलाई, धनिया पत्ता, सोया जैसे कई प्रकार के सागों की बाजार में जो है मांग लगातार बनी रहती है। इन फसलों की स्रोतों खासियत यह है कि इन्हें कम भूमि में भी उगाया जा सकता है। अधिकांश साग की फसलें जो है वो प्रायः 20 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है। इसलिए छोटे और प्रायः जो भी सीमांत किसान हैं वो साग की खेती कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। साग की खेती के लिए उपजाऊ भुरभुरी तथा अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी श्रोताओं सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि खेत में पानी का जमाव ना हो सके। प्रायः साग वाली फसलें जो है वो ठंडी और सामान्य जलवायु में ज़्यादा होती है। पालक और मेथी की खेती विशेष रूप से रबी के मौसम में अच्छी होती है। वहीं चौलाई और अन्य कुछ साग जो है गर्मी तथा वर्षा के समय में उगाई जाती है। सोचा हूँ इसकी खेत की

तैयारी की भी हम बात कर ले। तो बुआई से पहले खेत के अच्छी तरीके से जुताई कर कर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। खेत में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है और आवश्यकता

पालक और मेथी इस प्रकार की जो साग है श्रोताओं, ये पहली कटाई लगभग 20 से 30 दिनों में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जी श्रोताओं, साग की पहली कटाई आप 20 दिन के पश्चात आप कर सकते हैं। साथ ही साथ उचित प्रबंधन करने पर एक ही खेत से कई बार कटाई कर सकते हैं। इससे किसान भाई को एक बार फसल लगाने के बाद लगातार बाजार में साग बेचने का भी आपको अवसर मिलते रहेगा। यानी एक बार लगाइए और उसे बार बार काटते रहिए। साग की खेती में आमदनी, भूमि, मौसम, किस्म, उत्पादन लागत और बाजार भाव सभी कुछ आमदनी पर निर्भर करता होता है। यदि एक एकड़ भूमि में पालक या मेथी की खेती करते हैं तो बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी, निराई गुड़ाई, कटाई सहित करीबन 15,000 से 30,000 रुपये तक लागत आ सकती है। जबकि अच्छी फसल और अच्छे बाजार भाव में इसकी बिक्री से आपको काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। कई क्षेत्रों में किसान भाई स्थानीय बाजारों में ताज़ा साग सीधे बेचकर थोक बिक्री की तुलना में बेहतर मूल्य को प्राप्त करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, हमारे किसान भाई कई बार स्थानीय बाजार में खुद से लाकर बेच देते हैं, इससे उन्हें ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि बाजार में भाव का जो है वो उतार चढ़ाव बना रहता है, अनुमानित कीमत के आधार पर तय लाभ जो है वो तय नहीं हो सकती है, परंतु उत्पादन से पहले यदि स्थानीय मंडी, सब्जी बाजार, होटल या खुदरा विक्रेता से संभावित बिक्री की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसान भाई यदि पूरे खेत में एक साथ साग की बुआई करने के अपेक्षा 7 से 10 दिन के अंतराल पर अलग अलग हिस्सों में बुआई करते हैं तो हर सप्ताह कुछ दिनों के अंतराल पर तैयार साग आपको प्राप्त हो सकता है। जी हाँ श्रोताओं, एक ही साग को जो है एक ही बार में पूरे खेत में इसकी बुआई ना करें, एक भाग में आज कर ले तो कुछ भाग में 5 दिन 7 दिन के पश्चात करें, उसके बाद फिर पुनः 5-7 दिन के पश्चात करें। तो इससे क्या होगा कि आपको हर एक दिन किसी न किसी हिस्से से तैयार साग की प्राप्ति होते रहेगी श्रोताओं। इससे बाजार में आपकी आपूर्ति भी बने रहेगी और पूरी की जो पूरी फसल है वो भी खराब होने का इसका जो जोखिम है श्रोताओं वह कम हो जाता है, क्योंकि साग प्रायः जल्दी खराब होने वाली फसल है, उपज है। इसलिए कटाई के पश्चात इसे अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता है, बाजार में पहुंचाना ही लाभकारी होता है। किसान भाई या तो स्थानीय जो भी बाजार है, मंडी है, सब्जी दुकान है या होटल या कैंटीन में भी सीधे उपभोक्ता को ये साग बेचकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसमें साग को साफ सुथरे तरीके से बंडल बनाकर और पानी का हल्का छिड़काव करके ताजगी बनाए रखने से इसका मूल्य भी या इसका भाव भी श्रोताओं काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हालांकि अगर आप साग की खेती कर रहे हैं तो लागत को भी कम किया जा सकता है। जी श्रोताओं, इसमें खेत में गोबर और जैविक अवशेषों से कंपोस्ट को तैयार कर इसका छिड़काव करें, रासायनिक उर्वरक का छिड़काव न करें। सिंचाई के लिए ड्रिप या स्प्रिंकल विधि का उपयोग करें, इससे पानी की भी बचत हो जाती है। खरपतवार जो नियंत्रण है उसे भी समय पर करें तो मजदूरी जो है वो कम हो जाती है। साथ ही साथ रोगों और कीट की जब स्थिति लगे तो ऐसे में जैविक या एकीकृत कीट प्रबंधन को उपाय को प्राथमिकता दे। तो कोशिश करें श्रोताओं कि रासायनिक दवाओं का, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल की अपेक्षा जैविक कंपोस्ट, जैविक कीटनाशक का उपयोग करें तो निश्चित रूप से इसमें जो लागत है वह कम हो जाती है और मुनाफा भी आपको बेहतर मिलता है। साग की खेती के साथ साथ अन्य सब्जी की भी आप खेती कर सकते हैं, इससे भूमि का बेहतर उपयोग भी होता है। खेत के एक हिस्से में पालक तो दूसरे हिस्से में मेथी, तीसरे हिस्से में धनिया लगाएं, इससे अलग अलग समय पर फसल भी तैयार होती है, बाजार भाव गिरने पर भी कहीं ना कहीं पूरी आय आपकी जो है वो प्रभावित नहीं होती है। श्रोताओं, अगर पालक की बाजार गिर गए हैं तो आप मेथी के उपयोग से आप लाभ ले सकते हैं। तो देखा जाए श्रोताओं।

0: साग की खेती हमारे छोटे किसान भाई के लिए कम अवधि, कम लागत और जल्दी बिक्री वाला एक कृषि गतिविधि हम इसे कह सकते हैं है। और हमारे किसान भाई यदि अच्छी गुणवत्तापूर्ण बीज का चयन करते हैं, उचित खाद का उपयोग करते हैं, समय पर सिंचाई कटाई करते हुए बाजार में बेचने के लिए इसकी व्यवस्था बनाते हैं, तो निश्चित रूप से कम समय कम भूमि में नियमित नगद आय प्राप्त कर सकते हैं। और स्वतः यदि गांव के आसपास शहर हो या स्थानीय बाजार हो तो वहां पर ताजा साग की बिक्री हो सकती है और इससे कहीं ना कहीं आपको ज्यादा लाभ की भी प्राप्ति हो सकती है। तो निश्चित रूप से स्वतः यदि आपके पास छोटे से भी जगह हो तो वहां पर भी आप साग की खेती कर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो श्रोताओं ये तो थी बातें साग की खेती में आमदनी, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है पशुधन क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: लातेहार जिला के बरवाडी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की। कुछ ऐसे पशु जिनको पालने से हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, उनकी बीमारियों से संबंधित बातें करेंगे। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि ये पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड क्या है।
2: पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड उन पशुपालकों के लिए है जो पशुपालक अपनी आर्थिक कमजोरी के कारण अपने पशुओं को ठीक से भोजन नहीं करा पाते हैं या बीमा नहीं करा पाते हैं या अपना घर सही से नहीं बना पा रहे हैं, तो उनके लिए भारत सरकार की एक योजना आई है कि वो जो है इसको 7% इंटरेस्ट है, जिसमें 3% इंटरेस्ट का भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 3% झारखंड सरकार वहन करेगी। अंतिम में 1% मात्र ही इंटरेस्ट जो है वो पशुपालक देंगे। इससे किसान पशुपालकों को ये फायदा होगा कि अगर वो गाय रखे हुए हैं तो उन्हें 20,000 रुपये प्रति गाय कर करके ये ऋण मुहैया कराई जाएगी। वो 3 महीने तक गाय को खाना खिलाने के बाद उससे दूध उत्पादन बढ़ेगी और उससे आमदनी करके इसको 10 महीने के अंदर अगर वो चुका देते हैं तो उन्हें मात्र 1% इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 3% झारखंड सरकार देगी, 3% भारत सरकार देगी। इस तरह से हरेक जिले में गढ़वा पलामू लातेहार तीनों जिलों में योजना चलाई जा रही है पशुपालकों के लिए। इस तरह से पशुपालक चाहें तो जो मुर्गी रखे हुए हैं वो भी खास करके मांस वाली मुर्गी रखे हुए हैं तो एक लॉट निकालने में करीब करीब 500 मुर्गियों को निकालने का खर्च 60,000 रुपये होता है, तो उन्हें 60,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से कोई पशुपालक अगर 400 अंडे देने वाली मुर्गियां रखी हैं तो उनके लिए खर्च करीब 1.5 लाख रुपये आते हैं, तो उन्हें 1.5 लाख रुपये की सहायता ऋण राशि इससे मुहैया करा जा सकती है। इसी तरह से 4 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 25,000 और अगर 10 बकरी 1 बकरा रखे हुए हैं तो उन्हें 50,000 रुपये और शुकर अगर रखे हुए हैं 4 मादा शुकर 1 नर शुकर तो उन्हें 50,000 रुपया, 1 गाय या भैंस पर 20,000 रुपये, 5 गाय पर करीब आपको 1 लाख रुपये और 10 गाय या भैंस है तो आपको 2 लाख रुपये तक की ऋण राशि मुहैया कराई जा सकती है।
1: और इसका भुगतान का प्रक्रिया कैसे?
2: इसकी भुगतान की प्रक्रिया है कि आप 10 महीने के अंदर अगर इस लोन को और उसका इंटरेस्ट जमा कर देते हैं तो जो आपका किसान क्रेडिट का लिमिट है जो भी 25,000 किसी के लिए है या 50,000 रुपये है
1: तो उन्होंने निर्धारित किया है
2: तो अगर सही उनका साख बना रहेगा तो अगली बार जो है उससे ज्यादा रकम वो निकालेंगे और उससे अपना व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: और इसमें किसान जो हैं या फिर जो पशुपालक भाई जो हमारे हैं उनका क्या कवरेज दिया जाता है?
2: किसान को अपना 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगाना पड़ेगा और जिस बैंक में उनका खाता है, खास करके जिस जिले में आप हैं उस जिले के अपना खाता रखें और उसका बचत खाता का फोटोकॉपी और जो आपका शेड है, गाय शेड हो सकता है, बकरी शेड हो सकता है या शुकर शेड हो, मांस वाली मुर्गी के लिए मुर्गी शेड हो, उसके साथ अपना एक फोटोग्राफ्स कि आप वो व्यवसाय कर रहे हैं, गौशाला जिस पर बनाया हुआ है उस जमीन का रसीद अगर लगा करके किसान भाई वोटर कार्ड और आधार कार्ड अगर लगा देते हैं तो उन्हें वो बैंक के द्वारा एक आवेदन लगभग सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी और प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पास एक 9 पेज का आवेदन उपलब्ध है। उस आवेदन पत्र में भर करके इतने कागजात लगा करके वो अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को देंगे। प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी द्वारा ये संकलित आवेदनों को जिला के जो LDM लीड डेवलपमेंट मैनेजर जो होते हैं उनके पास ये प्रत्येक शुक्रवार को ये आवेदन दिया जाता है और 15 दिनों के अंदर बैंकों की जवाबदेही तय की गई है कि वो किन कारणों से किसी आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं, उसे लिखित रूप में वो एलडीएम को सूचना देंगे और वो एलडीएम के द्वारा वो सूचना जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी और जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी को बताएंगे कि आपके इतने आवेदन पर जो है आपको आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, उन्हें आवेदन स्वीकृत कर दिया गया है। इस तरह से उनके खाते में ये पैसा चला जाएगा। इस पैसे को खर्च करने के लिए उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है, वो अपने ढंग अपने हिसाब से खर्च करेंगे और जब उससे लाभ होगा तो 10 महीने के अंदर उस पैसे को जो सूद निर्धारित है उसके साथ जमा कर देंगे, तो उससे उनकी साख बनी रहेगी और किसान भाइयों को आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा।
1: जी, और किसानों का क्या कवरेज दिया जाता है जैसे उनके एक्सीडेंटल केस वगैरह?
2: एक्सीडेंटल केस के लिए नहीं है, ये जो योजना हम उपलब्ध करा रहे हैं इसका उपयोग पशुपालक अपने पशुओं को भोजन कराने के साथ, पशुओं की चिकित्सा कराने के लिए, अपने पशुओं को बीमा कराने के लिए ये पैसा दी जाती है। इससे फायदा ये होगा कि अगर बीमा कराए हुए हैं अपने पशुओं का और उनकी मृत्यु होती है तो संबंधित बीमा कंपनी उन्हें इस पैसे का भुगतान करेगी। जैसे सपोज करिए कि कोई गाय 50,000 रुपए का इंश्योरेंस है और वो गाय बीमार है, उन्होंने पशु चिकित्सक से इलाज करवाया फिर भी गाय मर गई, तो उन्हें चाहिए कि तुरंत अपने बीमा कंपनी को सूचना दें और उस डॉक्टर को सूचना दें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट उस कंपनी को जमा कर दें, वो कंपनी जो है इन्हें जो बीमा की रकम है उनके खाते में हस्तांतरित कर देगी।
1: अब हम आते हैं पशुओं के टीकाकरण से संबंधित बातों पर। बहुत सी कुछ खास बीमारियां भी हैं जो हमारे जो पशुधन हैं उनको प्रभावित करती हैं बीमारियाँ।
2: बिल्कुल सही आपने कहा कि पशुपालक भाइयों को जो बड़े पशु रखे हुए हैं गाय या भैंस उनमें 3 बीमारियां प्रमुख रूप से है। एक जो हमारे किसान भाई जानते हैं गलगटिया, दूसरा टंगर फुलवा और तीसरा डकहा कहते हैं। अच्छा। और जब भी आप टीका लगवाएंगे तो 14 दिन के बाद जो पशु इम्यूनाइज हो जाएंगे, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बकरी पालक भाइयों के लिए है PPR नाम की बीमारी, जिसमें कि बकरियों में सर्दी हो जाती है, जबड़े में घाव हो जाएगा और आँख से आंसू आएगा, फिर पतला दस्त होता है, बकरियाँ मरने लगती हैं, इन्हें PPR कहते हैं। इस PPR बीमारी का जो है टीका साल में एक बार कराना चाहिए। और इसके साथ एक दूसरी बीमारी है, इसका नाम इंट्रोटॉक्सिमिया है। इसमें बकरियाँ कुछ मौका नहीं देती है, पता भी नहीं चलता है, ऑल ऑफ सडन बकरियाँ मरने लगती हैं। अच्छा। तो इसमें इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन लगभग सभी जिलों में झारखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। किसान भाई अपने जिला पशुपालन पदाधिकारी और नजदीकी प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, साथ में जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ पर जो पदाधिकारी उपस्थित हैं उनसे संपर्क करके वो इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीन दिलवा सकते हैं। और PPR वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हैं। 100 बकरियों के वैक्सीन का कीमत बाजार में लगभग 450 रुपये है। पशुपालक भाई उसे खरीद करके अपने पशुओं को दिला सकते हैं। इसके साथ ही वैसे पशुपालक जो शुकर पालन किए हुए हैं उन्हें भी चाहिए कि अपने शुकरों के लिए, उनमें शुकर ज्वर नाम की एक बीमारी होती है, उस बीमारी में शुकर जो है तेज बुखार होगा, खाने में अरुचि होगी, गंदा दस्त होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, चलने में डगमगाहट रहती है, शरीर पर लाल पीले रंग के धब्बे निकल आते हैं और ये शुकर जो है 2 से 3 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि अपने पशुओं को बचाने के लिए, शुकर ज्वर का अंग्रेजी में स्वाइन फीवर कहते हैं, आप झारखंड सरकार के द्वारा भी कुछ प्रखंडों में स्वाइन फीवर टीका उपलब्ध कराया गया है, वहाँ से वो टीका प्राप्त कर लगवाएं या बाजार में जो है ये टीका उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी जो भी दवा दुकान है वहाँ पर आप बोलें कि स्वाइन फीवर या शुकर ज्वर के हमको टीका चाहिए, तो 10 पशुओं का एक साथ टीका आता है जिसका कीमत थोड़ा ज़्यादा है, 700 रुपये। तो आपके पास अगर 10 पशु हैं या नहीं हैं तो आप आपस में मिल करके 10 पशु के लिए टीका एक साथ लें और 10 पशु में टीका लगा दें, तो आपको ये शुकर जो बहुत जल्दी मर जाते हैं उन्हें ये बीमारी नहीं लगेगी और वो एक साल तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। और दूसरी शुकर में खुरहा चपका का वैक्सीन भी साल में 2 बार लगवाना चाहिए। अगर ये 2 टीके हमारे शुक्र पशुपालक लगाते हैं तो उनके शुक्र स्वस्थ रहेंगे और इससे उनको मुनाफा हो।
1: और कोई ऐसी बातें जो छूट रही हो?
2: इसी तरह से मुर्गी पालकों से अनुरोध है कि जो मुर्गी पालक भाई देसी मुर्गियों का पालन कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं अपने व्यवसाय को, तो उन्हें चाहिए कि जब भी देसी मुर्गी रखें तो कम से कम रानी खेत का जो 3 टीका है वो जरूर दिलवाएं। जो टुनकी से आप लोग परिचित हैं उसमें भी अकस्मात मुर्गियां मरने लगती हैं, उसमें आप चाहिए कि रानीखेत का पहला टीका का नाम F1 स्ट्रेन है, जो कि हम लोग 4 से 10 दिनों के अंदर आँख में या नाक में एक एक बूंद देते हैं। दूसरी जो है दवा वो 21 दिन पर है, R2B वैक्सीन, उसे

0: पानी में घोल देते हैं, सुबह तक पानी नहीं पिलाते हैं, दोपहर में पानी पर छोड़ते हैं दवा मिली हुई पानी में, तो मुर्गियां पानी पी लेती हैं, उस तरह से दूसरा खुराक उनका हो जाता है। और तीसरी जो सुई है वो लसोटा, लसोटा जो है उनको सभी को हम एक एक एमएल की सुई आती है जो प्रत्येक मुर्गी को देना होता है। दूसरा उन्हें फाउल पॉक्स की वैक्सीन 2 महीने पर एक बार दी जानी है। अगर इतना पशुपालक भाई अपने मुर्गी पालकों के लिए इतनी वैक्सीन का इंतजाम कर लेते हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी और उन्हें अपने व्यवसाय में सिर्फ लाभ ही लाभ होगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो थोड़े पैसे, क्योंकि वैक्सीन का दाम जो है बहुत कम होता है, आप देखेंगे तो मुर्गियों में ये 20 से 25 पैसे हैं, गायों में जो है वो 10 रुपये 15 रुपये आ रहा है। खुरा चपका का वैक्सीन थोड़ा महंगा है, 30-35 रुपये। शुक्र का वैक्सीन जो है एक का बाजार से खरीदेंगे तो 70 रुपये, लेकिन सरकार के यहाँ से वैक्सीन आप प्राप्त करेंगे तो आपको निःशुल्क ही ये सारे वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे।
1: आप थे लातेहार जिला के बरवाड़ी प्रखंड के प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित जानकारियां साझा की, पशुओं की बीमारियां से बचाव की जानकारियां साझा की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। हर श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी बरवाड़ी लातेहार के डॉक्टर प्रमोद कुमार से की भेंटवार्ता। विषय था पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और श्रोताओं, ये जानते हैं पशुओं का टीकाकरण। जी हाँ श्रोताओं, पशुओं का टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। और यदि देखा जाए तो पशुधन जो है हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर के साथ साथ अन्य पशु जिनसे हमें दूध, मांस, ऊन और अन्य उत्पाद की चीज प्राप्त होते हैं। पशुओं को स्वस्थ रखना प्रत्येक पशुपालक की जिम्मेदारी है। पशुओं को संक्रमण या गंभीर बीमारी से बचाने के लिए समय पर टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय में से एक है। टीकाकरण से पशुओं में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है और बीमारी फैलने की संभावना भी स्वतः कम हो जाती है। पशुओं में कई संक्रामक रोग तेजी से फैलते हैं, इनमें कुछ रोगों के कारण पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है और इससे हमारे कहीं ना कहीं पशुपालक को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए श्रोताओं, नियमित टीकाकरण से पशुओं को गंभीर बीमारी से बचाने में मदद मिलती है। साथ ही साथ बीमारी के कारण दूध उत्पादन में कमी, वजन का कम होना, प्रजनन क्षमता प्रभावित होना और उपचार जैसे चीजों पर भी अतिरिक्त खर्च की समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए श्रोताओं, इन्हें नियमित टीकाकरण कराना चाहिए, जिसमें कि प्रमुख टीके और रोग में गाय और भैंस में श्रोताओं खुरपका, मुंहपका जिसे FND कहते हैं, एक महत्वपूर्ण संक्रमण रोग है। इसके नियंत्रण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टीकाकरण कराएं। गलघोटू, HS और ब्लैक क्वार्टर BQ जैसी बीमारी से बचाव के लिए भी चिकित्सक के सलाह के अनुसार टीका लगाते रहें। बकरियों और भेड़ों में PPR, पेस्ट डेस, पेरेंट्स, रूमेंट्स जैसे गंभीर बीमारी होते हैं तो इसका उपाय टीकाकरण है श्रोताओं, और स्थानीय पशुपालन विभाग के द्वारा इस टीकाकरण का फायदा ले सकते हैं। पशुओं में रेबीज जैसी बीमारी से बचाव के लिए भी टीकाकरण उपलब्ध है, और सुअरों में भी कई प्रकार के संक्रमण रोग होते हैं, इसके बचाव के भी टीकाकरण उपलब्ध है। तो इन टीकाकरणों का नियमित और ससमय उपयोग करते रहे। हालांकि बछड़े, बच्चियां, मेमने और छोटे बच्चों में भी टीकाकरण की शुरुआत जो है वो उम्र के अलग अलग होती है, तो इन्हें भी टीकाकरण करवाएं और इनके टीकाकरण की तारीख का रिकॉर्ड भी जरूर रखें। और श्रोताओं, टीकाकरण से पहले कुछ बातों का भी सावधानियां रखें। बीमार, कमजोर या तेज बुखार वाले पशुओं का टीकाकरण करने से पहले पशु चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। टीका लगाने से पहले पशु की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति की भी जांच करा लें। गर्भवती पशुओं के संबंध में भी टीका लगाने से पहले चिकित्सक सलाह लेना जरूरी हो जाता है श्रोताओं, और प्रत्येक पशु के टीकाकरण का रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड में पशु की पहचान, टीके का नाम, टीकाकरण की तिथि और अगली खुराक की संभावित तिथि भी उसमें लिखी रहे, इससे अगला टीकाकरण समय पर कराने में सुविधा हो जाती है श्रोताओं। और साथ ही साथ टीकाकरण के साथ साथ जहाँ भी आप रखते हैं पशुओं को, वो जगह साफ सुथरा और हवादार रखें। पीने का पानी जो है वो साफ दे।

0: पशुओं को संतुलित आहार दें, तभी हम पशुओं को सुरक्षित रख पाएंगे श्रोताओं, और इनका बेहतर हम इनसे लाए आय की भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो पशुओं का नियमित समय पर टीकाकरण, पशुओं में होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। पशुओं में कई गंभीर संक्रामक रोग के विरुद्ध सुरक्षा विकसित करने में यह टीकाकरण जो है वो सहायता करती है। प्रत्येक पशुपालक को अपने क्षेत्र के पशु चिकित्सक, पशुपालन विभाग या अधिकृत जो भी पशु स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे संपर्क करें और अपने पशुओं के लिए निर्धारित टीकाकरण कार्यक्रम का पालन करें। टीकाकरण के साथ साथ स्वच्छता, पौष्टिक आहार, साफ पानी और उचित पशु प्रबंधन को अपनाएं, जिससे कि हमारा स्वस्थ पशुधन और बेहतर आय सुनिश्चित हो सके। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें कि पशुओं का टीकाकरण और इस टीकाकरण से हमें क्या क्या फायदे प्राप्त होते हैं। तो श्रोताओं, नियमित रूप से पशुओं का टीकाकरण जरूर कराएं और इन्हें अच्छे साफ सुथरे बाड़ा में ही रखें। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें पशुओं का टीकाकरण, और अब हम आपको बता दें चलते चलते डाल्टनगंज का आज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का जो प्रतिशत है वो 67 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज के इस खेती बाड़ी कार्यक्रम से अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: क्या बात है सुनीता, बहुत परेशान लग रही है।
2: बहन, मेरी बिटिया का बुखार उतर ही नहीं रहा और आज गांव का चिकित्सा केंद्र भी बंद है।
1: अरे बहन, परेशान मत हो, 104 नंबर डायल कर, जहां तुझे मिलेगी प्रशिक्षित सलाहकारों से चिकित्सा सलाह।
2: बहन, पर इतनी रात में कौन बात करेगा इस नंबर पर?
1: अरे झारखंड सरकार की ये 104 स्वास्थ्य हेल्पलाइन तो 24 घंटे खुली है।
3: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन, किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाएं स्वास्थ्य जानकारी।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
5: हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं ताकि जो हमको ना मिला वो इनको मिले।
6: बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान, बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल की IUCD
7: कंडोम,
6: गर्भ निरोधक गोलियां,
8: खुशी का मंजर रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
7: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
9: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा यात्रा पहुंची गुमला। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया स्वागत। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राशन डीलरों की सुनी समस्याएं, मांगों पर जल्द समाधान का दिलाया भरोसा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फुटपाथ दुकानदारों के बीच कैनोपी अम्ब्रेला का किया वितरण, कहा रेहड़ी पटरी वाले अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा। सीईओ के रवि कुमार ने एसआईआर को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा। 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश। और एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर जीता स्वर्ण पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत। रांची में राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता शुरू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा यात्रा के आज गुमला जिले के जारी प्रखंड के कमलपुर पहुंचने पर स्वागत तथा अभिनंदन किया। इस दौरान जनजातीय संवाद का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी नेताओं ने जनजातीय समाज के उत्थान, सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहलों की सराहना की।
1: हमारी महिलाओं और बेटियों के लिए जिस तरह अलग अलग योजना के माध्यम से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो या आयुष्मान भारत योजना हो, आज बहनों को सशक्त करने का काम एसएचजी के माध्यम से बहनों को सशक्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। निश्चित रूप से हर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखते हैं एक अभिभावक के तौर पर।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सेवा सुशासन माह की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर श्री मरांडी ने बताया कि सेवा सुशासन माह के तहत 7 अक्टूबर को झंडा मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा।
2: 7 अक्टूबर को तय है कि सभी देश के जो शासकीय जिला है वहाँ एक बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। ज्योति यात्रा के साथ लोग पहुँचेंगे और देश के प्रधानमंत्री एक ही जगह से वो संबोधित करेंगे और सभी जगहों पर हमारे कार्यकर्ता जनता उसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे।
0: राज्य स्तरीय फेयर प्राइस शॉप डीलर संघ की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक हुई। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैठक में राज्य भर के

0: राशन डीलरों की समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि डीलर संघ की मांगों को लेकर विभाग गंभीर है और जल्द ही उसका समाधान निकाला जाएगा।
1: पूरे राज्य के फेयर प्राइस डीलर्स यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। स्मारक पत्र हमारे हाथ में है, 8 पॉइंट्स पर इन लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं। मैं माननीय मंत्री श्री इरफान जी के सामने उनसे बात करूंगा, उनके साथ इन 8 बिंदुओं के समस्या के निराकरण के लिए पहल करूंगा। जरूरत पड़े तो कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इनकी समस्याओं से अवगत कराऊंगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज राजधानी में फुटपाथ दुकानदारों के बीच कैनोपी अम्ब्रेला का वितरण किया। रक्षा मंत्रालय के उपक्रम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE के CSR के तहत कैनोपी अम्ब्रेला उपलब्ध कराए गए हैं। इस मौके पर श्री सेठ ने कहा कि रेहड़ी पटरी वाले देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2: प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि समाज के हर अंग को ध्यान देना, और रेहड़ी पटरी वाले जो देश की आर्थिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है, क्योंकि बिना रेहड़ी पटरी वालों के हम किसी बाजार की कल्पना नहीं कर सकते। हमको सब्जी खरीदना है, फल खरीदना है, हमको चाट खाना है, तो रेहड़ी पटरी वाले, ये हमारी भारतीय संस्कृति है रेहड़ी पटरी। आज कोई भी ऐसा नगर नहीं है देश के अंदर जहाँ रेहड़ी पटरी वाले नहीं है।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने आज लोहरदगा के कुडू में आयोजित प्रखंड स्तरीय जनजातीय संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के लोगों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं और जनजातीय समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी ली और अधिकारियों को समयबद्ध एवं विधिसम्मत समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति मोर्चा ने रनपास में स्थायी निदेशक की नियुक्ति, आउटसोर्सिंग व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में आज धरना दिया। मोर्चा के रांची जिला अध्यक्ष महेश कुमार मनीष ने मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज जिला निर्वाचन अधिकारियों ERO और AERO के साथ वर्चुअल माध्यम से SIR की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि SIR के तहत नोटिस की सुनवाई के दौरान अलग अलग दस्तावेज मांगने की आवश्यकता नहीं है। श्री कुमार ने पात्र नागरिकों को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए विशेष आउटरीच अभियान चलाने और 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं द बैंकिंग सेक्टर क्लीनअप यानी जनधन क्रांति की। आइए सुनते हैं इस योजना पर देश के प्रधानमंत्री का क्या विजन है।
3: देश के करोड़ों बहनें ऐसी थी जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था, वो बैंकिंग सिस्टम से कोसों दूर थी। इसलिए हमने सबसे पहले जनधन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान शुरू किया। आज देश में 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते हैं। इनमें से करीब 55% खाते हमारी माताओं बहनों के हैं।
0: प्रधानमंत्री के इसी विजन का असर धनबाद जिले में साफ दिख रहा है।
4: मेरा नाम महेंद्र पुरी है, हम धनबाद के रहने वाले हैं। मेरा जनधन का खाता 2017 में खुला है। जब से ये खुला है तब से बहुत आसानी हो गया है। ये सब चीज के लिए हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे।
5: हम याजाद योगी हैं, मैथन धनबाद में होटल लाइन में काम करते हैं। इससे पहले जब मेरा जनधन खाता नहीं था तो हमको बैंक में लाइन में खड़ा कर रहने में इतना परेशानी पता था कि मेरा काम बाधित हो जाता था। लेकिन जब से जनधन खाता खुला है तब से मेरा सारा काम ऑनलाइन हो रहा है।
0: एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 1-5 से पराजित कर लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इसी जीत के साथ भारतीय टीम ने लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही भारत 21 स्वर्ण समेत 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुँच गया है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में खेलो झारखंड अंतर्गत रांची के खेलगांव में आज 2 दिवसीय राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने किया। इस मौके पर झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव मधुकांत पाठक ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन खिलाड़ियों को और अधिक सुविधाएं देने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में 5 से 9 अक्टूबर तक गरज के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है, हालांकि इसके बाद 2-3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वडनगर से वाराणसी तक निकली सेवा यात्रा पहुंची गुमला। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने किया स्वागत। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राशन डीलरों की सुनी समस्याएं, मांगों पर जल्द समाधान का दिलाया भरोसा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने फुटपाथ दुकानदारों के बीच कैनोपी अम्ब्रेला का किया वितरण, कहा रेहड़ी पटरी वाले अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा। सीईओ के रवि कुमार ने SIR को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा, 10 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर मेगा हेल्प डेस्क लगाने का निर्देश। और एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर जीता स्वर्ण पदक तालिका में चौथे स्थान पर। रांची में राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं?
7: अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी।
6: 104 नंबर, वो क्या है बहन?
7: 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन।
8: 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
10: माँ, मुझे भी सब्जी दाल दो ना।
11: नहीं, तू ऐसे ही खा, इसे भैया को खाने दे।
12: अरे अरे, आप ये क्या कर रही हैं?
13: बढ़ती बच्ची, किशोरियों के साथ खान पान में भेदभाव ना करें।
12: किशोरावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है,
13: उनमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं,
12: माहवारी प्रारंभ होती है,
13: उन्हें अच्छा और उचित पोषक आहार की आवश्यकता होती है।
12: याद रखें, स्वस्थ बालिका ही भविष्य में स्वस्थ माँ बन सकती है।
9: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी।
14: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
15: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
16: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: पीएम श्री आदर्श उच्च विद्यालय तिलमी और पीएम श्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कालामाटी में आदर्श युवा ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंचायती राज मंत्रालय और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त प्रयास से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने ग्राम सभा की पूरी बैठक का रोल प्ले किया। आदर्श ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित फूदी पंचायत की मुखिया अनिमा कच्छप ने बताया,
2: बच्चियों के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास रहा। जो भी समस्या आती है गांव में, चूंकि बच्चियां सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से ही आती हैं और बहुत ऐसे जगह से आती हैं, शायद वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्या है, तो इन्होंने देखा होगा उन समस्याओं को और उसी को इन्होंने प्रस्तुत किया यहाँ पर और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समस्याओं को रखा।
1: 1 अक्टूबर को खूंटी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन, उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश समेत जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में संयुक्त रूप से श्रमदान करते हुए निर्धारित क्षेत्र में साफ सफाई की। 30 सितंबर को खूंटी के व्यवहार न्यायालय परिसर में पोस एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर महिला सुरक्षा, यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण के लिए बनाए गए अधिनियम 2013 की विस्तृत चर्चा की गई। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी शिकायत समिति की अध्यक्ष विद्यावती कुमारी ने पोस एक्ट के प्रावधानों और शिकायत निवारण की जानकारी दी। उन्होंने कहा,
3: जो ये जर्नी है वो स्टार्ट हुआ 1997 से, राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां से शुरुआत होकर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया, जहां पे गाइडलाइन आई विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से। वो स्ट्रगल रहा 2012 तक, जब तक कि ये एक्ट हमारे देश में लागू नहीं हुआ। तो वो मैडम जो है उस समय पे विशाखा का गाइडलाइन होते हुए भी उन्होंने IPC का राह चुना और FIR दर्ज की।
1: खूंटी व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार ने कहा कि हर कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और गरिमापूर्ण माहौल बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा,
4: वर्क प्लेस पे महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए है, जिसमें वो निर्भय होकर के अपना बेस्ट जो है दे सके और पुरुष सहकर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके एक स्वच्छ वातावरण में काम कर सके।
1: खूंटी जिले के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी गंभीर बीमारियों का इलाज आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत गरीबों और असहायों को मिलने लगा है। इस संबंध में इलाजरत मरीजों, परिजनों और डॉक्टरों ने बताया,
5: सुदूर क्षेत्र में जो कैंप लगाए थे तो उससे फायदा हुआ, लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वहाँ से भी लोग आ रहे, धीरे धीरे प्रचार हो गया तो पेशेंट आने लगे। अब समझ में आयुष्मान से है, बस पेशेंट को समझाना पड़ता है कि आपके लिए आयुष्मान कार्ड है, इससे फ्री में इलाज हो सकता है, आप कराइए, तो लोग समझ के कराने लगते हैं।
6: मेरा नाम राजेंद्र पासवान है, बिहार से आए हुए हैं और मेरा यहाँ गंगा हॉस्पिटल में झारखंड में भर्ती है जी, और आयुष्मान कार्ड नहीं रहता मेरा, किसी तरह कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सरकार का धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री।
1: इधर दूसरी तरफ 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के अवसर पर खूंटी में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक जागरूकता आधार एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण, नालसा की योजना तथा माता पिता के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर विस्तार से चर्चा की गई। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
0: खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: हो भाषा में लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। कलाकार थे बुधन सिंह कुंकल और साथी हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 7:20 बस होने वाले। दोस्तों, क्षेत्रीय भाषाओं में आइए सुनते हैं समाचार।
1: ये आकाशवाणी रांची है के अब रौरे मन अंजू कुमारी से नागपुरी में साप्ताहिक समाचार सुनू। एशियाई खेल मन में भारतीय हॉकी टीम चीन के 1-0 से हरवाए के 44 साल बाद ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत के ओलंपिक ले क्वालिफाई करलक। टीम कर कमान सिमडेगा का सलीमा टेटेकर हाथ में रहे और विजेता टीम में राइज कर 3 दूसरों बेटी मन निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग और दीपिका सोरेंग रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में नशा मुक्त युवा और विकसित भारत ले मिल के काम करे कर निवेदन कर रहे हैं। वो बता लें कि देश में जनगणना कर पहला चरण करीब पूर जाए है, सब कर से ऑनलाइन पोर्टल में जानकारी देवे कर अपील कर रहे हैं।
2: देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। मोबाइल से ही जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल आगामी रवि फसल मनकर न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP में वृद्धि के मंजूरी दे दे है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बतालें कि कैबिनेट दिल्ली पुलिस का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रणाली और बिजली ट्रांसमिशन सुधार कर PM धारा योजना के हों हरी झंडी दे दे है। रांची कर विशेष PMLA अदालत बड़गाई जमीन मामला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर विरुद्ध आरोप तय कर दे है। झारखंड हाईकोर्ट आरोप गठन के चुनौती देवे वाला याचिका में ED से 28 अक्टूबर तक जवाब मांगे। ED अधिकारी मनकर खिलाफ SC ST मामला में झारखंड हाईकोर्ट जवाब दाखिल करे के लिए समय मांगे कर चलते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर 10,000 रुपया

के साथ। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप के टॉपिक के बारे में कुछ कुछ बता रही हूँ। तो आइए आपको सबसे पहले हम बताते हैं अग्निशमन के बारे में। दहन के लिए कुछ परिस्थितियाँ आवश्यक होती है, उसमें से एक है दहन के योग्य पदार्थ, दूसरा है दहन का सहायक और तीसरा है ऊष्मा। इसके पहले कि कोई पदार्थ आग पकड़े, इसे एक न्यूनतम ताप पर गर्म करना पड़ता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ईंधन जलना प्रारंभ करता है, उसका ज्वलन ताप कहलाता है। यदि इसमें से एक भी परिस्थिति उपलब्ध न हो तो दहन रुक जाएगा। वह विधि जो अग्नि उत्पन्न करती है, अग्नि कहलाती है। श्रोताओं, अब आइए आपको बताते हैं कि जो अग्नि होती है वो भी अलग अलग तरह की होती है, तो उसे बुझाने के लिए किस किस पदार्थ का यूज होता है। जल, ये तो हम सभी जानते हैं कि जल एक अग्नि शमित की तरह काम करता है। यह जलती हुई सतह को इसके ज्वलन ताप के नीचे ठंडा कर देता है, परंतु इसका प्रयोग जलते हुए तेल के कारण या विद्युत द्वारा उत्पन्न आग को बुझाने के लिए नहीं किया जाता है। एक होता है सोडा अम्ल शमित, यह जलती हुई सतह को इसके ज्वलन ताप के नीचे ठंडा करने के सिद्धांत पर आधारित है। यद्यपि जल सबसे अधिक अग्निशमन रोधक है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग भी अग्निशमन में होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जलती नहीं है तथा ये दहन में सहायक भी नहीं होती है। फेन शमन रोधक, जल तेल तथा पेट्रोल से भारी होता है, यह इसलिए जल को जलते हुए तेल के ऊपर फेंका जाता है जिससे कि वह नीचे ठहर जाता है। तेल पानी के ऊपर तैरता रहता है तथा साथ ही जलता भी रहता है, जिसमें फेन शमन रोधक से अग्नि बुझ सकती है। फेन वायु की आपूर्ति को कम कर देता है जिससे कि आग बुझ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, रेत तथा मिट्टी भी अग्नि बुझाने में मदद करती है। एक होता है विद्युत अग्निशमन रोधक, साधारण जल और फेन उच्च विभव पर ऊष्मा चालक का कार्य करते हैं, अतः जब जल या फेन को जलते हुए तारों पर फेंका जाता है तो ये अग्नि बुझाने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः इस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड वाष्प वायु से भारी होती है जिससे ये जलते हुए पदार्थ को सतह पर पहुंचाकर वायु प्रवाह को रोक देती है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा शुष्क रेत भी इस प्रयोग में लाई जाती है। श्रोताओं, अब हम आपको उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स के बारे में बताते हैं। पौधों की बुनियादी आवश्यकता जल एवं सूर्य से प्रकाश के अतिरिक्त नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम आदि है। इसकी प्रचुरता से ही पौधों का संतुलित विकास होता है। आरंभ में ये पदार्थ मिट्टी से ही मिलते थे, परंतु बार बार मिट्टी को फसलों के लिए उपयोग करने से इसकी उर्वरक क्षमता घट जाती है। ऐसी परिस्थिति में कृत्रिम विधि के द्वारा मिट्टी को बंजर होने से बचाया जाता है। इसके लिए कृत्रिम एवं प्राकृतिक खाद का उपयोग करके इसकी उपज प्रभावित ना हो, इसके लिए काम किया जाता है। तो रासायनिक उर्वरक को बनाने के लिए मतलब ऐसा होना चाहिए जिसका उपयोग पौधों के लिए नुकसानदायक ना हो। ऐसी स्थिति में जल

0: इन्हें पूर्ण रूपेण घुलनशील होना चाहिए, इसे अस्थाई होना चाहिए ताकि लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहें। इसके अंतर्गत पौधों को हानि पहुंचाने वाले कोई तत्व न होने नहीं चाहिए। और रासायनिक उर्वरकों की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फॉस्फोरिक उर्वरक, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला फॉस्फेट है। इसका सर्वाधिक उपयोग उर्वरक उद्योग के द्वारा होता है। इसमें सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, नाइट्रोफस बनाया जाता है। इसमें फॉस्फोरिक और नाइट्रोजेनस उर्वरक का संयोग होता है। अन्य फॉस्फेट उर्वरक में अमोनियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट और डाई अमोनियम हाइड्रोजन ऑर्थोफॉस्फेट आते हैं, जो नाइट्रोजन की कमी को भी पूर्ण करते हैं। दूसरा उर्वरक होता है नाइट्रोजिनस उर्वरक, पौधों में प्रोटीन को बढ़ाने और तीव्र विकास के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का काफ़ी महत्व है। इस उद्योग में नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रमुख नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों में अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनाइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट आदि आते हैं। श्रोताओं, अब आइए हम आपको बताते हैं खरपतवार एवं दीमक पर कैसे नियंत्रण पाया जाता है। खरपतवार वे अनैच्छिक पौधे होते हैं जो किसी फसल के साथ उग आते हैं तथा कई खनिजों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि फसल की पैदावार पर असर पड़ता है। खरपतवार की उत्पत्ति को रोकना आवश्यक होता है। इसमें दीमक कुछ नुकसानदायक पौधों या जीवों को कहते हैं, जैसे कि चूहे, लोकेस्टस जो कि कीट होता है, फसल को नष्ट कर देते हैं। इन्हें कुछ रसायनों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि धुआं, स्प्रे या गैस के रूप में, जो हानिकारक जीवों तथा पौधों की वृद्धि को रोकती है। जैसे कीटनाशक, पौधनाशक, चूहेनाशक होते हैं, इनका ज़्यादातर कीटनाशक जहरीले होते हैं। कुछ सामान्य कीटनाशक निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें है DDT, डाइक्लोरोडाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोमेथेन एवं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और एक होता है गैमेक्सीन, और एक होता है मेथिल पैराथाइन। जिंक सल्फाइड को छोड़कर सभी कीटनाशक कार्बनिक कीटनाशक होते हैं। एक अच्छा कीटनाशक सस्ता, प्रभावी, प्रयोग में आसान होना चाहिए। यह मनुष्य तथा जीवों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। श्रोताओं, आइए अब हम आपको बताते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट का प्रयोग संपूर्ण विश्व में प्रयोग आने वाले निर्माण पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसकी खोज सर्वप्रथम जोसेफ एस्पिडन ने इंग्लैंड में की थी। उन्होंने ही इसे पोर्टलैंड नाम दिया था, क्योंकि यह पोर्टलैंड में पाए जाने वाले चूने के पत्थर से मिलता जुलता था। आधुनिक पोर्टलैंड सीमेंट का स्वरूप प्राचीन सीमेंट से काफ़ी बदल चुका है। सीमेंट के प्रमुख स्रोत चीन, जापान, US तथा भारत में पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में सीमेंट का निर्माण हो रहा है। भारत में लगभग 100 मिलियन टन सीमेंट का निर्माण प्रति वर्ष होता है। श्रोताओं, अब आइए बताते हैं आपको कि सीमेंट में आखिर पाया क्या क्या जाता है। चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका यानी कि लाल मिट्टी या शैल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाला पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्यूमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। इसको चूर्ण कर लिया जाता है और इसमें अगर जल मिलाए तो यह कठोर पिंड में तब्दील हो जाता है। ये इसका विशिष्ट गुण होता है। इससे क्लिंकर प्राप्त होता है। अगर जो भी विधि करवाई जाती है उससे जो भी प्राप्त होता है उसे क्लिंकर कहते हैं, जिसमें 2-3% तक जिप्सम डालकर सीमेंट के जमने की वृद्धि की जाती है। हमारे देश में सीमेंट के अनेक कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश का चुर्क कारखाना बहुत बड़ा है, जिसमें प्रतिदिन 22,000 टन सीमेंट का उत्पादन होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के लिए मुख्य रूप से मिट्टी और चूने का प्रयोग किया जाता है, जो इसके लिए कच्चे माल का काम करते हैं। चूना तथा मिट्टी सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड प्रदान करती है। चूना तथा मिट्टी को चूरा करके 3:1 मतलब 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं और पुनः मिश्रण को चूरा करते हैं। फिर इसे 1773 के ताप पर रोटेटरी क्लीन में गर्म किया जाता है, जिसे क्लिंकर बन जाता है। चूने, एल्यूमिना, फेरिक ऑक्साइड और सिलिका के बीच अभिक्रिया होती है, जिससे डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। फिर कंक्रीट को ठंडा करके 2-5% तक जिप्सम के साथ मिला देते हैं। जिप्सम सीमेंट में जमने की समय को बढ़ा देता है। फिर इस मिश्रण को पीसकर समांग चूर्ण बना लिया जाता है। फिर इस सीमेंट को बोरियों में भरकर स्टोर कर दिया जाता है। अब इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, तो सीमेंट को रेत में मिलाकर मोर्टार बनाते हैं, जिससे कि इसका उपयोग प्लास्टर करने और ईंटों को जोड़ने के काम आता है। सीमेंट तथा कूटे हुए पत्थरों के मिश्रण को कंक्रीट कहते हैं, जिसका उपयोग बिल्डिंग, सड़क, बांध, पुल बनाने के काम में आता है। अब हम बात करते हैं कांच की, यानी कि ग्लास की। कांच विभिन्न क्षारीय धातु की सिलिकेटों का अक्रिस्टलीय मिश्रण होता है। यदि क्षारीय धातुओं में कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट का सिलिका के साथ अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाए, तो यह मिश्रण पारदर्शक द्रव में परिवर्तित हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट व सिलिका को गर्म करने पर सोडियम सिलिकेट प्राप्त होता है। यह जल में विलय होता है और इसे इस जल को जल कांच कहते हैं। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का मिश्रण अम्लों में विलय होता है, परंतु यदि सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेटों को सिलिका के साथ गर्म करें, तो जो मिश्रण प्राप्त होता है वह जल या अम्लों में अविलय होता है। इसी को कांच कहते हैं। कांच कई प्रकार के होते हैं और इनका जो कंपोजिशन होता है वो भी अलग अलग होता है। प्लिंकटन कांच, पाइरेक्स कांच, सोडा कांच, क्रुक्स कांच, पोटास कांच, ये अलग अलग वैरायटी के कांच होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कांच का रंग कैसे चढ़ता है। रंगीन कांच बनाने के लिए इसमें विभिन्न पदार्थ मिलाए जाते हैं। लाल कांच बनाने के लिए इसमें क्यूप्रिक के लवण और सीलियम मिलाए जाते हैं। इसी प्रकार हरा व नीला कांच बनाने के लिए क्रमशः इसमें फेरस, क्यूप्रिक, लवण मिलाए जाते हैं। श्रोता, तो आज मैंने आपको बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया, जैसे कि अग्निशमन, अग्निरोधक में कौन कौन से पदार्थों का यूज किया जाता है, फर्टिलाइज़र के बारे में बताया आपको, खरपतवार नियंत्रक के बारे में बताया, सीमेंट के बारे में बताया कि सीमेंट का कैसे निर्माण किया जाता है और उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। फिर मैंने आपको कांच के बारे में बताया कि कांच का निर्माण कैसे किया जाता है। श्रोताओं, मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम विज्ञान जगत पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया लेकर आपके बीच फिर आएंगे। तब तक के लिए अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को आज्ञा दें। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत कार्यक्रम के अंतर्गत। आज का शीर्षक था अग्नि शमन, संकलन और वाचन प्रीति वर्मा का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। चित्रपट से सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं चुनिंदा फिल्मी नगमे।

बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है, कभी हमें रुलाता है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं विविध क्षेत्रीय फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल GDP grew 7.8% in quarter 1 of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस NPAs ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि PM मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
6: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
7: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
6: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
8: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
6: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मित के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मित की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलबीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मित हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
9: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
10: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
0: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In hockey, India thrashed Malaysia 5-1 to defend their men's gold, and the triumph also secured them a direct qualification for the 2028 Los Angeles Olympics. For India, captain Harmanpreet Singh netted 2 goals while Jugraj, Hardik and Shilanand scored 1 goal each. In men's cricket, India won the gold, defeating arch rivals Pakistan by 19 runs in the T20 final at Nishin. Wrestler Aman Sehrawat clinched the men's 57-kilogram gold after edging out North Korea's world champion Chong Song Han 11-7 in a fierce final. Kumkum Mohod won the individual gold medal in the women's recurve archery event. In golf, Pranavi Urs became the first Indian woman to win an Asian Games gold medal in the women's individual title. India also bagged silver in the team event. Wrestler Antim Panghal sealed a silver medal in the women's 53-kilogram category. Deepak Punia won bronze in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event after defeating Mongolia's Ganhuyag Ganbatar. Archer Neeraj Chauhan got bronze in the men's individual recurve event. With these impressive performances, India climbed to 4th position in the overall medal standings. The country's medal tally has risen to 85, including 21 gold, 27 silver and 37 bronze medals. Prime Minister Narendra Modi congratulated the men's cricket team on retaining their title at the Asian Games 2026. In a series of social media posts, Mr. Modi said this is indeed a joyous occasion for the nation. He also wished the team members for their future endeavours. Mr. Modi said the 2026 Asian Games have been truly special for Indian hockey. He congratulated the men's hockey team on retaining the Asian Games gold with a commanding victory in the final. The Prime Minister congratulated Pranavi Sharat Urs on winning India's first ever gold in women's individual golf at the Asian Games. He also congratulated Kumkum Anil Mahod on becoming the first Indian woman to win the recurve individual gold at the 2026 Asian Games. The Prime Minister congratulated Aman Sehrawat for scripting history by winning India's first ever Asian Games gold in the men's 57-kilogram freestyle wrestling event. He expressed happiness that 6 decades later, India's back on the podium in the men's 97-kilogram freestyle wrestling event at the Asian Games. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall at isolated places over Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow, IMD said. Conditions are likely to become favourable for further withdrawal of southwest monsoon from remaining parts of Marathwada and Vidarbha, some more parts of Maharashtra, Chhattisgarh, Telangana and North Interior, Karnataka during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India's economic strength and resilience have been built over past decades through fiscal prudence, infrastructure investment and consistent reforms. Union Minister Amit Shah says full implementation of the Bharatiya Nyaya Sanhita will transform India's criminal justice system. In Andhra Pradesh, 4 workers killed in a boiler explosion at a private industrial unit in Sri City. At the Asian Games, Indian men's hockey and cricket teams win gold medals. Wrestler Aman Sehrawat, archer Kumkum Mohod and golfer Pranavi Urs also clinch gold. India win 5 gold, 2 silver, 2 bronze medals today, climb to 4th place in medal tally with 85 medals, including 21 gold. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के मुकम्मल नफाज से भारत के फौजदारी इंसाफ के निजाम में यकसर तब्दीली आएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में एक निजी सनती यूनिट में बॉयलर फटने के हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई है। एशियाई खेलों में भारतीय मर्दों की हॉकी और क्रिकेट टीमों ने सोने के तमगे जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम महोद और गोल्फ खिलाड़ी प्रणवी उर्स ने भी सोने के तमगे हासिल किए। भारत ने आज सोने के 5, चांदी के 2 और कांसे के 2 तमगे जीते। इसके साथ ही भारत सोने के 21 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर तमगों की फेहरिस्त में चौथे मकाम पर पहुंच गया है। और अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज कहा है कि मालियाती एहतियात, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी, बैंककारी इस्लाहात, खिदमात की फराहमी के बेहतर निजाम और मुसलसल इस्लाहात के जरिए पिछली एक दहाई के दौरान भारत में इक्तसादी ताकत और इस्तेहकाम आया है। नई दिल्ली में मुनक़िदा 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत ने GST, दिवालिया और दिवालियापन से मुतअल्लिक ज़ाबते और 4 लेबर कोड्स के जरिए मुल्क के इक्तसादी निज़ाम को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़िश्ता 4 बरसों के इक्तसादी सतह पर नामसायद हालात का सामना मजबूत बुनियादी इक्तसादी हालात के साथ किया है। उन्होंने इस ज़िम्न में माली साल 2026-27 की पहली समाही में हकीकी GDP की 7.8% शरह तरक्की का जिक्र किया। वजीर खजाना ने कहा कि बैनुल अक्वामी मालियाती फंड IMF के अंदाजे के मुताबिक आलमी सतह पर कर्ज में इजाफे के रुझान के बरअक्स भारत के मजमूई सरकारी कर्ज का तनासुब GDP के मुकाबले में 2026 में 83.4% से कम होकर 2031 में 77.7% रहने का इम्कान है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मवेशी परवरी के शोबे के लिए एक मुकम्मल इको निज़ाम तैयार कर रही है। इसके तहत गोबर से बायोगैस और नामियाती खाद तैयार करने से लेकर डेयरी मसनूआत की प्रोसेसिंग और उन्हें मंडी तक पहुंचाने की सहूलत फराहम की जा रही है ताकि देही मईशत को नई रफ्तार फराहम की जा सके। भोपाल में रियासती सतह के गौपालक सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि मवेशी पालने वाले अफराद इमदाद बाहमी की वजारत की तश्कील से सबसे ज्यादा फायदा उठाने वालों में शामिल हैं। मुल्क में फौजदारी इंसाफ के निजाम में इस्लाहात का जिक्र करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के मुकम्मल नफाज के बाद भारत का फौजदारी इंसाफ का निजाम दुनिया के जदीद तरीन निजाम में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि BNS के मुकम्मल निफाज के बाद FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमात का फैसला 3 साल के अंदर किया जा सकेगा।
2: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अनथक अज्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तस्करा कर रहे हैं कि पार्लियामेंट की नई इमारत और सेंट्रल विस्टा के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
3: सेंट्रल विस्टा जदीद तरक्याती प्रोजेक्ट नई दिल्ली में मरकजी इंतजामिया और शहरी इलाके को नए सिरे से तैयार करने का एक बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे का मकसद सरकारी कामकाज को ज्यादा मौसर और आसान बनाना है। इसके लिए सरकारी दफातर को जदीद, बेहतर और जरूरत के मुताबिक बनाया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की तमाम 51 वजारतों, 10 कामन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में यकजा किया जाएगा। इससे अफसरान और मुलाजमीन सरकारी दस्तावेजात और सामान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकेंगे। नई पार्लियामेंट की इमारत का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया था। नई पार्लियामेंट की इमारत की तामीर में मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से हासिल किए गए सामान और मवाद का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरिए की अक्कासी करता है। इस इमारत में अब सेंगुअल है जिसे इक्तदार की मुंतकली की अलामत समझा जाता है। इस इमारत के 6 दाखिली दरवाजे हैं जिनके नाम कदीम रिवायती मखलूकात के नाम पर रखे गए हैं जिनमें गच, अशु, ग्रोन, मकर, शार्दुल और हंस शामिल हैं। नए पार्लियामेंट का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, एलओसी और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: खेल आपको खुद को साबित करने का दूसरा मौका भी जरूर देता है, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे समय। एक और बड़ी बात, ऐसे खेल मेले दूर दराज के खिलाड़ियों से मिलने, सोच को साझा करने, आत्मीयता जगाने का भी अवसर देते हैं और अपनी संस्कृति को दूसरे तक पहुंचाने का भी। आईची नगोया एशियाई खेलों पर अपनी दैनिक हाइलाइट्स के साथ उपस्थित हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम है अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। पुरुष हॉकी में भी स्वर्ण पदक आया और 2028 ओलंपिक का टिकट भी। क्रिकेट में भारत की बादशाहत बरकरार, बना चैंपियन। कुश्ती में आज तीनों रंग के एक एक पदक आए। गोल्फ में हुआ कमाल, प्रणवी ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, टीम रजत भी। आर्चरी में कुमकुम का कमाल, महिला स्वर्ण पदक पे निशाना लगाया। पुरुष हॉकी में भारत ने आज गजब का फाइनल खेला मलेशिया के विरुद्ध, 5-1 से धमाकेदार जीत और एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार बैक टू बैक गोल्ड मेडल पाया और पहली बार महिला और पुरुष दोनों गोल्ड मेडल भारत ने एक ही गेम में जीते। लेकिन पहले बात करते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट में चिर प्रतिद्वंदी थे आमने सामने भारत और पाकिस्तान। पिछले काफी समय से भारत इस प्रतिद्वंदिता में लगातार हैवीवेट बना रहा है और आज भी कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। भारत की जीत और स्वर्ण पदक की पूरी आशा थी जो खिलाड़ियों ने आसानी से पूरी कर दी। पहले बैटिंग कर 200 प्लस का स्कोर खड़ा करके मैच की मीमांसा मेघा से।
1: इंडिया हैव कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन क्रिकेट एट द एशियन गेम्स। द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड पाकिस्तान बाय 19 रन्स इन द फाइनल टू सक्सेसफुली डिफेंड देयर एशियन गेम्स टाइटल। बैटिंग फर्स्ट इंडिया पोस्टेड एन इंपोजिंग 211 फॉर 6। अभिषेक शर्मा लेड द चार्ज विद अ ब्लिस्टरिंग 61 ऑफ 28 डिलीवरीज इंक्लूडिंग 7 सिक्सेस एंड 3 फोर्स। ही ब्रॉट अप हिज हाफ सेंचुरी इन ओनली 20 बॉल्स। तिलक वर्मा प्रोवाइडेड द फिनिशिंग फ्लरिश विद एन अनबीटन 51 ऑफ 22 बॉल्स हेल्पिंग इंडिया क्रॉस द 200 मार्क। Pakistan's trees got off to a difficult start as India's spinners made early inroads. Akshar Patel picked up two important wickets, leaving Pakistan struggling at 76 for 3 at the halfway stage. Hasan Nawaz kept Pakistan's hopes alive with a fighting 96, but India held their nerve to restrict Pakistan to 192 for 6. This victory completes India's cricket double at the Games. The women's team had earlier defeated Sri Lanka by a commanding 147 runs in the final. Two teams, two gold medals and another successful Asian Games campaign for Indian cricket.
0: हॉकी में कल हमने महिलाओं का हुनर देखा तो आज पुरुषों की बारी थी। हाँ, रणनीति कल से अलग थी, सिर्फ रक्षण नहीं, आक्रमण से भरपूर टीम पूरा चढ़ कर खेली और दिखाया कि हमारी तो आज की नीति है आक्रमण करो गोल कमाओ। एक परफेक्ट मैच खेला भारत ने आज, खासकर हाफ टाइम के बाद के दोनों क्वार्टर्स में तो भारतीय हॉकी की धनक पूरे मैदान में गूंज रही थी। हुटर बजा तो वो भारत के इन एशियन गेम्स में 5-1 से अपने पांचवें स्वर्ण पदक का जयघोष था। पहले क्वार्टर की शुरुआत संयत तरीके से हुई, एक दूसरे को आंकने में ज्यादा मूव नहीं बने। खेल ने रंग पकड़ा करीब 10 मिनट के बाद, पहला पेनल्टी कॉर्नर रोक दिया गया। फिर हरमन ने दिखाया कि क्यों उन्हें पेनल्टी कॉर्नर्स और ड्रैग फ्लिक का किंग कहा जाता है। लेकिन हॉकी प्रेमी इस लीड का आनंद ले पाते तब तक प्रत्याक्रमण हुआ मलेशिया का। शैलो सिल्वेरियस ने शानदार फील्ड गोल कर दिया, बिल्कुल हाफ वॉली स्टाइल में उन्होंने शॉट मारा। सेकेंड क्वार्टर में मलेशिया ने हमले बनाए लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा किया भारत ने। दो पेनल्टी कॉर्नर भी उन्हें मिले लेकिन रक्षण ने बेकार कर दिए। फिर भारत के हमले हुए, पेनल्टी कॉर्नर मिला, इस बार जुगराज ने लिया। उन्होंने अपनी ड्रैग फ्लिक की स्पीड दिखाई, दाहिनी ओर के गोल पोस्ट को खड़का दिया। हाफ टाइम का स्कोर 2-1। तीसरे क्वार्टर से भारतीय

0: ये टीम पूरे रंग में आ गई और मलेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। एक के बाद एक मूव बनाए, हरमन का एक पुश मनदीप को गया और उनका शॉट मलेशिया के डिफेंडर के शरीर से लगकर गोल के सामने और पेनल्टी स्ट्रोक मिला। हार्दिक ने गोलकीपर को छकाता हुआ जन्नाटेदार शॉट लगाया और भारत 3-1 से आगे। अब भारतीय फैंस को थोड़ी राहत की सांस मिली क्योंकि हॉकी में एक गोल का अंतर तो आप जानते हैं, आप चैन से नहीं बैठ सकते। फोर्थ क्वार्टर में मलेशिया के पास एक ही च्वाइस बची थी, ऑल आउट अटैक पर जाने की। शुरुआत उन्होंने ऐसे ही की लेकिन भारतीय रक्षण पूरी तरह मजबूत और अभेद्य था और बहुत जल्द ही भारतीय ही पूरे मैदान पर छा गए। एक के बाद एक आक्रमण करते हुए मलेशिया मैच में दिखा ही नहीं। एक बार तो 4 पेनल्टी कॉर्नर्स एक के बाद एक मिले। फिर एक भारतीय हमले में अभिषेक ने एक शानदार दौड़ लगाई गेंद के साथ बिल्कुल बेस लाइन के पैरेलल और उसके बाद पास भेजा गोल के सामने खड़े हुए शिलानंद लाकरा को, जिन्होंने कोई गलती नहीं की और भारत 4-1 से आगे। स्वर्ण पदक तो बिल्कुल पक्का सा हो गया लेकिन हमले जारी रहे और पेनल्टी कॉर्नर आया तो हरमन ने डी पर इस बार सिर्फ 3 खिलाड़ी रखे। समय उनको पूरा मिला और सीधा गोली की तरह जन्नाटेदार शॉट लगाया उन्होंने, स्कोर को कर दिया 5-1। इत्तेफाक से ये वो समय था जब भारतीय इन गेम्स में अंतिम बार किसी मैदान में थे, यानी खेलों से शानदार विदाई ली 5-1 से सुनहरी जीत के साथ और ओलंपिक खेल 2028 के प्रवेश टिकट के साथ। जय हो भारतीय हॉकी की। गोल्फ में कल ही प्रणवी ने लीड बना ली थी, पहले स्थान पर आ गई थी। आज 10वें होल से उन्होंने शुरुआत की और संयम, एकाग्रता, सटीक स्ट्रोक्स और खुद पर पूरा काबू रखते हुए अपने लीड को बनाए रखा और इतिहास रच डाला। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर प्रणवी अर्श के अर्श तक पहुंचने की कहानी साक्षी मंडवाल से।
1: प्रणवी ओर्स क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग द गोल्ड फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी, अदिति एंड दीक्षा आल्सो क्लेम द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स टीम इवेंट इन गोल्फ। नो इंडियन हैज वन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन गोल्फ सिंस शिव कपूर इन 2002। द 24 ईयर ओल्ड लॉन्ग वेट फाइनली केम टू एन एंड विद प्रणवी ओर गेटिंग द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया द एशियन गेम्स 2026। प्रणवी ओर्स हेल्ड हर नर्व्स टू win the women's individual golf gold medal, finishing the 4-round competition at 15 under par. She made par on the final hole, as did Singapore's Shannon Tan and China's Jin Ruining, who finished on 14 under to share the silver medal. Aditi Ashok and Deeksha Dagar celebrated by dousing Pranavi with water on the course after a memorable victory. Let's remind all of you once again that Pranavi Urs, Aditi Ashok and Deeksha Dagar also claimed the silver medal in the women's team event in golf today.
0: लड़कियों का जादू तीरंदाजी में भी बना रहा, वो कथा तो सबको पता है, अर्जुन और मछली की आंख की। अमरावती महाराष्ट्र की 17 बरस की कुमकुम को भी लगता है बस टारगेट बोर्ड का सेंटर ही दिख रहा था। आज तीसरा पदक, वो भी व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। कुमकुम के सनसनाते तीरों का बयान कर रही हैं मेघा।
2: Indian archery has signed off from the Asian Games with another historic performance, and at the center of it is 17-year-old Kumkum Anil Mohod. Kumkum clinched the gold in the women's individual recurve event, defeating South Korea's Oh Ye-jin in a dramatic shoot-off. With the scores tied at 5-all, the Indian teenager produced a perfect 10 while her opponent managed an 8. Earlier, Kumkum had defeated reigning world champion Kang Chaeyoung in the quarterfinals and China's Chu Xingyi in the semi-finals. Her victory makes her the first Indian archer to win an individual recurve gold medal at the Asian Games. She's also secured an individual recurve quota place for India at the Los Angeles 2028 Olympics. And there was more to celebrate in the men's competition. Neeraj Chauhan defeated compatriot Dheeraj 6-4 in an all-Indian bronze medal contest. Neeraj fought back from 4-2 down to secure his place on the podium. For Kumkum, this was her third medal of the games, following gold in women's recurve team event and silver in mixed team event. India's archery contingent finishes with 9 medals, 5 gold, 2 silver and 2 bronze, a campaign that underlines India's growing strength across both recurve and compound categories.
0: पहलवानों ने भी भारतीय पदकों का ढेर बड़ा करने का बीड़ा उठा रखा था। आज 5 पहलवान थे, 2 रेसलर फाइनल में पहुंचे तो 2 कांस्य पदक के मैट पर। दांव पेंचों का सारा विवरण शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय कुश्ती का अभियान शानदार अंदाज में समाप्त हुआ। भारत ने कुश्ती में कुल 6 पदक अपने नाम किए, जिनमें 2 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। इनमें सबसे बड़ी उपलब्धि रही अमन सहरावत।

0: की जिन्होंने पुरुषों के फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। फाइनल में अमन का सामना उत्तर कोरिया के हान चोंग सोंग से हुआ। अमन ने मुकाबले की शुरुआत शानदार अंदाज में की और 4-1 की बढ़त बना ली। हालांकि चोंग सोंग ने वापसी करते हुए स्कोर 7-6 कर दिया। मुकाबले के आखिरी मिनट में रोमांच अपने चरम पर था। दबाव के इस दौर में अमन ने बेहतरीन टेकडाउन लगाकर 4 अंक हासिल किए और स्कोर 11-7 कर दिया। इसके बाद उन्होंने बढ़त कायम रखी और भारत के लिए स्वर्ण पदक सुनिश्चित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में अमन का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा। उन्होंने जापान के यामातो ओगावा को 20-9 और कजाकिस्तान के नूरदानात एतानोव को 12-1 से हराया। सेमीफाइनल में 2-6 से पिछड़ने के बाद ताजिकिस्तान के एयाल बेलोबेउस्की के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 14-8 से जीत दर्ज की। हांगझोउ एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाले अमन ने इस बार अपने पदक का रंग बदल कर स्वर्ण कर दिया। वहीं महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता। फाइनल में उन्हें जापान की मोए क्योका से 1-9 से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम ने क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान की साकिब जमाल एसबोसिनोवा को 8-0 से और सेमीफाइनल में चीन की जिन जांग को 6-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। इस रजत के साथ अंतिम ने एशियन गेम्स में अपना दूसरा पदक हासिल कर लिया। आपको बता दें हांगझोउ में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उधर पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल में दीपक पुनिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक मुकाबले में दीपक ने मंगोलिया के गंगखुया गनबातार को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में 8-9 की करीबी हार के बाद दीपक ने शानदार वापसी की और लगातार दूसरे एशियन गेम्स में पदक जीतने का सिलसिला कायम रखा। हालांकि 74 किलोग्राम वर्ग में सागर जगलान कांस्य पदक से चूक गए। उन्हें कजाकिस्तान के नुरकोजा कैपानो ने 5-0 से हराया और सागर चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले रेपेचाज में उन्होंने उज्बेकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन रजामबेक जमालो को 7-3 से हराकर कांस्य पदक मुकाबले में जगह बनाई थी। महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में मनीषा क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, जहां उन्हें जापान की अकारी फुजिनामी से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह भारतीय कुश्ती ने कुल 6 पदक के साथ अपना अभियान पूरा किया। आपको बता दें पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पहलवानों ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज समेत कुल 6 पदक जीते थे।
1: वॉलीबॉल में 5वें-6ठे स्थान के लिए भारत की भिड़ंत थी थाईलैंड से। कड़ा मुकाबला हुआ, 5 सेट तक चला। सेट पॉइंट्स की कहानी प्रेरणा शर्मा से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम को 5वें स्थान के मुकाबले में थाईलैंड के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे 56 मिनट तक चले इस 5 सेट के रोमांचक मुकाबले में थाईलैंड ने निर्णायक सेट 17-15 से जीतकर 5वां स्थान हासिल किया, जबकि भारत 6ठे स्थान पर रहा। मुकाबले की शुरुआत थाईलैंड ने बेहतर तरीके से की। उसने पहला सेट 25-19 से अपने नाम किया। भारत ने हालांकि दूसरे सेट में तुरंत वापसी की और 25-17 से जीत दर्ज करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इस सेट में थाईलैंड ने फिर बढ़त हासिल की और 25-21 से सेट जीतकर मुकाबले में 2-1 की बढ़त बना ली। भारत के सामने अब मुकाबला बचाने की चुनौती थी और टीम ने 4थे सेट में एक बार फिर दमदार वापसी की। भारत ने यह सेट 25-17 से जीता और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर पहुंच गया। इसके बाद फैसला 5वें और निर्णायक सेट में होना था। यहां दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ा संघर्ष देखने को मिला। भारत के पास मैच पॉइंट के मौके भी आए, लेकिन टीम उन्हें जीत में बदल नहीं सकी। थाईलैंड ने आखिरी पलों में धैर्य बनाए रखा और निर्णायक सेट 17-15 से अपने नाम कर लिया।
1: रग्बी सेवन में भी महिलाएं क्लासिफिकेशन रैंक के लिए खेल रही थी। 2 मैच खेले, दोनों का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: Indian women defeated Singapore for the 5th to 8th placing 22-5. India won the first half convincingly and commandingly by defeating Singapore 17-5 and also owned the second half by completely demolishing Singapore 5-0, thereby winning the match in straight games 2-0. The Indian women's match in rugby sevens for the 5th 6th placing later happened with Kazakhstan, in which Kazakhstan easily defeated India 20-0. Both the halves went to Kazakhstan with the scoreline reading 10-0, 10-0 and finally, the Indian women finished on the 6th place.
1: ताइक्वांडो में 2 लड़कियां थीं। कल से संघर्ष में जुटी हुई कशिश मलिक और दूसरी ज्योति यादव। पदक की उम्मीद तो कम ही थी, लेकिन संघर्ष की उम्मीद जरूर थी। हुआ क्या, जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: कशिश मलिक बोर्ड आउट ऑफ द वुमेन्स 56 kg राउंड ऑफ 16 इवेंट एट द एशियन गेम्स 2026 इन ताइक्वांडो। She was defeated by Kim Yujin of South Korea in this round. In the women's 67kg round of 16 in Taekwondo, Jyoti Yadav lost to Kanala 0-2. She was thus knocked out and India's campaign in the sport ended with this loss.
1: सेलिंग में भारत ने 3 पदक पाए हैं। आज गर्ल्स डिंगी

0: माही वर्मा थी। माही की नाव कितना भागी जानते हैं मेघा से।
1: Competition concluded today. Mahi completed the 12 race opening series with 75 total points and 57 net points. She finished 8th in opening series race 12.
0: और अब भारत के लिहाज से पदक तालिका की फाइनल स्थिति।
1: Courtesy of a late surge that saw them add 9 medals, including 5 gold, India signed off the day in 4th place with 85 medals, 21 gold, 27 silver and 37 bronze. India and Uzbekistan at the moment stand level on 21 gold medals, but India are on the 4th place thanks to their higher silver medal count. China finish on top of the table, followed by host Japan and South Korea.
0: आज सही अवसर है भारत को मिले पदकों की स्थिति पर एक विहंगम दृष्टि डालने का। कहीं उम्मीदें पूरी हुई, कहीं उम्मीद से कम रहे, तो कहीं उम्मीद से बढ़कर आए। भारतीय पदकों की विवेचना मेघा से।
1: बियॉन्ड द मेडल्स एंड द फाइनल स्टैंडिंग्स, वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर इंडिया एट दीज एशियन गेम्स हैज बीन द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू जनरेशन। Of the 310 athletes making their Asian Games debut, 83 have won medals, 43 women and 40 men. That means more than one in every four Indian debutants has returned with a medal. Between them, these first-timers have contributed 41 medals across 12 sports, 14 gold, 12 silver and 15 bronze. And several performances have broken new ground for India. Suchika Thariyal won India's first ever Asian Games medal in mixed martial arts, taking bronze in the women's traditional 60 kilogram category. Jay Meena's men's singles bronze gave India its first ever medal in soft tennis. Shooting produced several breakthroughs as well. India won its first ever women's team and mixed team medals in skeet, while Suruchi Singh and Kamaljeet Singh struck gold with an Asian Games record in the 10 meter air pistol mixed team. Neeru Dhanda and Kanan Chennai added another first, winning India's maiden mixed trap gold with an Asian Games record in the final. There were significant firsts elsewhere as well. Satnam Singh and Salman Khan delivered India's first ever Asian Games medal in the men's double sculls, while Baranika Alangova's bronze was India's first ever Asian Games medal in pole vault. In squash, Anahat Singh became the first Indian woman to reach the Asian Games singles final, eventually taking silver. And Indian archery reached another landmark. Ankita Bhakat, Kumkum Mohod and Kirti Sharma won India's first women's recurve team gold at the Asian Games. Kumkum followed it up today with individual recurve gold, becoming the first Indian archer to win an individual recurve title at the Asian Games. There were breakthroughs in sailing and boxing as well. Netra Kumaran claimed bronze in women's dinghy, while Lovlina Borgohain delivered India's first Asian Games gold in the women's 75 kilogram boxing category. Netra's bronze was a maiden Asian Games medal in a fourth appearance. There were milestones beyond first. Mirabai Chanu's silver ended India's 28-year wait for an Asian Games medal in weightlifting. Savan Barwal brought India its first men's marathon medal in 44 years, and the women's hockey team reclaimed Asian Games gold after a 44-year wait.
0: करीब दो सप्ताह तक एशिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाएं आईची नगोया में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की नई कहानियां रचने में लगी रहीं, बेहतर से और बेहतर होने की कोशिश करती रहीं। जो नहीं जीत पाए उनके लिए उदास होने का समय तो हो सकता है, लेकिन निराश होने का नहीं, क्योंकि खेलों का संदेश ही यही है, कल आप फिर ऊपर आ सकते हैं। और फिर विशाल एशिया की बहुरंगी संस्कृतियों का मिलन स्थल भी तो था ये। भारत ने अपनी बहुआयामी सांस्कृतिक छाप भी जरूर ही छोड़ी। अब कल इन खेलों के अवसान का दिवस है। नगोया के पालोमा मिजुहो पार्क स्टेडियम में भव्य रंगारंग समापन समारोह होगा, लेकिन ये खेल आंदोलन तो शाश्वत है, चलता ही रहेगा। खेल ज्योति विदा लेगी। खेलों को सांकेतिक रूप से दोहा, जो 2030 खेलों का आयोजक है, उसे हैंडओवर किया जाएगा। जापान खासकर आईची नगोया की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हुए कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, समापन उद्घोष होगा और सारे खिलाड़ी एक मेक होते हुए एक दूसरे को गलबहियां डालकर विदा देंगे, चमकती आँखों में भविष्य के प्रदर्शन के सुनहरे सपनों के साथ। समापन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई करेंगी दो स्वर्ण और एक रजत जीतने वाली शूटर नीरू ढांडा, जिन्हें खास तौर पर फिर जापान भेजा जा रहा है भारतीय दल का ध्वजवाहक बनने। तो उम्मीद करते हैं आपने आकाशवाणी पर हर दिन हमारे इस कार्यक्रम का आनंद लिया होगा, पसंद किया होगा। कल इस श्रृंखला के अंतिम कार्यक्रम के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे अनुपम पाठक को

0: गदें शुभ रात्रि, एडिटर विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा, उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब न मंजिल की तमन्ना न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। न कोई वादा मांगा न कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही मोहब्बत है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, बस अब से कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर वन।

0: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस एनपीए कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: And foreign exchange reserves at about 766 billion US dollars.
2: संरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
2: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India's economic strength and resilience have been built over the past decade through a combination of fiscal prudence, infrastructure investment, banking reforms, improved delivery mechanisms and consistent reforms. Addressing the 5th Kautilya Economic Conclave in New Delhi, Mrs. Sitharaman said that the government has advanced the national frameworks through GST, Insolvency and Bankruptcy Code and the 4 Labour Codes. She said that India had navigated the shocks of the past 4 years with its fundamentals intact, citing 7.8% real GDP growth in the first quarter of fiscal year 2026-27.
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY27. CPI in